नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 7 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:57 होने को है। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और

0: सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि हजारों वर्षों की संस्कृति, ज्ञान, तप और बलिदान की जीवंत परंपरा है। इसकी मिट्टी में त्याग की सुगंध है, इसकी नदियों में सभ्यता का प्रभाव है और इसके कण कण में राष्ट्र प्रेम का संदेश समाहित है। देश के प्रति समर्पण और गौरव की भावना को नमन करते हुए प्रस्तुत है यह ओजपूर्ण देशभक्ति गीत।

वृंदावन की मधुर गलियों से लेकर कुरुक्षेत्र के धर्मक्षेत्र तक भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम, नीति और कर्म का ऐसा संदेश दिया जो युगों से मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। उनकी बांसुरी मन को मुक्ति से भर देती है और उनकी वाणी जीवन को नई दिशा प्रदान करती है। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। अर्थात मनुष्य की जैसी श्रद्धा और भावना होती है, वह ईश्वर को उसी रूप में अनुभव करता है। प्रभु का सच्चा स्वरूप भक्त की भावना में प्रकट होता है।

अटूट भक्ति, अद्भुत शक्ति और निष्काम सेवा के प्रतीक श्री हनुमान जी का स्मरण जीवन में साहस और विश्वास का संचार करता है। वे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने आराध्य के चरणों में संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, अर्थात प्रभु का कार्य और सेवा ही सच्चे भक्त का धर्म है। जब तक कर्तव्य पूर्ण ना हो जाए तब तक विश्राम का कोई अर्थ नहीं।

मां शक्ति की उपासना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। जग जननी अपने भक्तों पर स्नेह, करुणा और संरक्षण की वर्षा करती है। उनकी कृपा से भय दूर होता है और आत्मविश्वास का संचार होता है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, अर्थात संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं, माता की कृपा से वे सहज और सरल बन जाते हैं।

भक्ति, श्रद्धा और संगीत के सुरों से सजे इन पावन क्षणों के साथ अब आज का वंदना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए करें चिंतन।
1: अभिमान। अभिमान क्या है? अभिमान का अर्थ है अपनी योग्यता, धन, पद या रूप पर इतना गर्व करना कि हम दूसरों को तुच्छ समझने लगे। ये मैं का ये नशा है जो आंखों पर पर्दा डाल देता है। गर्व और अभिमान में अंतर है। गर्व सकारात्मक है, मैंने मेहनत से ये मुकाम पाया, पर अभिमान नकारात्मक है, मेरे जैसा कोई नहीं। एक अभिमानी व्यक्ति सोचता है मुझे सब आता है, इसलिए वो सुनता नहीं और सीखता भी नहीं। अभिमान में इंसान दूसरों को नीचा दिखाता है, धीरे धीरे अपने ही

0: दूर हो जाते हैं, जैसे रावण का अभिमान उसके पूरे कुल के नाश का कारण बना। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई व्यक्ति अभिमान में चूर हुआ, उसका पतन निश्चित हुआ है। किसी भी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। जो भी मिला है उसमें मेहनत के साथ साथ कई लोगों का साथ और ईश्वर की कृपा है, ये याद रखो। आसमान की तरफ देखो, समझ आएगा कि हम कितने छोटे हैं। ज्ञान का समुद्र इतना बड़ा है कि हम सब किनारे पर खड़े बच्चे हैं। जब हम दूसरों के काम आते हैं तो मैं की जगह हम ले लेता है, अभिमान गल जाता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का कुम्हार रहता था। उसकी बनाई मटकी पूरे जिले में मशहूर थी। राजा तक ने उसकी कला की तारीफ की। धीरे धीरे रामू के मन में अभिमान आ गया। वो सोचने लगा, मुझसे बेहतर मटकी कोई बना ही नहीं सकता। उसने बूढ़े कारीगरों से सीखना बंद कर दिया, ग्राहकों के सुझाव सुनना भी छोड़ दिया। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। रामू ने सबसे महंगी और सुंदर मटकी बनाकर रखी। लोग आए, देखा, पर खरीदा किसी ने नहीं। कारण पूछने पर एक बच्चा बोला, चाचा, इसमें पानी ठंडा तो रहता है पर इसका मुंह इतना छोटा है कि भरना मुश्किल है। रामू गुस्सा हो गया, तुम्हें क्या पता कला का। उसी मेले में एक अनजान बूढ़ा कुमार आया। उसकी सारी मटकी हाथों हाथ बिक गई। रामू ने छिपकर देखा, बूढ़े की मटकी का मुंह चौड़ा था, पकड़ने के लिए मजबूत कुंडे थे। रामू से रहा नहीं गया, वो बूढ़े के पास गया और पूछा, तुम्हारी मटकी क्यों बिक गई। बूढ़ा हंसा, बेटा, मैं मटकी अपने लिए नहीं, पानी भरने वालों के लिए बनाता हूं। जब तक अभिमान का पर्दा आंखों पर रहता है तब तक दूसरों की जरूरतें दिखती नहीं है। उस दिन रामू को समझ आया कि कला तभी बड़ी बनती है जब उसमें विनम्रता हो। अभिमान ने उसे सीखने से रोक दिया था। उसने उसी दिन से फिर से सुनना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में उसकी मटकी पहले से भी बेहतर हो गई, क्योंकि अब उसमें अभिमान नहीं, अनुभव बोलता था। अभिमान हमें अंधा कर देता है। जो सीखने के दरवाजे बंद कर दे वो तरक्की के दरवाजे भी बंद कर देता है। काबिलियत पर गर्व करो, अभिमान मत करो।
1: अभी आपने सुना आज का चिंतन, स्वर राजेश जैन का था।

0: रेडियो वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने खेती की बातें। आज के इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में किसानों के प्रमुख समसामयिक कार्य, इस विषय पर सुनते हैं ये जानकारी।
1: किसान भाइयों के राम राम। किसान भाइयों, आज खेती की बात में अपन बात करांगा कि अपना किसान भाइयों इना बरसात का मौसम में कई कई अपना कृषि कार्य करे जिनका से वे अपनी जो फसल है ओके अच्छी तरह से कीट होन से बचाई सके। तो अपने किसान भाई उनके चाहिए कि जो अपनी खरीफ की फसल है जैसे धान हुआ, मक्का हुई, सोयाबीन हुई, दलहन की जो फसल है वो की बुआई करी देवे, साथ ही निंदाई गुड़ाई और कीट रोग से बचाव सारू जो उर्वरक है वे है वो को उपयोग और दवाई को छिड़काव इना जो कृषि कार्य है वो में शामिल करें। जैसे ही बरसात की शुरू होए अपना किसान भाई उनके चाहिए कि वे अपना जो काम है उनके घनी बारीकी से करें, जैसे कि खेत में जल प्रबंधन। तो इना बरसात का मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी अपना जल भराव की अपना खेत में आवे है और अपना किसान भाई उनके यो काम बड़ो चुनौतीपूर्ण भी होवे है।

0: कि जल भराव के अपना किसान भाइयों कैसे रोकी सके। तो जल निकासी को अपना किसान भाइयों के सुनिश्चित करना है कि बरसात को जो पानी हुई रो है, जो पानी अपना खेत में भरे रो है, उना खेत से पानी की निकासी अपन कैसे करा। जल भराव से पौधा की जो जड़ है नी वह सड़ने लगे है और खेत का किनारा उन पे जल निकासी सारू अपन नाली हन बने सका। हाँ, तो जल भराव अगर अपन रोकांगा तो ज अपन अपने जो फसल है ओके सड़ने से बचे सकांगा। सातेज भेड़ बंदी, जैसे कि सातेज मेड़ बंदी, तो मेड़ होन की बंदी करने सारू कई करना है कि खेत में मेड़ होन के मजबूत ने ऊंचो अपना के रखनो है, जिका से कहीं हो कि पानी जो है वो धीरे धीरे बहतो जाए और जो अपनों खाद और अपन ने जो खाद डाली है, उर्वरक डाली है, वे बाहर बही के चले नहीं जावे। एका सारू अपनी जो मेड़ है ओके अपना के ऊंचो ने मजबूत बनानो है और साथे साथ अपना के इना बरसात का पानी का संचय भी करीने रखना है, ताकि बाद में जब अपना के पानी की परेशानी आवे उन्हीं वक्त यो पानी अपना के काम में जावे। तो कभी अपना आसपास एरे मेरे अगर अपने तालाब खोदीने रखे हुए, तालाब बने रखे हुए, तो ओ में अपनो जो यो पानी इकट्ठो हुई है खेत को ओ में चले जावे, ऐसी अपन निकासी रखा। साथेज जब पानी ज़्यादा इकट्ठो हुई है तो ओके भी अपन निकासी करीने आसपास एरे मेरे अगर तालाब जैसो बनायो है तो ओमे राखी देवा। तो इस तरह से अपन अपना जो बरसात को पानी है ओके बचेने भी रखी सकांगा। और इन्हीं बखत इन्हें बरसात का मौसम में अपना किसान भाई उनके चाहिए कि अगर वे फसल की बुवाई करी रिया है तो बीज उपचार सबसे पहला करी लेवे, क्योंकि बुवाई का पहला बीजो उपचार करनो घनो जरूरी होवे है। बीजो उपचार में फफूंदनाशक से अपना किसान भाइयों बीज को उपचार कर ही सके हैं। अगर साग भाजी की खेती करी रहा है तो नकदी फसल उगानो चाहे तो जल भराव और सड़न वाली जो फसल है जैसे कि भिंडी, लौकी न मिर्ची, एक है उगाने का पहला अगर इसकी क्यारियों को अपन बने ही लेवांगा तो बहुत घनो अच्छो रहेगा। तो क्यारी बने अपन ही को इस्तेमाल करी सका। हाँ, मिट्टी चढ़ाना, जैसे भिंडी या टमाटर जैसी जो अपनी फसल है, जो साग भाजी है, इनके 6 से 7 इंच का पौधा की जड़ है उन पे मिट्टी हुन चढ़े देवा, ताकि कहीं होएगो कि तेज हवा और घनी तेज बरसात ने ओला अगर गिरे तो वे पौधा का ऊपर नहीं गिरे। तो इस तरह से अपन थोड़ी घनी ध्यान रखी ना अपनी फसल के संरक्षित करी सका। हाँ, निंदई गुड़ई और उर्वरक प्रबंधन भी अपना किसान बन करीने राखी लेवे, जैसे फसल का साथ उगने वाला खरपतवार फसल का पोषक तत्व और पानी के छीनी लेवे है। एका सारू जरूरी हुए कि खरपतवार के अपन नियंत्रण करीने रखा। इना बरसात में जब धूप निकले तब निंदई गुड़ई करीने खेत के साफ करी लेवा। उर्वरक को सही उपयोग करा, जैसे कि अपना यूरिया या अन्य उर्वरक को छिड़काव जैसे ही बरसात थमे ओका बाद अपन करी लेवा। अगर बरसात हुई रही है और ओका बाद ही अगर अपन ने एकदम करियो तो खाद को जो असर है वो हुई नहीं पाएगा। तो अपना किसान भाइयों ने छोटी छोटी बात ने छोटी छोटी सावधानी रखी ने अपनी फसल के अच्छी पैदावार ली सके है। तो आज अपना किसान भाइयों से इतना ही कहना, तो किसान भाइयों राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। बरसात के मौसम में किसानों के प्रमुख समसामयिक कृषि कार्य, इस विषय पर आपने ये जानकारी सुनी। वाचक स्वर भारती उपाध्याय का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

श्री रामचरित के विविध प्रकरणों की व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, जिनके नाम के उच्चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूँ,

वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था, तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया? उमापति ने तब निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम विवरण में हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी।

शास्त्रीय संगीत में प्रातः 9:30 पर आज आप सुनेंगे M.S. गोपाल कृष्णन का वायोलिन वादन। प्रतिदिन की तरह जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा प्रातः 10:00 और 10:05 पर आप सुनेंगे सजीव फोनिन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। फोनिन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे ये आप सुनेंगे प्रातः 11:00 और फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दिन में 12:00, दिन में 2:00 और शाम 5:45 से। दिन में 12:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम संग्रहालय से और महिला कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 1:00। आज के इस कार्यक्रम में सुनिएगा आत्मनिर्भर नारी सशक्त समाज, साथ ही मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, इस विषय पर जानकारी। रूपलावण्य में आप जानेंगे इत्र का सही इस्तेमाल किस तरह से आप कर सकते हैं। फूड जोन में आप विभिन्न प्रकार की रेसिपीज के बारे में जानकारी और साथ ही साथ काम की बातें में बारिश के मौसम में विद्युत उपकरणों की सुरक्षा से किस प्रकार आप सतर्क रह सकते हैं, खुद की रक्षा कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी युवाणी कार्यक्रम के साथ शाम 5:00 और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे शाम 6:00 से। प्रतिदिन की तरह खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा शाम 7:20 पर। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा डॉक्टर नेहा बुनकर की भेंट वार्ता, वर्षा जल संचयन भविष्य में जल संकट का समाधान। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 से और रात्रि 9:30 आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम कहकशां। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, थोड़ी देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: भक्ति नृत्यञ्च अवलोक्य महान हर्षः प्रकटितः। इंडोनेशिया देशे भारतीय राजदूतस्य संदीप चक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिण पूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः साकं भारतस्य रणनीतिक संबंधान उच्चतर शिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इंडो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चंपतरायस्य न्यास सदस्यस्य डॉ अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राम मंदिर दान वंचन प्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परं उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्ति पर्यन्तम् अन्तरिम सामान्य सचिव रूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथित दान अनियमिततायाः प्रकरणे एफआईआर इत्यस्य पंजीकरणम् अभवत्, यस्मिन् अष्ट जनाः निगडिताः। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचार मेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुख चर्चाः अपि साधितवान्। विदेश मंत्री कतर देशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तु विभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचंड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। आगामी दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उप हिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्र प्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे यूएसए बेल्जियम वा देशं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री क्षमा करें कि इसको दोबारा सुन लें, इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की।

0: दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमरीका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: और सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

श्रोताओं, आइए आपको आज हमारी सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी हम दे दें। आप जानते हैं कि 10:05 से आज आप सुनेंगे सजीव फोनिंग कार्यक्रम MH हॉटलाइन, जिसमें आप कॉल करके अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। तो आकाशवाणी इंदौर से ये कार्यक्रम आप ज़रूर सुनें और हमें आपके फ़ोन कॉल्स का भी इंतज़ार रहेगा। साथ ही 11 बजे आप सुनेंगे फोन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसे हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी सेवा में प्रसारित करेंगे। और दिन में 1 बजे आज महिला कार्यक्रम का प्रसारण होगा, इसे सुनना ना भूलें।

0: बजकर 10 मिनट हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिलेगी मजबूती। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ाएंगे किसानों की आमदनी। और मौसम विभाग के अनुसार आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इससे भारत और इंडोनेशिया अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार है। एक

0: समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से समुद्री और आर्थिक संबंध सुदृढ़ होंगे और उभरते क्षेत्रों में सहयोग गहरा होगा। राजदूत ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध सकारात्मक दिशा में अग्रसर हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इस प्रवृत्ति को और बल देगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की पहल की घोषणा कर सकते हैं। इनमें रक्षा और समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, खाद्य सुरक्षा और उर्वरक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि वे आगामी रथ यात्रा के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे ताकि सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे इस साल ओणम उत्सव के दौरान 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जुड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की आमदनी केवल एक फसल से नहीं बल्कि उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार खेती के साथ साथ पशुपालन को विशेष बढ़ावा दे रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल ग्वालियर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्नत कृषि पर हुई संभागीय कार्यशाला में मौजूद किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कार्यशाला में जैविक और प्राकृतिक खेती पर किसानों के अनुभव सुने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। हम अगले 5 वर्षों में मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कल भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दतिया विधानसभा उपचुनाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन का कार्य शुरू हो चुका है। 13 जुलाई नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। 14 जुलाई को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 जुलाई को नाम निर्देशन पत्र की वापसी की तारीख है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। उन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से कल मध्यप्रदेश संवर्ग 2025 बैच के चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मकवाणा ने कहा कि प्रशिक्षण पूरी तन्मयता से प्राप्त करें ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन कर सकें। उन्होंने 9 चयनित अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक पद नहीं बल्कि जनता की सेवा का दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नए आपराधिक कानून, साइबर सुरक्षा, साइबर फ्रॉड, नारकोटिक्स और नशा मुक्ति जैसे विषय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक

राज्य शिक्षा केन्द्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। इसके साथ ही इसी पोर्टल पर शिक्षक संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थी वार परिणाम भी देख सकेंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र ने संचालित शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। इसके लिए विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से विशेष हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। प्रदेश में भारी बारिश का सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते पिछले 6 दिनों से राज्य के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में अब तक सामान्य से 1% बारिश कम हुई है, जबकि जून में यह 33% कम थी। अब तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। देवास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई है। जकार्ता में अंडर 23 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज 50 किलोग्राम भार वर्ग के एशियाई चैंपियन विश्वनाथ सुरेश ने उज्बेकिस्तान के अमीरबेक इस्माइलोव को हराकर भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रखा। पुरुष वर्ग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में गंगा ने मंगोलिया के अमगाला नबातर बुलगुंग को 5-0 से हराया। वहीं महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में तनु ने कोरिया की रेंग्योंग किम को 5-0 से पराजित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में कल विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पन्ना जिले में बीती रात हुई लगातार बारिश के चलते केन, मिनासन और पत्नी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। झाबुआ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एकलव्य योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हेतु 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है। सतना जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लगभग 100 स्ट्रीट डॉग्स का एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया। मंडला जिले की घोघरी तहसील में कल आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।

श्रोताओ, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुनहरे पल में। मैं हूं राहुल तिवारी, और आइए सदाबहार फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म के गीत के साथ। स्वर लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का है, संगीत रचना रविंद्र जैन की।

वापस। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: बंदू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। सदाबहार गीतों के इस कार्यक्रम में आइए अब अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं प्यासा सावन फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। संतोष आनंद के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

धनवान फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, तर्ज बनाई है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

बेमिसाल। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाज में। माफ कीजिएगा, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की हैं। आनंद बख्शी के बोल, आरटी बर्मन का संगीत।

अपराध इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की गीत रचना। श्रोताओं आप सभी को जानकारी दे दें कि आज 10:05 से 11 बजे तक आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन, जिसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0731-2710-223 और 2710-224। हमें इस कार्यक्रम में आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। आप अपनी पसंद के गीत कार्यक्रम में सुन सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जाबाज फिल्म का गीत किशोर कुमार और सपना की आवाज़ में।

और रही श्रोताओं, कार्यक्रम में अंतिम गीत के रूप में सुनते हैं पुलिस पब्लिक। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में, असद भोपाली के बोल हैं, राम लक्ष्मण का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे, व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी

0: भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: इंडिया एंड इंडोनेशिया आर वेरी क्लोज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स।
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉ जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉ जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं।

0: खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्स फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्व घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमरीका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
3: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samana Vaya group comprising Indonesian students. The the Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to

यूं गढ़ते हो क्यों, अपने हो अपनों से लड़ते हो क्यों। सौ बरस का हो गया बूढ़ा, वो नाजुक हो गया, दिख रहा है सूखा है, उस पेड़ पर चढ़ते हो क्यों। दिखता है वो रास्ता कितना गलत है जा रहा, बेवजह सब जान के उस राह पे बढ़ते हो क्यों। फालतू के लफड़े में पड़ते हो क्यों, अपने हो अपनों से लड़ते हो क्यों। अगली कविता है हम रोज डूबा करते हैं, हर टेढ़ी चाल को ऊंट सा बता के, हर सच को झूठ से दबा के, हर टेढ़ी चाल को ऊंट सा बता के, हर सच को झूठ से दबा के, हर लहर का जर्फ छुपा के, हम रोज डूबा करते हैं। माहिर को बुद्धू दिखला के, दाना की गलती गिनवा के, माहिर को बुद्धू दिखला के, दाना की गलती गिनवा के, दीवारों को दर बतला के, हम रोज डूबा करते हैं। पत्तों को पतझड़ दिखला के, अनदेखा गिरते को बना के, पत्तों को पतझड़ दिखला के, अनदेखा गिरते को बना के, कागज से कलम छुड़वा के, हम रोज डूबा करते हैं। नकली सोच की असली शक्ल छुपा के, नकली सोच की असली शक्ल छुपा के, हर कम को ज्यादा ज्यादा दिखला के, नाव में अपनी खुद छेद करा के, हम रोज डूबा करते हैं। अगली कविता है साथी। काली रात के तकिए पे कुछ ख्वाब मेरे डर के बैठे हैं, काली रात के तकिए पे कुछ ख्वाब मेरे डर के बैठे हैं, चांद के हैं वो साथी फिर भी सूरज को तकते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें करके खुद ही खुद को बहला करके, बढ़िया बढ़िया बातें करके खुद ही खुद को बहला करके, गम के छोटे हिस्से करके दरियाओं में बह देते हैं, आज पुरानी बातें करके बचपन की कुछ यादें भर के, आज पुरानी बातें करके बचपन की कुछ यादें भर के, नई किसी मंजिल पे चल के खुश हैं हम भी कह देते हैं। अब ना जाना उस रास्ते पर जहाँ अंधेरा गहरा हो, पेड़ के साए हम न मिलेंगे पहले से ही कह देते हैं। अगली कविता है दुनियादारी सीख ही ली, जनहित में जारी करके पूरी तैयारी करके, जनहित में जारी करके पूरी तैयारी करके, अपना मन भारी करके, दुनियादारी सीख ही ली, खाली खाली दिल करके हर महीने का बिल भर के, खाली खाली दिल करके हर महीने का बिल भर के, सन्यासी आधा बनके दुनियादारी सीख ही ली, औरों को चला करके अपना नाम बना करके, औरों को चला करके अपना नाम बना करके, आधा सच छुपा करके दुनियादारी सीख ही ली। अगली कविता है सच्चा सा बच्चा सा बीज। हवस मची थी जंग सी थी आदमी और सच के बीच, हवस मची थी जंग सी थी आदमी और सच के बीच, उसूल थे खड़े हुए सड़क के पार आंखें मीच, वो आए थे कहने लगे तुम्हें बड़ा बनाएंगे, वो आए थे कहने लगे तुम्हें बड़ा बनाएंगे, फिर काम हो गया तो कहते हैं हटो कि तुम हो नीच, तुम्हें भी है पता जो बोओगे वही तुम पाओगे, तुम्हें भी है पता जो बोओगे वही तुम पाओगे, तो बीज फिर भलाई का सच्चाई का दो आज सींच। अगली कविता है खौफ को तोड़ता है, जो बढ़ सका है लड़ सका है गढ़ सका है वो ही एक कहानी, जो बढ़ सका है लड़ सका है गढ़ सका है वो ही एक कहानी, जहां को जो बदल रहा है औरों के लिए है जो रूहानी, मरण की भूमि दौड़ता है मौत को वो रौंदता है, मरण की भूमि दौड़ता है मौत को वो रौंदता है, खौफ की लटों में जल के खौफ को वो तोड़ता है, ना संत ना समाज में ना मंत्री के दबाव में, ना संत ना समाज में ना मंत्री के दबाव में, वो जानता है सार है छुपा सहाय भाव में, वो अंत से वो आदि से ही वो लाखों ही विवाद से ही परे है वो बचा रहा है जमाने को बुनियाद से ही, मरण की भूमि दौड़ता है मौत को वो रौंदता है, खौफ की लटों में जल के खौफ को वो तोड़ता है।

0: अभी आपने सुनी पलक जैन की ये रचनाएं। पानी की हर बूंद में बसते जीवन के सब पंथ, जीवन के स्पंदन में है जल का परम महत्व। जल के दुरुपयोग को रोकें, सब रखें ये ध्यान, जल संचय में हाथ बटाना सबका हो अभियान। श्रोताओं, विश्व की एक बड़ी आबादी जल के भीषण संकट से जूझ रही है। अनेक संत कवियों के समय समय पर दिए संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं डॉक्टर पवन खरे की वार्ता, जल संरक्षण में संत परंपरा की भूमिका।
1: विश्वव्यापी हो चुकी भूजल समस्या ने सारे विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। इस समस्या को लेकर विश्व के सभी राष्ट्रों ने 22 मार्च 2000 को नीदरलैंड की राजधानी हेग में अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इस जल सम्मेलन में यह भविष्यवाणी की गई थी कि लगातार घटते जा रहे भूगर्भ जल के कारण भविष्य में होने वाले युद्ध जल युद्ध होंगे। चोर लुटेरे आपके घरों में घुसकर आपका धन नहीं चुराएंगे, बल्कि पानी से भरा मटका लेकर भागेंगे। पानी जो आपको बोतलों और पॉलीथीन के बैगों में मिल रहा है, अब एक कैप्सूल के रूप में ही मिला करेगा। जल समस्या आज की समस्या नहीं है, बल्कि 500 वर्ष पूर्व भी यह समस्या अपने विकराल रूप में विद्यमान थी। मध्ययुग के संत कवियों का जब अध्ययन करते हैं तो इस समस्या का उल्लेख हमें मिलता है। उस समय सिकंदर लोधी ने नहरों से सिंचाई करने पर कर देने का नियम बनाया था। गरीब किसान नहरों से सिंचाई नहीं कर पाते थे, खेतों पर पानी जमा करने हेतु खेतों की मिट्टी निकाल इन्हें गहरा कर देते थे। वर्षा होने पर इन गहरे खेतों में पानी भर जाता था। इन खेतों को बोहड़ा अथवा निचला खेत कहा जाता था। महात्मा कबीर की साखियों में बोहड़ा शब्द का उल्लेख मिला है। राम नाम करी बोहड़ा, बाही बीज अघाई, अंतकाल सूखा पड़े निर्फल कधे न जाई। बोहड़ा बांस की बनी एक नलिका भी होती थी, जिसमें बीजों को भरकर खेत की गहराई में डाल दिया जाता था, जहाँ पर बीजों को सूखा पड़ने पर पर्याप्त भोजन मिलता रहता था। प्राचीन समय के जल स्रोत आज के समान प्रदूषित नहीं थे। नदियाँ पवित्र थीं, तालाब निर्मल जल से भरे हुए थे, भूगर्भ जल सुरक्षित था, कुएं कभी खाली नहीं होते थे। अगाध जल को धारण करने वाले तालाब भूगर्भ को सुरक्षित रखा करते थे। सूखा पड़ने पर इसी भूगर्भ जल से हमारी प्राण रक्षा होती थी। यही वजह है कि महात्मा कबीर ने तालाबों को मानसरोवर कहा है। इन मानसरोवरों के तटों पर भक्त अपनी कुटी बनाकर निवास करते थे। हंस, भारद्वाज, कोकिल, मोर, बतख, बगुले, नाना प्रकार के बेहंग इनके तटों पर हमेशा विचरण करते रहते थे। इन निर्मल जल से भरे सरोवरों के तटों पर भक्त को परमात्मा का रूप दिखाई देता था। तालाब में खिलती कमलनी को देख महात्मा कबीर कहते हैं, हे कमलनी, तू क्यों कुमला रही है? इस तालाब में ही तेरा जन्म हुआ है, प्रारंभ से अंत तक तू इसी तालाब में ही वास करेगी। अगाध जल को धारण करने वाले सरोवर में जो जल में मिलकर जल के समान हो गए, वे कभी नहीं मरते, अमर हो जाते। काहे

जहाँ मध्यकालीन और प्राचीन भारत के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय खेतों में सिंचाई करने पर कर देना पड़ता था। सिंचाई के लिए रहट, ढेकुली, चरस या मोट का प्रयोग किया जाता था। बाण भट्ट के हरिश्चरितम में कूपो दंचन घटी यंत्रमाला का उल्लेख भी इसी के लिए किया गया है। इब्न बतूता ने भी अपनी भारत यात्रा के दौरान इन रहटों का उल्लेख किया है। महात्मा कबीर ने रहट के संबंध में लिखा है कि इसमें मालाकार डब्बे लगे रहते हैं जिसमें पानी भरकर ऊपर उठता आता रहता है। इसकी घड़ियां आती जाती हुई पानी में डूबती उतराती रहती हैं। इसे बैलों से चलाया जाता है। घड़ियों में लगातार पानी बहते रहने को भी प्रभु वियोग में आंसू बहाती हुई आंखों के समान बतलाते हुए कहते हैं कि नैना नी झर लाइया रहट बहे निसजाम, पपिया जो पियो पियो करो कबर मिलोगे राम। कबीर कहते हैं कि यदि माला पहनने से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है तो इस रहट का क्या दोष जो रात दिन मटकियों की माला पहने हुए आंसुओं को बहाता रहता है। माला पहने हरी मिले तो हरे अटके गली दोस्त। मध्य युग में सिंचाई का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत ढेकुली थी। दो मजबूत खम्भे गाड़कर एक लंबी बल्ली में एक ओर बजनी पत्थर और दूसरी ओर पानी का पात्र बांधकर सिंचाई

करने की इस प्रक्रिया को ढेकुली कहा जाता है। सुरत ढीकुली ले जल्यो मन त ढोल निहार, कमल कुआ में प्रेम रस पीवे बारम्बार। कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा के भक्त कुआं कमल से ढेकुली सुरत में लगन की रस्सी द्वारा मन के डोल पात्र से प्रेम रस का पान करते हुए मग्न रहते हैं। अगाध जल को धारण करने वाले हमारे तालाब भूगर्भ जल को सुरक्षित रखते थे। सूखा पड़ने पर इसी भूगर्भ जल से लोगों की सुरक्षा होती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तालाबों को सद्गुणों का भंडार बतलाते हुए लिखा है, समिति समिति जल भरही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। महात्मा कबीर ने भक्तों को मानसरोवर तट का वासी बतलाते हुए निर्मल जल रूपी भक्ति का पान करने वाला बतलाया है। इन तालाबों के तट पर हंस रूपी पुण्यात्माएं निवास करती हैं। इन पुण्यात्माओं के कारण कुबुद्ध रूपी कुबे सरोवर के तट पर नहीं आ सकते। निर्मल जल से भरे सरोवर संसार का कल्याण करने के लिए बनाए गए हैं। हरिजन हंस दसाली उडोले, निर्मल नाव चले जस बोले। मान सरोवर तट के वासी, रामचरण चित आन उदासी। मुक्ताहल बिनु चंच न लाबे, मोनि गहे के हरि गुण गावे। कौआ को बोधि

नवेरा। मध्यकालीन संतों ने हमारी नदियों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा। उस समय नदियां पवित्र थीं, संतों की दृष्टि पवित्र थी। संतों ने लिखा है कि अतृप्त कामनाओं का त्याग करने वाले भक्त ध्यान लगाकर निर्विकार रूप में स्नान करते हैं। ज्ञान भक्ति स्वरूपा नदियों में भक्ति की अमृत बूंदें सतत बरसती रहती हैं। इन नदियों के ऊपर सूर्य के प्रकाश में आनंद और विवेक की वर्षा होती है। ये नदियां इन संतों के लिए ही बनाई गई हैं, जिन्होंने अपने अहम को भक्ति की अग्नि में जला दिया। माया अपने प्रदूषण जनित रोगों के साथ भक्ति की नदी में कूदने से डरती है। इसके निर्मल जल की स्वाद का महारस अमूल्य है। पानी की हर बूंद मूल्यवान है। महात्मा कबीर कहते हैं, कबीरा संत नदी गयो बहिरे, जहाँ लगी लागे सनत सनंदन, रुद्र ध्यान धरी बैठे कंकर कुई पताल पानिया, सुने बूंद निकाई रे। इन नदियों में बहने वाले संत बालकों जैसे नग्न होकर आनंद में तैरते हैं, क्योंकि ईश्वर ज्ञान साक्षात्कार और आत्म अनुभूत में बहकर संसार की सभी प्रकार की लज्जाओं से मुक्त हो जाते हैं। प्राचीन काल से ही नदियां पवित्रता की मूर्ति मानी जाती रही हैं। महाकवि तुलसीदास जी ने इनके संबंध में कहा है, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित लागे इनहीं के करनी, तुलसी पंछिन के पील घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। आज ज्ञान भक्ति की धाराओं में बहने वाली नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। इनमें न जाने कितने प्रकार के जहरीले तत्व घुल चुके हैं। जलचरों का जीवन खतरे में होता जा रहा है। देश की असंख्य नाले और नदियां हैं। इन सबको मिलाकर सारे देश में इनका संजाल फैलाना जरूरी है। गहरीकरण चौरीकरण होना जरूरी है। वर्षा का 90% जल समुद्र में बहकर चला जाता है। जोड़ बांध बनाकर हम नदियों के जल को रोक सकते हैं। रूप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा छतों में पानी से निर्जीव हो रहे कुपों नलकूपों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस दिशा में राजस्थान के राजेंद्र सिंह पानी वाले बाबा ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के जल संकट क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम आर के नारायण ने अपने संदेश में कहा था कि जब पूर्वोत्तर राज्य के लोग परंपरागत विधियों द्वारा बहते पानी को रोककर अपना भविष्य बना रहे हैं, तो देश के अन्य भागों के लोग ऐसा करने के लिए आगे क्यों नहीं आते। जल समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास और लोक चेतना का जागृत किया जाना जरूरत है, तभी हम इस समस्या का साहसपूर्ण

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पवन खरे की वार्ता जल संरक्षण में संत परंपरा की भूमिका। और अब बारी है रेणु फ्रांसिस की कहानी फैसला की।
1: मेरी कहानी का शीर्षक है फैसला।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पवन खरे की वार्ता जल संरक्षण में संत परंपरा की भूमिका। और अब बारी है रेणु फ्रांसिस की कहानी फैसला की।
1: मेरी कहानी का शीर्षक है फैसला।

पढ़ाई। सरकार की तरफ से उसे स्कॉलरशिप मिलने लगी। रमा पढ़ने में जितनी होशियार थी उसका भाई उतना ही कमजोर था। लेकिन उसके पापा हमेशा यही कहते, उसे कौन सी कहीं नौकरी करना है, उसे तो अपने किराने की दुकान ही संभालना है। इन बातों को सुनकर उसके भाई को भी सह मिल जाती थी। रमा ने 12वीं क्लास में भी मेरिट में स्थान बनाया। सभी अखबारों में और न्यूज चैनलों पे उसकी तस्वीर दिखाई जा रही थी। इंटरव्यू में जब उससे पूछा जा रहा था वह आगे क्या बनना चाहती है, वह कोई सवाल का उत्तर दे, उससे पहले ही उसके पापा ने सभी से कह दिया वह आगे नहीं पढ़ेगी क्योंकि उसकी शादी की बात चल रही है, जल्दी ही उसकी शादी होने वाली है। यह बात सुनकर रमा बहुत परेशान हो गई। तिवारी आंटी के घर जाकर बहुत रोई। तब आंटी ने समझाया, बेटा लड़कियों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है, मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, बस एक सहायता कर सकती हूँ। जिस लड़के से तुम्हारी शादी की बात चल रही है उस लड़के के पापा रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं, मैं उनसे कह सकती हूँ शादी के बाद भी रमा की पढ़ाई जारी रहने दें, तुम्हें पढ़ना ही तो है, वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना क्योंकि तुम्हारे पापा ने तो तुम्हारी शादी तय करने की ठान ली है। आंटी की बात सुनकर उसने बस यही कहा, मुझे आप पर विश्वास है। आंटी ने कहा, घर में रहकर तुम अपने पापा का विरोध तो नहीं कर सकती हो, इसलिए बेहतर

में भी मेरिट में स्थान बनाया। सभी अखबारों में और न्यूज चैनलों पे उसकी तस्वीर दिखाई जा रही थी। इंटरव्यू में जब उससे पूछा जा रहा था वह आगे क्या बनना चाहती है, वह कोई सवाल का उत्तर दे, उससे पहले ही उसके पापा ने सभी से कह दिया वह आगे नहीं पढ़ेगी क्योंकि उसकी शादी की बात चल रही है, जल्दी ही उसकी शादी होने वाली है। यह बात सुनकर रमा बहुत परेशान हो गई। तिवारी आंटी के घर जाकर बहुत रोई। तब आंटी ने समझाया, बेटा लड़कियों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है, मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, बस एक सहायता कर सकती हूँ। जिस लड़के से तुम्हारी शादी की बात चल रही है उस लड़के के पापा रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं, मैं उनसे कह सकती हूँ शादी के बाद भी रमा की पढ़ाई जारी रहने दें, तुम्हें पढ़ना ही तो है, वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना क्योंकि तुम्हारे पापा ने तो तुम्हारी शादी तय करने की ठान ली है। आंटी की बात सुनकर उसने बस यही कहा, मुझे आप पर विश्वास है। आंटी ने कहा, घर में रहकर तुम अपने पापा का विरोध तो नहीं कर सकती हो।

उसने भी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दिए। वह थोड़े दिनों बाद जुड़वा लड़कियों की माँ बनी, घर में सभी के मुंह बन गए। रामा को सब ऐसी नजरों से देखते जैसे उसने दो बेटियों को पैदा करके कोई गुनाह किया है। उसके पति तो बेटियों को देखने भी नहीं आए और रामा से हमेशा यही कहते, ये पराया धन है, इन्हें क्या प्यार करूं, मेरा बेटा होगा वह मेरा असली धन होगा। रामा ने बहुत समझाया कि बेटियां बेटों से ज्यादा प्यारी होती हैं, लेकिन उसके पति के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। रामा आसपास के बच्चों के ट्यूशन लेने लगी और अपनी बेटियों की जरूरतें पूरी करने लगी, लेकिन उसके पति ने कभी बेटियों पर कुछ खर्चा नहीं किया। रामा की बेटियां अब स्कूल जाने लगी थी, वह अपनी माँ की तरह खूबसूरत और पढ़ाई में होशियार थी। रमा के पति चाहते थे रमा अब उसे एक बेटा दे दे। रमा ने कहा, जरूरी तो नहीं है हमारे आने वाली संतान लड़का ही हो, अगर फिर लड़की हो गई तो। लेकिन उसका पति और सास चाहते हैं रमा एक और बच्चा पैदा करे। उन्होंने रमा को लड़का होने के लिए तरह तरह के मन्नतों के धागे बांधे। रमा ने बहुत समझाया, जो किस्मत में है हमें वही मिलेगा। सास और पति के सामने उसकी एक ना चली। जब वह गर्भवती हुई तो उसकी सास और पति ने सोनोग्राफी कराने का फैसला किया। रमा को बताया गया बच्चे की हालत जानने के लिए सोनोग्राफी हो रही है। रमा ने भी सोचा कोई बात नहीं, उस पर गर्भपात कराने के लिए दबाव बनाने लगा। जब वह पति की बात का कोई विरोध नहीं करती थी, लेकिन आज उसने कहा वह गर्भपात नहीं करवाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। रोज इसी बात को लेकर झगड़े होने लगे। झगड़े की आवाज सुनकर उसकी बेटियां डर जाती थीं। रमा ने लाख समझाया, जो हो रहा है उसे होने दो, लेकिन पति पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह रमा पर गर्भपात के लिए दबाव बनाता रहता। आखिर रमा ने अपनी सहेली से बात की जो वकील थी और दिल्ली में रहती थी। उसने कहा, तू कुछ दिनों के लिए अपनी बेटियों के साथ मेरे घर आ जा, फिर हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि तू उनके साथ रहती है, तेरी बेटियां भी छोटी हैं, कभी गुस्से में तेरे पति ने तुझसे मारपीट की तो परेशानी हो जाएगी। लेकिन रमा को विश्वास था उसका पति उसके साथ मारपीट नहीं करेगा। दो तीन दिन घर में शांति थी, रमा को लगा सब ठीक हो गया है, लेकिन आज खाना खाने के बाद उसके पति ने वही गर्भपात वाली बात छेड़ दी और कहा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कल डॉक्टर के पास चलना है। पति की बात सुनकर रमा ने कहा, मैं अपनी बच्ची को नहीं मार सकती, मैं माँ हूँ, जन्म देने का अधिकार है मेरा, किसी को मारने का मुझे कोई हक नहीं है। उसकी बात सुनकर उसके पति ने उसे एक चाटा मारा और कमरे में बंद कर दिया। रमा के सामने उसकी बेटियां रोती जा रही थी, लेकिन रमा बेबस थी, उससे उम्मीद नहीं थी उसका पति बेटे के लिए उसे मार भी सकता है। कमरे में बंद रमा सोचने लगी, वह ऐसा क्या करे जिससे होने वाली बेटी को बचाया जा सके। उसने सुबह अपने पति से कहा, मैं गर्भपात करवाने के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी बेटियां भी अस्पताल जाएंगी। उसकी बात सुनकर उसके पति ने कहा, ठीक है। वह चारों सुबह अस्पताल के लिए निकल पड़े। रमा ने कुछ पैसे जमा किए थे वह ले लिए और अस्पताल जाने के लिए वही समय चुना जब दिल्ली जाने वाली बस उसके कस्बे से होकर जाती थी। रमा की गाड़ी बस स्टैंड के सामने से गुजर रही थी तो उसने देखा दिल्ली की बस जाने वाली है। उसने पति से कहा, बेटियों को टॉयलेट जाना है। उसके पति ने गाड़ी एक साइड में खड़ी कर दी, उन तीनों को जाने दिया। रमा ने जल्दी से अपनी बेटियों के हाथ पकड़े और दिल्ली जाने वाली बस में बैठ गई। बस भी तेज गति से उसके कस्बे से दूर आ गई। वह दो घंटे में दिल्ली पहुंच गई। अब वह आजाद थी। उसने सबसे पहले अपनी पति को फोन किया क्योंकि उसे मालूम था उसका पति पुलिस स्टेशन जाएगा और गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाएगा। उसने पति को फोन करके कहा, मैं अपनी मर्जी से बेटियों को लेकर आई हूं। तुमने अगर मेरी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई तो मैं तुम्हारे विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाऊंगी। तुम मेरा जबरदस्ती गर्भपात करवा रहे थे, मेरे पास सारे कागज हैं जिसमें तुमने गर्भपात के लिए साइन किए थे। रमा की बात सुनकर उसका पति परेशान हो गया क्योंकि कस्बे में तो उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन बाहर की पुलिस तो उसे गर्भपात करवाने के जुर्म में सजा देगी, उसका पार्षद बनने का सपना टूट जाएगा, माँ को भी जेल हो जाएगी। उसने रमा से कहा, अब वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, वह बेटियों को लेकर वापिस आ जाए। रमा ने कहा, मैं बेटी के जन्म के बाद ही तुम्हारे पास आऊंगी। रमा को मालूम था अगर वह अभी उसे आने के लिए मना करेगी तो वह फिर कोई नई चाल चलेगा। रमा ने अपनी सहेली के साथ रहने लगी। उसने अपने पति को तलाक के कागज भेज दिए क्योंकि उसे मालूम था उसकी सास और उसका पति बेटा पाने के लालच में उसे बार बार माँ बनने को मजबूर करेंगे। अगर इसे बीच उसे कुछ हो गया तो उसकी बेटियां अनाथ हो जाएंगी, इसलिए उसने अब पति के पास वापस न जाने का फैसला किया। समय पूरे होने पर उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसने स्कूल में नौकरी करके अपनी बेटियों की पढ़ाई पूरी करवाई। आज उसकी तीनों बेटियां सरकारी अफसर हैं, लोग उसे बेटियों के माँ के नाम से जानते हैं। वह खुश होती है। रमा सोचती है काश उसकी बेटी के बारे में उसका पति पहले ही जान जाता और प्यार करता तो आज उनका नाम भी रोशन होता, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता था। रमा अपना एक छोटा सा स्कूल खोला है, उसने वह लड़कियों को पढ़ाती है। उसके स्कूल पर लिखा है, इस स्कूल में केवल छात्राओं को ही शिक्षा दी जाती है, वह भी निःशुल्क। उसके इस स्कूल का जिक्र आए दिन अखबारों में होता रहता।

0: है जब उससे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप सिर्फ लड़कियों को ही क्यों पढ़ाती हैं, तब वह कहती है इसका श्रेय मेरे पिता और पति को जाता है। मेरे पिता और मेरे पति अगर बेटे को अहमियत नहीं देते, मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। बेटियों को प्यार और मेरी सहेलियों का साथ पाकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं चाहती हूँ इस शहर में और हर गांव में ऐसा स्कूल खोलूं यहाँ सिर्फ लड़कियों को ही पढ़ाया जाए, ताकि देश की कोई बेटी अनपढ़ ना रहे, वह अपने अधिकारों के लिए लड़े और फैसला खुद के हक में करे।
1: और इसी के साथ विविधा कार्यक्रम का ये अंक संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी को नमस्कार।
2: विविधा अभी आप सुन रहे थे विविधा, यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं शारदा पगारे के गाए निमाड़ी लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस पारंपरिक लोक रचना के साथ।

लोक संगीत में श्रोताओं आप सुन रहे हैं शारदा पगारे के गाये निमाड़ी लोकगीत। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं ये गणगौर गीत शारदा पगारे की आवाज़ में।

0: लोक संगीत में श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शारदा पगारे के गाए निमाड़ी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, सुगम संगीत में आप सुने हाजी असलम साबरी कव्वाल और साथियों की गाई कव्वालियाँ। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये कलाम, बेदम वारसी का लिखा हुआ ये कलाम है और आवाज़ें हाजी असलम साबरी और साथियों की।

आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं राज इलाहाबादी की लिखी हुई कवाली हाजी असलम साबरी और साथियों की आवाज़ में।

सुगम संगीत में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हाजी असलम साबरी और साथियों की गायी कव्वालियाँ। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए शास्त्रीय संगीत में अब सुने पंडित M.S. गोपालकृष्णन का वायोलिन वादन। राग है अहीर भैरव।

शास्त्रीय संगीत में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे M.S. गोपाल कृष्णन का वायोलिन वादन, राग था अहीर भैरव। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। और लीजिए अब सुनिए छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। छिंदवाड़ा और नवगठित पांडुना जिले की आबोहवा में इन दिनों विकास, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की नई बयार बह रही है। खेतों में लहलहाती उम्मीदों से लेकर पर्यटन के नए क्षितिजों तक और युवाओं के भविष्य को संवारने से लेकर आम जनमानस की सुरक्षा तक जिले में बहुत कुछ खास हो रहा है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति ने नई चादर ओढ़ ली है। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले में वन विभाग द्वारा व्यापक पौधरोपण अभियान का शंखनाद कर दिया गया है। जिले के हरित आवरण को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इस वर्ष दोनों जिलों में कुल 22,55,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा के मुख्य वन रक्षक कमल अरोरा के अनुसार हाल ही में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई वन भूमियों को पुनः हरा भरा करने के लिए 3,69,000 सागौन के रूट शूट चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। मॉनसून की पहली बारिश के साथ शुरू हुआ ये महाअभियान जैव विविधता को समृद्ध करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। जुनारदेव के वन ग्राम काली माटी में गायत्री परिवार के तत्वाधान में 1100 पौधे रोपे गए। यहाँ वन विभाग की भूमि पर पंचमटी, त्रिवेणी और 9 पौधों की नवग्रह वाटिका स्थापित की गई है। वहीं परासिया में एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। वीरान पहाड़ी पर हरियाली लगाने के लिए सीड बॉल, गोबर और मिट्टी की गोलियों का उपयोग हो रहा है। बारिश में भीगने के बाद इन गोलियों के भीतर मौजूद बीज आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र बबुआ यादव ने शनिधाम समिति को ये सीड बॉल भेंट किए हैं, जो कोल इंडिया के पूर्व सीएमओ डॉ जयश्री राय द्वारा बेंगलुरु से मंगवाए गए थे। अब बात करते हैं माटी से जुड़े हमारे अन्नदाताओं की। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत परासिया विकासखंड के ग्राम उमरेठ के युवा प्रगतिशील किसान संदीप पवार ने वैज्ञानिक खेती की एक शानदार मिसाल पेश की है। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाकर हरी मिर्च, करेला और शिमला मिर्च का बंपर उत्पादन किया है। उन्होंने 11,50,000 रुपए की लागत लगाकर 24,75,000 रुपए की आय प्राप्त की है। उनका शुद्ध लाभ पूरे अंचल के किसानों के लिए एक नजीर बन गया है। दूसरी ओर मॉनसून की देरी से खरीफ फसलों की बोनी भले ही थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन कभी पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन का रकबा इस वर्ष बढ़कर 9,000 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। बारिश और जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान में छिंदवाड़ा ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। जिले ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 132% हासिल करते हुए 64,000 से अधिक कार्य पूरे किए हैं। पांडुना जिले में भी इस अभियान का भव्य समापन जन भागीदारी के साथ हुआ। पांडुना के ग्राम पंचायत भवन तेगांव में जगन्नाथ नेत्रालय द्वारा एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 105 मरीजों की जांच की गई और 25 को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चुना गया। अब बात करते हैं पर्यटन की, जो इस क्षेत्र की नई पहचान बन रहा है। तामिया के पातालकोट की वादियां इस बार अगस्त माह में पहली बार 3 दिवसीय सावन महोत्सव की गवाह बनेंगी। पर्यटकों को यहां सावन के विशेष झूले, बैलगाड़ी की सवारी और हस्तशिल्प प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। वल्चर प्वाइंट, चीड़ प्वाइंट और छोटा महादेव में ट्रैकिंग के जरिए रोमांच का तड़का भी लगेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन के लिए पांडुना के भूमा और जामसावली गाँव का चयन किया है, जहाँ होम स्टे विकसित कर युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिले के जामसावले स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर हनुमान लोक में इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच द्वारा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालु सुव्यवस्थित दर्शन कर सकें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ की पहल पर 12वीं और स्नातक में 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी अब महानगरों में MCA, BTEC और LLB जैसी उच्च शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। रोजगार के मोर्चे पर छिंदवाड़ा ITI के एक प्लेसमेंट ट्राइब में 139 प्रशिक्षणार्थियों को, जिनमें 52 पुरुष और 87 महिलाओं को रोजगार के लिए चुना गया है। इसके अलावा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पांडुना के PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में तनाव प्रबंधन और आत्महत्या की रोकथाम पर एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: MH हॉटलाइन सुनने वाले सभी श्रोताओं को राहुल तिवारी का प्यार भरा नमस्कार।

0: हेलो।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम MH हॉटलाइन में, और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं मैं, राहुल तिवारी। श्रोताओं, आप सभी को बता दें कि इस कार्यक्रम में जिन नंबरों पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपनी फरमाइश के गीत सुन सकते हैं, वो नंबर हैं 2710223 और 2710224। अगर आप मोबाइल फ़ोन से या लैंडलाइन से हमें कॉल करते हैं तो जाहिर तौर पर STD कोड लगाना ना भूलें। इंदौर का STD कोड है 0731, यानी 0731। तो 0731-2710223 और 2710224 ये हमारे फ़ोन नंबर हैं। बहुत ही सुहाना मौसम है, बहुत ही खुशनुमा माहौल है, और इस माहौल में आप सभी से जुड़कर हमें बहुत खुशी हो रही है। आइए बिना देर किए लेते हैं हमारे पहले श्रोता का कॉल, देखते हैं किन श्रोता से हमारी बातचीत हो रही है। नमस्कार MH हॉटलाइन। नमस्कार MH हॉटलाइन जी, नमस्ते, किन से बात हो रही है हमारी?
2: अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालरा नका इंदौर से।
1: बहुत बहुत स्वागत है अमीना जी कार्यक्रम में, और कैसे हैं आप?
2: सर, आप?
1: हम बहुत खैरियत से हैं, बहुत अच्छे हैं।
2: सर।
1: और आकाशवाणी इंदौर पर हमारे इंदौर के श्रोता का पहला कॉल आया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। तो उम्मीद तो यही है कि सब लोग बढ़िया होंगे, बारिश का मौसम है, क्या आनंद के पल चल रहे हैं?
2: सब आनंद में है सर, ठंडी मिली तो बहुत अच्छा लग रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो अभी अभी आपको क्या लगता है, इंदौर पर जो बादल मेहरबान हुए हैं, कम है या ठीक है, मतलब आप खुश हैं उससे?
2: अभी तो अपने हिसाब से बहुत अच्छे चल रहे हैं सर।
1: जी जी जी बिल्कुल। और ये राहत तो मिली है कि बहुत सारे इलाकों में पानी की कमी और तमाम सारी चीज़ें जो हुई थी गर्मियों के दौरान, अब धीरे धीरे वो पूर्ति होने शुरू हुई हैं।
2: हाँ,
1: चीज़ें
2: हाँ,
1: ठीक होना लगी हैं, और थोड़ा सा मौसम ऐसा है जिसमें हमें अपना और अपने परिवार का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए।
2: जी सर।
1: तो वो एक चीज़ बारिश में रहती है, बाकी तो हर तरफ हरियाली है, और जिसका मन दुखी हो वो भी खुश हो उठा, ऐसा मौसम है।
2: थोड़े धीरे धीरे गर्मी कम हो जाएगी सर।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको इस खूबसूरत मौसम में?
2: कच्चे धागे का सुना दीजिए सर।
1: कच्चे धागे फिल्म से कौन सा गीत?
2: ये श्यामे करम का क्या कहना।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी ये कवाली है, और नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज है इसमें। तो आइए अमीना जी, आपकी पसंद पर सुनते हैं ये कवाली।
2: थैंक यू सर
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार
0: जी, हमारे किन श्रोता से बात हो रही है हमारी?
1: मैं अनिल भंडारे सुजामन नगर से बोल रहा हूँ
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी, और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कैसे हैं आप?
1: हम ऐसे बढ़िया। आप बढ़िया, सावन का मौसम आ गया है, सब जगह हरियाली छाई हुई है और हरियाली के मैदान में हम खड़े हुए आपसे बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। ये तो मौसम बारिश का चल रहा है, सावन आने वाला है, और इंदौर में लगभग सभी दूर हरियाली हो चुकी है, तो आप जिस क्षेत्र से हैं इंदौर में, मुझे लगता है वहाँ पर भी अच्छा ही माहौल होगा।
1: हाँ, सुजामा नगर मध्य पानी गिरा
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, इंदौर का पश्चिमी क्षेत्र है।
1: हाँ,
0: तो कई बार ये होता है कि पश्चिम में पानी गिरता है, पूरब में सूखा रहता है। इंदौर में ऐसा भी देखने को मिलता है हमें।
1: हाँ, कभी कभी कहीं होता है ऐसा होता
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: पानी गिरता है तो पलासे में पानी नहीं गिरता
0: है जी। बिल्कुल बिल्कुल होता है ना, कई बार होता है, और लोग जिक्र करते हैं कि देखो हम वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ बहुत तेज बारिश है और यहाँ तो बिल्कुल पानी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। कौन सा गीत सुनवाए आज आपको?
1: आज दिलीप कुमार को याद में हम फिल्म उड़न खड़ो लग का गीत सुनना चाहेंगे
0: जी। कौन सा गीत?
1: ममर ममर रफी का गाया हुआ है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत खूबसूरत गीत है।
1: ये गाना शुरुआत आपको गा के सुनाता हूं।
0: जी मैं चाहूंगा भंडारे साहब कि रफी साहब की आवाज में ही गीत है, उनकी आवाज में इस गीत को हम सुनते हैं। आपको बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज है, शकील बदायूं ने लिखा है, तो क्यों ना हम सब मिलकर इस गीत का ही आनंद ले लें सीधा, है ना
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन जी। नमस्कार
1: जी। नमस्कार तिवारी जी,
0: बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं मोहम्मद यूनुस खत्री बोल रहा हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है खत्री साहब, और निमाड़ की धरती से हमारे श्रोता हैं आप, तो बड़ी खुशी की बात है। जी जी जी, कैसा
1: की धरती।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और निमाड़ तो प्रसिद्ध है अपनी मिर्च के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, कला के लिए, और आप तो खंडवा जहाँ जाने माने मशहूर पार्श्व गायक किशोर कुमार साहब जहाँ से हुए हैं
1: जी,
0: वहाँ से हैं, तो निश्चित रूप से संगीत और मुझे लगता है आकाशवाणी भी जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ की रगों में है। जी जी,
1: हमें तो दिलों में, रगों में।
0: जी, आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: मौसम बहुत अच्छा है
0: जी, बिल्कुल
1: बारिश भी हो रही है,
0: बिल्कुल कोई दो राय नहीं इसमें।
1: घड़ी भी जगा रहे हैं घर में।
0: अच्छा,
1: बजे भी बना रहे हैं।
0: क्या बात है।
1: और बहुओं को बोला आज ये चलने दो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो इस मौसम के हिसाब से
0: जी
1: आप भी सब भी आ जाइए, और मेरे घर की दावत है सबको।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: गाना सुना दीजिए तो मौसम में।
0: बिल्कुल,
1: मौसम बड़ा बेईमान है।
0: बहुत खूबसूरत गीत है।
1: और हाथ में मौसम बड़ा बेईमान है, हाथ में भजियों की प्लेट है।
0: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। भजियों की बात छेड़कर आपने अब कई घरों में जो है खुशबू फैला दी है भजियों की, जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज जा रही है उन सबकी जो है मुंह में थोड़ा पानी तो आ ही गया होगा ऐसा हमें लगता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से आप हमारे श्रोता हैं और आप लगातार जुड़े रहते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है हम सभी के लिए।
1: हमारा पूरा परिवार 46 साल से जुड़ा हुआ है
0: जी।
1: हम जुड़े, फिर मिसेज जुड़ी
0: जी,
1: फिर बच्चे जुड़े, फिर बहनें जुड़ी, या पोता पोती भी जुड़े हैं।
0: क्या बात है, और ये बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप इतने पुराने हमारे श्रोता हैं। तो आइए खत्री साहब, आपकी फरमाइश पर आपके पूरे परिवार, आपके सभी चाहने वालों के लिए हम सुनवाते हैं लोफर फिल्म से गीत, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो
0: जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: बहुत बहुत स्वागत है मैम कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: मैं फंटास्टिक हूँ, आपके की हालचाल?
0: हम सब बढ़िया हैं, और आपकी फरमाइश के गीत सभी श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं तो बड़ी खुशी हो रही है। आज कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: मूवी का नाम है
0: जी
1: चोरी चोरी चुपके चुपके, और गाने के बोल है देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। और एक बात और बोलना चाहती हूँ।
0: जी मैम।
1: कल मेरा बर्थडे था तो केसरी सिंह राजपूत जी और भगवान सिंह परमार जी और रमेश प्रजापति जी, इन्होंने मुझे विश किया। विश तो बहुत सारे श्रोताओं ने किया था
0: जी,
1: बट वो लोग यहाँ कॉल करते हैं तो उनके लिए दिल से थैंक यू। और ये सॉन्ग डेडिकेट नंदिनी को रहेगा और आगा

0: आपको अच्छा लगे तो आप भी सुन सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, एक दिन बाद ही सही,
0: थैंक
1: लेकिन पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: जी
1: और हम
0: थैंक
1: उम्मीद
0: यू।
1: करते हैं कि ये जो अब नया साल आ रहा है आपके जीवन में, ये बड़ी खुशियां, बड़े आनंद, स्वास्थ्य लेकर आए, और यूं ही आप आकाशवाणी से जुड़े रहें और आपकी फरमाइश हम आप तक पहुंचाते रहें। आइए इसी बात के साथ आज सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: राहुल जी नमस्कार।
0: नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कौन से श्रोता से हमारी बात हो रही है, कहां से बात हो रही है?
1: मैं सर विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू से।
0: बहुत बहुत स्वागत है व्यास जी आपका कार्यक्रम में। और बड़ी खूबसूरत जगह है महू, इंदौर के नजदीक। वहाँ से आप हैं, आसपास पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, हरियाली, और आर्मी का जो है हेडक्वार्टर है वहाँ। बिल्कुल, तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी में सेवारत हैं आप।
1: जी
0: जी बिल्कुल। कैसे हैं सब लोग?
1: और मैं यहाँ टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ सर, 2004 से मैं यहाँ हूँ
0: जी।
1: और आपका श्रोता तो मैं बहुत पुराना हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप हैं ही निश्चित रूप से। और यह हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे पुराने श्रोता जो हैं वो अभी भी रेडियो से जुड़े हुए हैं, और हम उन तक पहुंच पा रहे हैं, उनकी पसंद उन तक पहुंचा पा रहे हैं।
1: और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, आप इसको अन्यथा ना लें
0: जी,
1: पहले हम आपकी सुनते थे, अब आप हमारी भी सुनते हैं, और हम आपको कई बार बहुत बोर भी कर देते
0: हैं। नहीं, नहीं,
1: नहीं, माफी चाहते।
0: ये दोनों तरफ का ही संबंध है, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं है। तो निश्चित रूप से श्रोताओं की सुनेंगे तभी श्रोता जो है वो हमारे परिवार से जुड़कर रह पाएंगे।
1: लेकिन ये सर, ये जब मतलब टेलीफोन वाला मामला जब से शुरू हुआ है तो काफी नजदीक हम आ चुके हैं
0: जी,
1: है ना?
0: जी जी।
1: तो आखिर ये अनिल विश्वास जी की का जन्मदिन है
0: जी,
1: इनको संगीत का खतामा भी कहा जाता है, तो इन्हीं की याद में मुझे लता जी का गाया एक फिल्म का नाम है चार दिल चार राहें, इसका गाना सुनना है। गाने के बोल है इंतजार अभी और अभी।
0: बिल्कुल, तो आइए, अनिल विश्वास जी का संगीतबद्ध किया हुआ और साहिर लुधियानवी जी का लिखा हुआ गीत हम आपको और आपके सभी चाहने वालों को सुनवाते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, MH हॉटलाइन।
4: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
3: जी नमस्कार साहब, हमारे किन श्रोता से बात हो रही है, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप?
4: सर जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर
3: बहुत बहुत स्वागत है वर्मा साहब, और उज्जैन धार्मिक पर्यटन की नगरी और बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग जहाँ पर विराजित है वहाँ से आप बोल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है।
4: जी सर जी बिल्कुल, तो उज्जैन महाकालेश्वर का स्थान है।
3: और सबसे बड़ी चीज है कि आप जिस जगह से बोल रहे हैं वो जगह भी बड़ा व्यस्ततम इलाका है उज्जैन का, नानाखेड़ा बस स्टैंड।
4: बिल्कुल बिल्कुल सर जी, मेरा हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है और यहीं पर दुकान है।
3: जी जी जी, आपने बताया था इसके पहले जब हमारी चर्चा हुई थी, और आपने ये भी बताया था कि बड़ा दिन जो है आपका वो व्यस्तताओं से भरा गुजरता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आपकी दुकान पे और वहाँ के सामने से गुजरना होता है।
4: बिल्कुल सर जी, जितने भी तीर्थयात्री उज्जैन में आते हैं सब अधिकतर बस स्टैंड पर यहीं से गुजरते हैं, और कुछ बाहर के तीर्थयात्री आते भी हैं, तो मतलब उनको कभी जैसे कहीं गाइड करना है उज्जैन के बारे में।
3: जी जी।
4: और कौन कौन से प्रमुख स्थल है मतलब महाकालेश्वर के अलावा।
3: जी,
4: तो मैं मेरी तरफ से जैसे मेरे सैलून में अधिकतर तो बाहर के तीर्थयात्री आते हैं ये हेयर कट वगैरह कराने के लिए।
3: जी,
4: तो मैं उनको बातों में ही मतलब सारा उज्जैन का जो इतिहास है और आसपास के और कौन से प्रमुख स्थान है मंदिर के।
3: जी जी,
4: उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा देता हूँ सर। साधन क्या उपलब्ध होगा आपको और कहाँ से कौन सा कितना दूरी पर है, आजकल मैप के माध्यम से तो सब मालूम हो जाता है, पर एक अपन मौखिक रूप से भी बताते तो उससे आदमी को आत्मविश्वास हो जाता है कि हाँ यार व्यक्ति सही बता रहा है।
3: बिल्कुल सही बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति नए शहर में आता है, नए स्थान पर आता है, तो उसे सही जानकारी देना, और कहीं ना कहीं आप जैसे व्यक्ति जो हैं उन्हें जो जानकारी देते हैं उससे एक विश्वास पैदा होता है उस शहर के प्रति, उस शहर के नागरिकों के प्रति, कि हम कभी जाएंगे तो शायद हमें वहाँ एक कमी महसूस नहीं होगी, शायद हमें वहाँ पर भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी सेवा है।
4: और मेरे बहुत सारे मित्र हैं उज्जैन के अलावा, मतलब रेडियो के जितने भी मेरे दोस्त हैं
3: जी,
4: वो भारत के अन्य क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में भी हैं, जिनसे मैं फोन पर संपर्क बनाए रखता हूँ।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: और वो कभी भी उज्जैन कोई दर्शन करने आता है तो वो मुझसे जरूर मिलके जाता है उज्जैन में।
3: बिल्कुल, ये भी एक अच्छी बात है कि रेडियो के

0: जरिए जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं निजी जीवन में भी आपके लिए एक अच्छा प्रसंग बन रहा है, तो
1: बिल्कुल।
0: ये
1: और
0: तो
1: अभी अभी एक लखनऊ से भी मित्र आए थे हमारे, पांच
0: हाँ
1: मित्र आए थे उज्जैन में दर्शन करने,
0: जी
1: तो बाकायदा मैंने उनको रेलवे स्टेशन से पिक किया और उसके बाद में उनको मैं महाकालेश्वर तक ले गया और उनको उज्जैन में 2 दिन रहे, वो बहुत अच्छा लगा उनके साथ मेरे। राजेंद्र भारती जी नाम है उनके,
0: जी
1: लखनऊ के
0: जी
1: रहने
0: जी
1: वाले हैं वो,
0: जी बिल्कुल
1: बरेली के।
0: जी बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात है। और अब हम भी उज्जैन आएंगे और कभी उस इलाके से गुजरना होगा तो हम बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे कि हमारे एक श्रोता जो हैं वो नानाखेड़ा बस स्टैंड पर हैं, तो उनसे मिलते हुए हमें जो है फिर उज्जैन में जहाँ जाना होगा वहाँ की योजना हम आपके साथ मिलकर बनाएंगे। बहरहाल अब ये जानेंगे कि आज गीत कौन सा आपको सुनवाएं।
1: सर गाना सर ये आज दिलीप कुमार साहब हैं, पुराने अभिनेता जिन्होंने
0: जी
1: बहुत ही मशहूर मल्टी स्टार फिल्मों में काम किया है,
0: जी बिल्कुल, उनको
1: उनकी पुण्यतिथि है आज,
0: जी,
1: तो उन्हीं का एक गीत है, फिल्म का नाम है आदमी। इसमें
0: जी
1: एक गाना है, आज पुरानी राहों को कोई आवाज न दे।
0: बराबर, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़
1: जी
0: और
1: जी
0: शकील बदायूनी ने इसे लिखा था, आपको बताना चाहेंगे। संगीत रचना
1: जी
0: नौशाद की थी, बड़ा खूबसूरत गीत है और जब भी सुनते हैं बड़ा मार्मिक सा गीत है, जीवन की सच्चाइयाँ जो है इस गीत में, तो
1: जी
0: बहुत खूबसूरत फरमाइश रही आपकी, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पेशे खिदमत है आपके लिए
1: जी
0: आदमी फिल्म से ये
1: धन्यवाद, बहुत
0: गीत।
1: बहुत धन्यवाद सर।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्ते सर,
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। किन से बात हो रही है हमारी?
1: मैं कश्मीर सोना मुख्य लतीफ मोहम्मद रीना।
0: बहुत बहुत स्वागत है रैना साहब आपका कार्यक्रम में, और बड़ी खुशी की बात है कि इतनी दूर से भारत के सबसे ऊपर वाले भाग में से एक कश्मीर जो है, वहाँ से हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, आकाशवाणी इंदौर से जुड़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। कैसे हैं वहाँ पर और कैसा मौसम है कश्मीर में?
1: आजकल तो उसमें बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, मौसम है अभी।
0: जी। और क्या कामकाज करते हैं आप वहाँ पर आपकी जीविका के लिए?
1: पर्यटन के साथ
0: अच्छा, पर्यटन से ही जुड़े हुए हैं आप, तो बहुत
1: हाँ
0: सारे नए लोगों से मिलना जुलना तो आपका नियमित रूप से होता रहता होगा।
1: सही बात, और कभी बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ।
0: जी। थोड़ी सी आवाज़ शायद ब्रेक हो रही है, आवाज़ कट रही है नेटवर्क के कारण, तो
1: हाँ हाँ सही।
0: ये जानना चाहेंगे कौन सा गीत आज आपको हम सुनवाएं?
1: फिल्म के नाम है किंग वाइस।
0: जी,
1: हाँ वो लता मंगेशकर की आवाज।
0: किंग अंकल।
1: हाँ किंग अंकल,
0: ओके, और कौन सा गीत है इस फिल्म का?
1: ये कोई आंखें इस जहाँ का बनाए ये।
0: इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें,
1: हाँ, ये
0: लता
1: वाला।
0: मंगेशकर और नितिन मुकेश जी की आवाज़ है। चलिए रैना साहब, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी फरमाइश पर सुनवाते हैं ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ, मैं श्रीनिवास बोल रहा हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है श्रीनिवास जी, आप तो इंदौर से ही हैं हमारे श्रोता। जी जी, कैसे हैं आप सर? अच्छे हैं जी। और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं? स्वास्थ्य कैसा है आपका? हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो, श्रीनिवास जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमें लगता है शायद नेटवर्क के अवरोध के कारण ये कॉल बाधित हुई है, और कार्यक्रम का अंतिम गीत जो है वो हमें सुनना है, सुनवाना है। देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन है। तो फिलहाल श्रोताओं, हमारे पास कोई कॉल नहीं है और अगला कॉल आएगा, लेकिन कार्यक्रम का समय भी आगे बढ़ रहा है। तो आइए, आज चूंकि दिलीप कुमार साहब की पुण्यतिथि है तो हम मधुमति फिल्म से ये गीत सुनवाते हैं आपको। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शैलेंद्र ने लिखा है, सलील चौधरी ने तर्ज बनाई है।

हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम MH हॉटलाइन, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप तक पहुंचाएंगे।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हम जहां जन्म लेते हैं, जहां बड़े होते हैं, वो स्थान हमारे लिए स्मृतियों का एक जीवंत ग्रंथ होता है, हमारे संस्कारों की पहली पाठशाला। हमारे मन का सबसे आत्मीय कोना होता है हमारा गांव, हमारा शहर। और हर गांव की एक अपनी धुन होती है, हर शहर का एक अपना राग होता है। दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाएं, उस धुन को, उस राग को सुनते ही मन का मौसम सुहाना हो उठता है, मन खिल उठता है। सच तो ये है कि समय की अनेक परतें बिछी होती हैं हमारे शहर या गांव के आंगन में, जिसमें छिपी होती हैं हमारी परंपराओं की रंगत, उसके इतिहास की गुनगुनाहट। कभी किसी नदी का तट किसी जगह की पहचान बन जाता है, कभी उसका प्राकृतिक सौंदर्य उसकी विशेषता बन जाता है, कभी मंदिर, किले या बावड़ियां बीते कल की कहानी कहते हैं, कभी किसी लोक कला की चहक, किसी मेले की रौनक या किसी खास व्यंजन का स्वाद उस स्थान का सबसे सुंदर परिचय बन जाता है। तो आज इस फोन इन कार्यक्रम में हमें बताइए कि आपके शहर या गांव की वो कौन सी खास पहचान है जिस पर आपको सबसे अधिक गर्व है, या जिसकी वजह से आपको अपना शहर, अपना गांव, अपना रहने का स्थान अच्छा लगता है। तो आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम

0: में बात आपके शहर आपके गांव की खास पहचान के बारे में। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछौरा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कैसे हैं
1: जी? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
0: तो आज का जो
1: आपको बताऊँ, 2005 से आकाशवाणी भोपाल का नियमित श्रोता हूँ।
0: अच्छा, तो चलिए, आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हो गए। आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, हम बात कर रहे हैं आपके शहर आपके गांव की, हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है आपके रहने के स्थान में जो आपको गर्व महसूस करवाती है या जिस बात से आपको अच्छा लगता है अपना गांव या अपना शहर। तो आपने बताया कि आप बछौड़ा के रहने वाले हैं, ये उज्जैन से कितनी दूर है?
1: जी, उज्जैन से 30 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, एकदम साफ सुथरा क्लीन शहर है हमारा, गांव है हमारा।
0: अच्छा,
1: पेड़ पौधे हैं, काफी बगीचे हैं हमारे यहाँ पर, और मतलब आपको बताऊँ, एकदम शांत स्वभाव के लोग रहते हैं यहाँ पे, और पानी की उचित व्यवस्था है हमारे पास, पीने के लिए भी, इस्तेमाल के लिए भी, सिंचाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है।
0: जी जी, आपने कहा बाग बगीचे बहुत से हैं, किस चीज के हैं?
1: जी, जैसे कि आम के काफी बड़े बड़े पेड़ हैं, उसके साथ में ऑरेंज के जो बगीचे होते हैं ना जी, उसके मतलब आपको काफी बड़े बड़े मतलब पैमाने पर लोगों ने खेतों में अपने ऑरेंज लगा रखे हैं।
0: तो
1: उससे मतलब काफी हरियाली है हमारे गाँव, और हम तो जहाँ पर रहते हैं, हमारा गांव का मतलब ऐसा विकास हुआ है कि पिछले 5 सालों में सड़कें बन चुकी है, नालियां बन चुकी है, साथ में बिजली की व्यवस्था पूरी है, तो हमें अपने गांव पर पूरा गर्व है।
0: क्या बात है, तो आपका जो गांव है वो बहुत ही साफ है, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही। तो जाहिर सी बात है कि जो गाँव के लोग हैं उनकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ना?
1: जी बिल्कुल, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना
0: जी,
1: तो इसमें मतलब ऐसी कोई समस्या वाली बात भी होती है तो सुलझा लेते हैं।
0: तो आपके गांव का जो बाग बगीचा है, जो सफाई है, और आपने बात की अपनेपन की, कि लोगों के बीच बहुत अपनापन है, अपनत्व है, तो इस वजह से आपको आपका गांव प्यारा लगता है, तो ये बना रहे।
1: हम कहीं जाते भी हैं ना
0: जी,
1: तो 2-4 दिन में वापस अपने ऐसा लगता है कि जल्दी से घर जाए, अपने परिवार वाले से मिले और अपने गाँव में रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कहीं चले जाए, दुनिया के किसी कोने में हो हम, कितनी भी सुविधाएं हो, लेकिन अपना गाँव अपना शहर अपना घर बहुत याद आता है ना?
1: बिल्कुल, जब घर पे आ जाते हैं कपड़े चेंज करके बस आराम से बैठ जाते हैं तभी सुकून मिलता है।
0: तो चलिए, आपके गांव में आपको सुकून मिलता रहे, और जिस विशेषता को आपने यहाँ आज कहा है कि ये एक साफ गांव है, ये हर तरह से सुविधाओं से भरा गांव है, और इसमें पूर्णतः जो विकास हुआ है वो भी हुआ है, रोड अच्छी है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, आगे और भी व्यवस्थाएं अच्छी होती चली जाएं, ये हमारी कामना है। अपने गांव से इसी तरह का प्रेम बनाकर रखिए। बहुत अच्छा लगा प्रेम सिंह जी आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद।
2: यूं ही तुम मुझसे बात

0: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नाम बताइए।
1: तारूलाल सुतार।
0: तारूलाल सुतार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: दारू गांव से बोल रहा हूँ, नीमच जिले के पास में गांव है अपना, जिला नीमच, मध्य प्रदेश।
0: दारू गांव, अच्छा।
1: हाँ जी।
0: तो भाई देखिए, आज बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आपके गांव की, आपके शहर की। हम जानना चाहते हैं कि आपके गांव में अगर कोई ऐसा प्रसिद्ध स्थान हो या जो भी विशेषता आपको लगती हो वो आप आज इस मंच पर रख सकते हैं। क्या खास है आपके गांव में?
1: हमारे गांव में देवनारायण जी का मंदिर है, नागराज का मंदिर, वो बहुत प्रसिद्ध है, दूर दूर से यात्री आते हैं वहाँ।
0: अच्छा।
1: शनिवार के दिन तो मेले जैसा लगता है वहाँ।
0: अच्छा, नागराज जी का मंदिर।
1: हाँ, देव नारायण जी नाम है, देव नारायण नागराज का मंदिर है।
0: अच्छा, देव नारायण नागराज।
1: शनिवार के दिन बहुत भक्तगण आते हैं वहाँ। और पास में, गांव के पास में नदी है।
0: नदी है, कौन सी नदी?
1: हाँ, गांव के पास में एक नदी है, बिल्कुल गांव से लगती हुई, बिल्कुल गांव के किनारे, गांव उसी के किनारे पे है।
0: क्या
1: जब वो नदी में पानी देता है ना, इतना मस्त लगता है कि आप देखते ही जाओ।
0: तो ये बताइए कि ये जो मंदिर है इसमें किसकी पूजा होती है? नाग देवता की?
1: हाँ, नाग देवता की पूजा शनिवार के दिन पूजा होती है उनकी। वो रोज तो फिर साफ सफाई नहीं करते हैं।
0: अच्छा।
1: और शनिवार खास रहता है उनका।
0: तो एक मेले सी रौनक होती है आप बता रहे हैं। तो चलिए,
1: हाँ।
0: बहुत अच्छा लगा तारूलाल जी आपसे बात करके। आपने बताया कि
1: हाँ।
0: आपके गांव में एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है जिसमें दूर दूर
1: हाँ।
0: से लोग आते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं, और नागराज की
1: आना
0: इसमें पूजा
1: कभी,
0: होती है।
1: आप भी आना कभी, आपका भी
0: जरूर
1: स्वागत रहेगा।
0: जरूर जरूर। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि नदी किनारे
1: हाँ।
0: बसा एक गांव जहां एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये
1: हाँ।
0: आपके गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: थैंक
0: आपने फोन किया, बहुत आभार।
1: हाँ।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं डीएस परिहार, ग्राम लभौली, जिला रीवा।
0: डीएस परिहार जी ग्राम लभौली से बोल रहे हैं
1: जी।
0: कैसे हैं?
1: मुझे ठीक है, हाल चाल सब ठीक है।
0: और आपका गांव लभौली कैसा है?
1: गांव एक छोटा सा गांव है, ज्यादा कोई विकसित नहीं है।
0: छोटा सा गांव है लेकिन लोगों के बीच एक आत्मीयता तो होती ही है ना, ये भी एक विशेषता होती है। तो आज हम यही बात कर रहे हैं कि आपके गांव की कोई खास बात आप बता सकते हैं, या परंपरा में कोई लोकगीत हो, कोई व्यंजन हो, कोई धार्मिक स्थल हो, कोई ऐतिहासिक स्थल हो, उसकी चर्चा आप कर सकते हैं आज के कार्यक्रम में।
1: ऐसा कुछ नहीं इधर।
0: कुछ व्यंजन तो हो ही सकता है। है ना, कोई व्यंजन तो होगा जो आप लोग आपस में बनाते खाते होंगे, परिवार में बनता होगा, खास अवसरों पर बनता होगा।
1: हाँ, सब बनते रहते हैं। दाल पूड़ी बनती है और निकमच बनता है, इंदरहर बनती है।
0: दाल पूड़ी इंदरहर, वाह। आपने तो बहुत ही अच्छे दो पकवानों का नाम ले लिया। देखिए बघेलखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है इंदरहर।
1: हाँ, रसाज है, ये सब बुंदेलखंड का, बघेलखंड का जैसा बोल
0: जी,
1: रहे
0: आप। जी जी जी जी
1: रेसिपी जो है बहुत वैसा है।
0: तो आपको क्या पसंद है इनमें सबसे ज्यादा?
1: मैं रिकमच में भी खाता हूँ हमेशा, एक हफ्ते में एक बार खाता हूँ।
0: क्या खाते हैं?
1: रिकमच।
0: रिकमच ये कैसे बनता है?
1: वो दाल से ही बनती है।
0: दाल से?
1: मूंग की, हाँ मूंग की दाल।
0: मूंग की दाल से रिकमच। मीठा होता है या नमकीन होता है?
1: नहीं नहीं नहीं ये तो सब्जी होती है, इसकी मसालेदार सब्जी बनती है।
0: अच्छा। तो ये पारंपरिक व्यंजन है आपके गांव के, है ना, जो शादी ब्याह के समय भी आप लोग बनाते होंगे।
1: शादी वगैरह में तो ये सब बनता रहता है अक्सर।
0: इंद्रहर की आपने बात की है, ये भी एक बड़ा ही प्रसिद्ध वहाँ का व्यंजन है ना
1: जी। हाँ,
0: क्योंकि देखिए हम तो भोपाल में रहते हैं, तो जब कभी इस तरह का अवसर आता है कि बघेलखंड का कोई व्यंजन हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो हम अक्सर जो इंद्रहर है इसकी फरमाइश कर लेते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो चलिए, एक स्थान अपने व्यंजन की वजह से भी जाना जाता है और ये भी हमारी संतोष और गर्व का विषय होता है। तो परिहार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह बने रहिए।
1: धन्यवाद।
0: बने रहिए आकाशवाणी।
1: दो दिन में लगाता हूँ, अक्सर बिजी रहता है।
0: हाँ, लेकिन आज बात हो गई, बहुत अच्छा लगा और बहुत जायकेदार बात हुई।
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से अरबिला सिंह तोमर बात कर रहा हूँ।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम इस कार्यक्रम में। आपने बताया कि आप मुरैना के रहने वाले हैं, खास मुरैना
1: मेरा
0: के रहने,
1: गांव है, तरसमा गांव है मुरैना में।
0: मुरैना के पास तरसमा गांव में रहते हैं आप। तो
1: जी
0: देखिए, आज तो बात हो रही है आपके रहने के स्थान की, इसलिए हमने गांव को विशेष रूप से पूछ लिया कि आपका
1: जी
0: जो ये गांव है, इसकी ऐसी कौन सी खास विशेषता है जिस पर आपको गर्व है?
1: जी महोदया, मेरे गांव की खास विशेषता जिस पर मुझे गर्व है कि मेरे गांव में आर्मी में बहुत से लोग सर्विस कर रहे हैं, कम से कम 80% लोग, और 17 लोग यहाँ शहीद हो चुके हैं। शहीद स्थली के नाम से मेरा गांव जाना जाता है।
0: अच्छा, 17 लोग शहीद हुए हैं।
1: शहीद हुए पूरे प्रदेश में पहला गांव, इतने सर्विस में, अर्ध सैनिक बलों में, सैनिक बलों में कहीं नहीं, किसी गांव में नहीं होता।
0: क्या बात है। तो इस गांव की माटी को हम नमन करते हैं, इस गांव की जो माताएं हैं, जो अभिभावक हैं, उनको हम नमन करते हैं कि
1: जी
0: इतने बच्चों की शहादत के बाद भी एक वो जज्बा आपके भीतर है कि देश की सेवा करना है हमारे बच्चों को, और आप सेना
1: जी
0: में अर्धसैनिक
1: एक
0: बलों
1: एक
0: में
1: एक
0: भेजते
1: एक घर
0: हैं।
1: में चार चार बच्चे अभी अर्धसैनिक बलों में, मेरे भी 3 बच्चे अर्धसैनिक बलों में सर्विस कर रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा हमें हरविलास जी आपसे बात करके, और वास्तव में मन श्रद्धा से झुक गया है आपके गांव के प्रति।
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया। बने
1: धन्यवाद।
0: रहिएगा
1: नमस्ते,
0: आकाशवाणी के साथ।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सुनीता मैडम जी को दिल से नमस्कार, प्रणाम आदाब। और मैं भगवान से प्रार्थना दुआ कर रहा था कि आज हमारे सुनीता मैडम जी से बात हो जाए, तो हो ही गई। कहते हैं लागी लगन लागी लगन हो गया सगुन
0: जी,
1: और मेरा मन हो गया मगन आपसे बात करके। और हम तो आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल के गुण गाने लगे।
0: क्या बात है
1: और गाते रहेंगे।
0: तो एक लगन लगी थी मीरा को, दूसरी लगन लगी है आपको, ये हमें समझ में आया है। तो अपना परिचय तो पूरा दे दीजिए।
1: परिचय बता दूं, कहते हैं ठंडी भी थी और गर्मी भी थी और अब आ गई बरसात। और मौसम चाहे जो भी हो, हम सुनीता मैडम जी के हमेशा साथ।
0: वाह बिल्कुल।
1: और अब पता बता दूं, हिंदुस्तानी कलाकार यूट्यूब ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका बोल रहा हूँ। अभी ईडन गार्डन बता दिया, अशोक वाटिका बता दिया, तो सब कुछ आ गया समझ लो। और हिंदुस्तान के दिल से बोल रहा हूँ।
0: तो चांद मोहम्मद खान जी, आपने कल्पा बताया, सतना के पास से आप बोल रहे हैं, और आज का जो विषय है वो आपके गांव आपके शहर से ही जुड़ा हुआ है। आप हमें बताइए कि आपके शहर आपके गाँव की क्या खासियत है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है या आपको गर्व का अनुभव करवाती है आपके गाँव से जुड़ी हुई।
1: हमारे गांव ग्राम कल्पा जिला सतना की बात की जाए, छोटा सा कस्बा है मैडम जी, और यहाँ के जो लोग बाग हैं, महिलाएं हैं और बहुत ही भक्त संगीत से ओतप्रोत हैं, जो देवी देवताओं की पूजा इबादत करती हैं और सभी लोगों को मानती हैं जी जान से। और हमारे गांव के आसपास सबसे बड़ा जो है, कहते हैं कि आम का कटोरा कल्पा, आम की यहाँ प्रसिद्धि है, आम और कैथा, इमली और जामुन।
0: वाह, तो कौन सा आम होता है?
1: मैं बता दूं कि यहाँ इतने जबरदस्त आम के बगीचे हैं, गार्डन है पूरा, दोनों तरफ से नदी नाले बह रहे हैं। इसीलिए कहा करता हूँ कि लंका में अशोक वाटिका था और कल्पा में चांद मोहम्मद का कल्पा,
0: सतना में कल्पा है। तो आपने कहा कि आम के बहुत से बगीचे हैं और

0: क्या था, और इसके अलावा क्या है?
1: इमली और जामुन।
0: तो ये तो फल फूल से भरा हुआ आपका गांव है। तो
1: जी,
0: कौन कौन से आम होते हैं आपके गांव में?
1: आम तो अब सुनीता मैडम जी बता दूं, यहाँ देसी आम ही होते हैं, पर बहुत ही लाजवाब होते हैं। उसका टेस्ट और स्वाद जो है, यहाँ के आम हमारे ज्यादातर वहाँ कानपुर भेजे जाते हैं
0: जी,
1: और वहाँ बांदा।
0: क्या बात है। तो देखिए, मौसम भी आमों का है ही, और स्वाद ले रहे होंगे आप आम का। आपने बात की तो हमारा भी जो मुंह है वो मीठा हो
1: अगर
0: गया।
1: वक्त मिला सुनीता मैडम जी, तो मैं आपके लिए आम जरूर अपने कल्पा के भेजूंगा, फिर उसका टेस्ट और स्वाद बताइएगा। बहुत ही लाजवाब आम होते हैं देसी, और उसका पना खाइए, मजा आ जाता है। सेहत से भरपूर, और सेहत से भरपूर आप हैं जब कार्यक्रम में आती हैं, तो चांद तो एक ही है, पर जब आप कार्यक्रम में आती तो हजारों चांद उतारते हैं।
0: क्या बात है। तो चांद मोहम्मद खान जी, आपने अपने गांव कल्पा के विषय में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। और जाहिर सी बात है कि आप कहीं बाहर जाते होंगे तो गांव की याद आती होगी।
1: अरे आम बस का नहीं मैडम जी, मैं बता दूं मेरे ग्राम कल्पा की एक खूबी और बता दूं। यहाँ पर सबसे मेन खूबी है मैडम जी कि ना तो ठंडी होती है अधिक, ना अधिक गर्मी होती है, और ना अधिक बरसात, सब कुछ मीडियम होता है।
0: तो मतलब एक पूरा मौसम का संतुलन आपके गांव में बना रहता है ना, ये बहुत
1: सब
0: अच्छी
1: कुछ
0: बात
1: है।
0: है।
1: और मैं एक बात और बता दूं कि आसमान के तारों की गिनती शायद है,
0: जी
1: और समुद्र की गहराई का अनुमान 9,999 मीटर की गहराई का अनुमान मैं बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज की बात। और मुझे जितना प्यार आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल से है, उसका आंकड़ा लगाना, अनुमान लगाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है।
0: जी तो चांद मोहम्मद खान जी, आकाशवाणी से आपका जो प्रेम है उसको बना कर रखिए। आपने आज हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: वाह, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से योगेश जी बोल रहे हैं, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया है, अच्छे हैं, और बारिश होना भी अब तो शुरू हो गया है।
0: तो कैसा है आपका बेमेतरा बारिश में?
1: बहुत

0: हो गया है, मतलब कहें तो लगातार 4 दिन से बारिश हो रहा है।
1: तो ये अच्छी बात है कि चलिए बारिश तो शुरू हुई। हम आज जो बात कर रहे हैं, आपके गांव की, आपके शहर की बात कर रहे हैं, कि ऐसी कौन सी खास पहचान है जिस पर आपको गर्व है आपके गांव से जुड़ी हुई?
0: अब हमारा यहाँ गांव एक छोटा सा गांव है, लगभग 1000 की जनसंख्या है, और हमेशा से शांति प्रिय रहा है गांव। कभी किसी तरह का अनैतिक व्यवहार या उस तरह की घटनाएं नहीं हुई है आज तक।
1: तो जी जी जी
0: अदर अदर मतलब सभी समूह के लोग रहने के बावजूद भी गांव काफी बढ़िया है
1: जी। और आसपास कोई ऐसा धार्मिक या ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हो, कोई नदी हो?
0: हमारा जो जिला है बेमेतरा, वो गांव से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वहाँ माता शीतला और माता भद्रकाली शक्तिपीठ विराजमान है।
1: क्या बात है, तो माता शीतला और माता भद्रकाली का मंदिर है आपके गांव के पास। तो किन किन अवसरों पर कोई खास आयोजन होता है? नवरात्रि में तो होता ही होगा।
0: नवरात्रि के अवसर पर ही होता है, मतलब वही अप्रैल में एक बार और उधर मान के चलिए
1: अक्टूबर,
0: सितंबर अक्टूबर के
1: जी जी जी जी। और इसके अलावा कभी मेले वगैरह भी लगते हैं आपके गांव में?
0: मेला जो होता है पास में ही लगता है, मतलब गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है। और गांव में जो होता है वो मड़ई महतर होता है, मतलब जो
1: मड़ई
0: वाला।
1: हाँ जी जी जी। तो ये जो मड़ई है ये भी मेले का एक छोटा रूप है ना?
0: हाँ जी, एक छोटा रूप है, और ये ज्यादातर दीपावली के आसपास ज्यादा होता है।
1: तो इस मड़ई में कोई खास क्या रौनक होती है?
0: रौनक तो यही है कि अब साल में एक बार होता है करके लोग आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, और जो भी उसकी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, उस हिसाब से मतलब करते हैं। जैसे दीपावली हो गया, दीपावली में जो हमारा गोवर्धन पूजा होता है, उसमें हमारे जो पशु होते हैं, गाय बछड़े,
1: जी जी,
0: तो उनका विशेष महत्व होता है।
1: हाँ हाँ हाँ
0: जी।
1: तो उस अवसर पर आप लोग एकत्रित होते हैं और पशुओं की पूजा करते हैं, पशुधन की। तो योगेश जी, आपने बताया कि आपके गांव के पास शक्तिपीठ है, देवी के 2 मंदिर हैं, और इसके साथ ही अपने गांव में लगने वाले मड़ई की आपने बात की, जिसकी रौनक हमारे स्टूडियो तक भी पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बने रहिए इसी तरह आकाशवाणी के साथ।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताएं।
1: अनोखे सिंह सर जी।
0: अनोखे सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बाग जिला धार, विराट नगरी है हमारी।
0: बाग जिला धार से आप बोल रहे हैं?
1: हाँ हाँ।
0: तो ये बताइए कि आपके गांव की कौन सी ऐसी खास बात है जिस पर आपको गर्व है?
1: हमारे गांव का विश्व प्रसिद्ध एक बाग गुफा है सर जी।
0: जी जी
1: गुफा बोल।
0: जी जी जी जी जी। आपने धार जिले में स्थित बाग की गुफाओं की चर्चा की जो कि मुख्य रूप से अपनी प्राचीन बौद्ध भित्ति चित्रकला और शैलकृत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और बहुत पुरानी गुफाएं हैं ये, लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी की ये गुफाएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व है। तो इस वजह से आपको अपना गाँव, अपना शहर अच्छा लगता है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई।
1: और हमारी बागनी नदी पे महादेव बसे हुए, जबड़ेसर, अन्नेसर, नीलकंठेसर, भूतेसर और महाकालेसर।
0: क्या बात है,
1: बागनी नदी के तट पे।
0: जी जी जी जी। बागनी नदी है?
1: बागनी नदी है सर जी, नर्मदा में इसका संगम है, निसरपुर में।
0: तो चलिए अनोखे सिंह जी, आपने अपने गांव के बारे में बताया जिस पर आपको गर्व है।
1: बड़केसर है, खेड़ापति हनुमान है, ये सब प्राचीन है, ऐतिहासिक है सर जी।
0: जी, जी,
1: कोई धाम है
0: जी। तो बहुत से धार्मिक स्थल हैं आपके गांव के आसपास, ये जानकर बहुत अच्छा लगा हमें।
1: सर जी किला है हमारे नगर में सर जी।
0: जी जी।
1: और हमारे यहाँ संचालन, हमारे जो सक्षम लोग हैं सर जी, वो अन्य लोगों को सामूहिक लेके बहुत अच्छे से चलते हैं। भंडारा होता है जीरो वाले हनुमान जी, खेड़ापति हनुमान जी, गंगापुरी धाम, तो सब आम जन को आमंत्रित करके बहुत अच्छी सी सुविधा व्यवस्था की जाती है।
0: बहुत अच्छी बात है कि धार्मिक आयोजनों में, भंडारे में आप सब एकत्रित होते हैं और प्रेम के साथ अपना एक समय गुजारते हैं, भक्ति और आस्था के साथ, आनंद के साथ। तो ये आनंद आपके जीवन में बना रहे, ये आस्था आपके जीवन में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, अमर सिंह राठौर बोल रहा हूँ मैम, कटनी ग्राम डिठवारा से।
0: अमर सिंह राठौर जी, आप
1: जी
0: बोल
1: जी
0: रहे हैं बिठवारा से, कटनी के
1: जी
0: पास ही
1: जी
0: गांव है।
1: जी
0: कैसा
1: जी
0: है आपका गांव? क्या खास बात है इस गांव की?
1: मैम, मेरे गांव के पास मैम पुरातत्व विभाग का जुगिया बाबा के स्थान है मैम।
0: जुगिया बाबा।
1: जी जी जी प्राचीन विष्णु मंदिर था वहाँ पे, आज भी वहाँ पे पुरातत्वकालीन की ईंटें, छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं और स्थान उनका बना हुआ है। और प्रतिमाएं तो चोरी चली गई हैं आज से करीब 20-25 साल पहले।
0: जी
1: अच्छी
0: जी
1: प्रतिमाएं थी, 5-5 फुट की 2-3 प्रतिमाएं थी, हमने देखा है उनको। और वहाँ पे मकर संक्रांति के दिन अच्छा मेला लगा करता था, खूब
0: अच्छा
1: लोक नृत्य हुआ करते थे। हम
0: अच्छा
1: लोग यहाँ दिवारी का नृत्य होता है जो फेमस है हमारे गांव में,
0: देवारी लोक नृत्य।
1: हाँ हाँ जो यादव लोग करते हैं ना, ग्वाल लोग।
0: ये दिवाली के आसपास करते हैं ना?
1: जी जी जी हाँ, मकर संक्रांति के टाइम भी वो लोग वहाँ नृत्य किया करते थे।
0: अच्छा, तो
1: और
0: दीपावली के
1: जी
0: आसपास भी करते हैं और
1: जी
0: मकर
1: जी जी
0: संक्रांति के
1: हमारा
0: अवसर पर भी करते हैं।
1: छोटा
0: कैसी वेशभूषा होती है उनकी?
1: सा मैम, वो मोर पंख वगैरह लगाते हैं,
0: जी
1: लड़ियाँ पहनते हैं,
0: हाँ हाँ
1: लच्छेदार, वो बढ़िया अच्छे उनके वस्त्र चमकीले टाइप के रहते हैं,
0: जी जी जी जी
1: पंख लगा के नाचते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। और
0: वाह
1: ढोला की थाप बजती है, मदार उनकी, बहुत
0: वाह
1: अच्छा लगता
0: वाह
1: है।
0: वाह, ढोलक मादर के साथ देवारी
1: जी जी
0: नृत्य। आपने तो एक बिल्कुल सुंदर सा एक दृश्य खींच दिया है।
1: जी
0: वैसे मुझे जो हल्का सा याद आता है कि यही लोग शायद दीपावली के अगले दिन आकर घरों की नजरें भी उतारते हैं ना?
1: हाँ हाँ जी जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल यही लोग करते
0: है ना,
1: हैं,
0: बताइए कैसी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: शुभ मंगल की कामना है कि दीपावली के बाद ये आते हैं यादव समुदाय के लोग
1: जी
0: और
1: जी मैम।
0: घरों में, अलग अलग घरों में जाते हैं और उन घरों की नजर उतारते हैं,
1: हाँ
0: है
1: ये
0: ना?
1: होता मैम, गांव में तो अक्सर होता है, शहर में तो नहीं पता,
0: जी जी
1: पर
0: जी
1: गांव
0: जी
1: में तो हर घर में वो लोग आते हैं
0: क्या बात है।
1: और
0: तो
1: उपहार वगैरह ले जाते हैं घर से वो लोग,
0: हाँ हाँ
1: उनका ये
0: बिल्कुल
1: पूरा निश्चित रहता है।
0: जी जी तो अमर सिंह राठौर जी, आपने बिठवारा गांव की जो विशेषता बताई हमें बहुत अच्छा लगा। और हालांकि मूर्तियां अब नहीं है वहाँ, लेकिन एक ऐतिहासिक स्थल ये है ना?
1: हाँ
0: और
1: बिल्कुल
0: आपने मेले की बात की और देवारी नृत्य की बात की, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें आपके गर्व का विषय हैं। तो ये गर्व आपके मन में बना रहे, अपने स्थान से प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फ़ोन किया।
1: जी, थैंक यू।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
1: नमस्कार दीदी, प्रणाम। मैं कोदवा साजा छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ दीदी।
0: कोदवा साजा छत्तीसगढ़।
1: छत्तीसगढ़, हाँ दीदी।
0: अच्छा, तो बताइए क्या विशेषता है आपके गांव की, आपके छत्तीसगढ़।
1: छत्तीसगढ़ तो हमारा यहाँ भाषा भी प्रिय है, छत्तीसगढ़ी बोली जो बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया।
0: छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, बिल्कुल।
1: यहाँ का जो अपना चावल जो रात में डुबाते हैं ना बासी, उसी ज्यादा फेमस है छत्तीसगढ़ में। बासी बोरे बासी बोलते जिसको,
0: बासी खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
1: यहाँ का जो अपना सब्जी है, भाजी जिसको बोलते हैं, हरी हरी सब्जी है ना, यहाँ फेमस है अपन छत्तीसगढ़ में खाने का।
0: ये भाजियाँ आपको अच्छी लगती हैं और बासी खाने की एक परंपरा है वहाँ पर, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ। और यहाँ तो त्योहारों में अलग अलग प्रकार के सब कलेवा बनाते हैं दीदी।
0: क्या क्या बनाते हैं?
1: जैसे अपना तीजा पोलवा जिसको खुरमी ठेठरी बोलते हैं, चावल अपना इसका गेहूं आटा बनाते हैं दीदी, उसमें अपना खुरमी, अच्छा चना बेसन का जो इसमें बेल के लंबा लंबा ठेठरी बनाते हैं, उसके इधर बहुत प्रचलन है दीदी छत्तीसगढ़ में।
0: जी जी, तो बहुत से पारंपरिक आपके जो पकवान हैं वो बनाए जाते हैं अलग अलग त्योहारों में।
1: हाँ,
0: आपने बोली भाषा की बात की, छत्तीसगढ़ी बोली की बात की है, तो
1: हाँ।
0: हमें लगता है कि कुछ पंक्तियाँ आप छत्तीसगढ़ी में बोल दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: दीदी अब ठीक है, चलो बोल ही रहा मैं आपसे। दीदी आपसे मैं तो बोला था छत्तीसगढ़ी भाषा में, है ना? हाँ, आप मन बढ़िया, आप अच्छा रहा, अच्छा से बढ़िया, भैया मन से भी रहा, बढ़िया बात करत हम तुहर मन से, मन अच्छा लगत है, मतलब जुड़ के तुहर मन से, आप मन से जुड़ के इतना प्यारा प्यारा प्यारा बात सुने मिलते हमारा आकाशवाणी भोपाल में, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर गीत भी सुने मिलते हमन ला।
0: बहुत बढ़िया, तो आपने भाषा बोली का एक रंग हम तक पहुंचाया, बहुत अच्छा लगा। और आपने जब बोला तो मुझे तीजन बाई जी की याद हो आई,
1: हाँ दीदी, इनका देहांत हुआ दीदी
0: जी
1: तीजन
0: जी
1: भाई का,
0: 5 तारीख को जिनका
1: पंडवानी
0: देहांत हुआ।
1: गायिका थी, बहुत
0: हाँ, विश्व
1: बहुत
0: प्रसिद्ध
1: पुरानी गायिका
0: पंडवानी
1: थी दीदी। हम
0: जी,
1: लोग बचपन करीब 8-9 साल के तब के प्रोग्राम सुनते हैं, तो मैं
0: बिल्कुल।
1: मेरे पास में भी लाउड स्पीकर था पहले, मैं कम से कम 10-15 साल लाउड स्पीकर बजाया घर का था मेरा, पंडवानी बहुत फेमस था दीदी इनका।
0: बिल्कुल, तो पंडवानी को विश्व स्तर पर पहुंचाने वाली वो शख्सियत थी, लोक
1: हाँ
0: की एक
1: बहुत,
0: बुलंद
1: विदेशों
0: आवाज
1: भी गए
0: थी।
1: दीदी, वो अपना प्रेजेंट भी पाई दी, नाम भी मिला,
0: जी
1: पदक भी मिला उनको।
0: बिल्कुल बिल्कुल, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से वो एक ऐसी कलाकार थीं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ की जब बात हुई तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो ये लोक नाट्य विधा है पंडवानी, उस पर आपको अवश्य गर्व होगा और अपनी उन कलाकार पर गर्व होगा जो
1: हाँ
0: 5 तारीख
1: दीदी,
0: को हमें छोड़कर चली गई। तो बहुत अच्छा लगा रामस्वरूप गुप्ता जी ने हमें फोन किया और छत्तीसगढ़ का रंग इस कार्यक्रम में बिखेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: युवा श्रोताओं, अपनी मिट्टी से जुड़ाव ही वो डोर है जो दूरियों के बावजूद हमारे मन को अपनी जड़ों से बांधे रखती है। शहर बदल जाते हैं, गांव बदल जाते हैं, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारा गांव, हमारा शहर पूरी आत्मीयता के साथ हमारे भीतर धड़कता रहता है। आज आपने अपने शब्दों से अपने अपने शहरों और गांवों की जो सुंदर तस्वीर उकेरी, उसमें हमारी विविधता, हमारी संस्कृति और आत्मीयता के रंग मुस्कुराते रहे। आपके शहर, आपके गांव की ये रंगत आपके मन में हमेशा यूं ही बनी रहे, खिली रहे और आप उससे हमेशा यूं ही जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी की हमारे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को है। लीजिए आप सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, साथ ही रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। भारत कल से केरल के कोची में शुरू होने वाली 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री अपने अपने ब्रिक्स अध्यक्षों के नेतृत्व में महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे ओणम उत्सव के दौरान भी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 8,815 श्रद्धालुओं का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात 10 बजे नॉटिंघम में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में

इनका 12 बजा है और ये समय है आपकी फरमाइश का। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए इस फिल्म का एक गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। ग्राम अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश ठाकुर और उनके परिवार के दूसरे लोग इसी गाने को पसंद किया है। भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने।

और ये अगले गाने के लिए जो हमारे पास में फरमाइश आई है, इन्होंने बहुत ही पुराना गाना सुनना चाहा है, फिल्म आन का जो 1952 में रिलीज़ हुई थी। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिखने वाले हैं टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, शुभ चंद्र और बिट्टा बजाज सहित इनके परिवार के दूसरे लोग। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की। और ये फरमाइश है कवर कॉलोनी बड़वा, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत, आन फिल्म का नाम है, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा है और नौशाद का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म लैला मजनू से, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है, मदन मोहन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, छत्रपति संभाजी नगर से लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और इन्होंने फरमाइश की है नई सड़क, एमपी शाजापुर से लिखने वाले हैं एम एम राजावत, राज मधु राजावत, शशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इस गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, कुरवाई जिला विदिशा से लिखने वाले हैं रियासत खान, सगीर खान, जफर खान, निकलेश सक्सेना और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

खुद गर्ज, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की। इन दीवर ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन का संगीत। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है महादेव घाट अम्बलेश्वर से। लिखने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। भोपाल गौतम नगर से लिखने वाले हैं पंडित मनवे शर्मा, दीपू शर्मा, विनायक शर्मा। और भोपाल कोलार से यहाँ लिखने वाले हैं अक्षिता, अनुष्का शर्मा, नरेश, ममता जैन, हेमा।

करुणा और अमन, इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं, ये राइटिंग कुछ साफ सी नहीं है, तो चलिए हम दूसरा पत्र शामिल कर लेते हैं। करूला मुबारकबाद से लिखने वाले हैं अयूब खान, एरम गुड़िया, शोएब खान और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से लिखने वाले हैं प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत, फिल्म का नाम खुदा खुदगर्ज।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं खुदा कसम फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आयशा भोसले को। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और फरमाइश भेजिए गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। लिखने वाले हैं द्वारका प्रसाद वर्मा और मीका ब्रक, और ये बाकी के जो साफ पढ़ने में नहीं आ रहा है। और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली, इन्होंने इस गाने को पसंद किया है। और इस गाने के लिए हमारे पास में एक फरमाइश ये भी आई है, गांधी भाका कोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने लिखा है यह खत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: दादी कौन सा प्लांट है?
5: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
6: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
6: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
6: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
8: मना है इसकी 6वीं कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: एक संस्था ने एक सेठ जी के सम्मान करने का विचार अपने मन में लिया, तो साहब दो चार पांच लोग उनके दरवाजे पहुंच गए। सेठ जी बड़े पैसे वाले थे, सम्मानी व्यक्ति थे, लेकिन उनका सम्मान आज के पहले कभी हुआ नहीं था। आज तक किसी ने उनको माला नहीं पहनाई थी। खैर, ये संस्था वाले पहुंच गए और सेठ जी से कहा, सेठ जी ऐसा है कि हमने कई बार आपसे चंदा मांगा, 50 मांगा, 100 मांगा, 200 मांगा, और आपने बड़े प्रेम से हमको दे दिया। इसके लिए आप हमारा धन्यवाद स्वीकार करें, और इस बार हम चाहते हैं कि आपका सम्मान किया जाए, है ना। तो चंदा तो खैर आप देंगे, लेकिन थोड़ा इस बार चंदा आपको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सम्मान में करीब करीब 150 मालाएं हम आपको पहनाएंगे, उसमें बड़ी मालाएं, छोटी मालाएं। अरे आपको तो इतनी माला पहनाई जाएगी सेठ जी कि आपका सिर्फ छोड़ा थोड़ा सा मुंह भर दिखेगा। हाँ, इतनी मालाएं। अरे सेठ जी बड़े ग्लैड, उन्हें 150 माला का पैसा दे दिया और ऊपर से और भी बहुत सारा चंदा उंदा दे दिया। ठीक है साहब, अनाउंसमेंट हो गया, 27 तारीख को रामलीला मैदान में फलाने फलाने सेठ जी का नगर सम्मान किया जाएगा। चलो साहब, पहुंच गए सब लोग, तालियां बजी, मालाएं पहनाई गई, और ये हुआ वो हुआ, सब जो कुछ होना था। लेकिन क्या देखा गया, जो फोटोग्राफर फोटो खींच रहे थे वो सेठ जी के चेहरे को बार बार पढ़ रहे थे। तो चेहरे को पढ़ के एक फोटोग्राफर उनके पास जाता है और कहता है, क्यों सेठ जी, एक बात बताइए, आपका इतना सम्मान हो रहा है, आप तो बड़े खुश होंगे। तो सेठ जी बोलते, क्या खाक खुश होंगे हैं? अरे इन लोगों ने मुझे 150 मालाएं पहनाने का वादा करके पूरा 150 माला का पैसा लिया था मुझसे, लेकिन अभी तक, और क्या, आप तो बिल्कुल हो गई बात खत्म, सिर्फ 35 मालाएं पहनाई हैं। रेडियो से विज्ञापन, टेलीविजन के माध्यम से विज्ञापन क्यों दिए जाते हैं, क्यों दुकानदार देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि उनका माल ज्यादा से ज्यादा बिके, उनका नाम हो, पैसे ज्यादा मिले उनको। वैसे भी आजकल रेडियो गांव गांव तक सुना जाता है, यहाँ से सैकड़ों हजारों मील तक लोग रेडियो को बड़े प्यार से पूरी मोहब्बत से सुनते हैं, और विज्ञापन जब गाँव गाँव पहुंचेगा तो स्वाभाविक भाई सामान तो बिकेगा, दुकानदार का नाम, व्यापार का नाम, सब कुछ। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक श्रीमान जी हमारे घर पहुंचे और मुझसे कहने लगे, भाई साहब ऐसा है कि अभी मैंने रेडियो में विज्ञापन सुना, टेलीविजन पे दूरदर्शन वाले भी विज्ञापन देते हैं कि साहब ये सामान खरीदो तो वो फ्री मिलेगा, ये खरीदो तो वो फ्री मिलेगा, तो साहब ऐसा कुछ ऐसा विज्ञापन आप हमारे लिए भी बना दें तो हम भी रेडियो से दे देंगे, टेलीविजन की भी कोशिश करेंगे। तो मेरा तो साहब उस समय बड़ा दिमाग खराब था, प्रोग्राम वगैरह के चक्कर में थोड़ी व्यस्तता थी, कुछ सिर में दर्द भी था। हमने ठीक है बैठिए, बना देता हूँ विज्ञापन, लेकिन बार बार नहीं बोलना आप, एक बार में इसको फाइनल करना। अरे कहले, आप तो जो बना दोगे आप तो दे दो, मैं तो उनको पहुंचा दूंगा, अरे मेरा माल बहुत बिकेगा, आप विज्ञापन बनाइए। तो फिर मैंने विज्ञापन क्या बनाया, जरा सुनिए, मैंने विज्ञापन बनाया, खुशखबरी, खुशखबरी, 90 वर्ष के बुजुर्ग पति पत्नी को, 90 वर्ष के बुजुर्ग पति पत्नी को 1 किलो बिस्कुट बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा, बशर्ते कि वे अपने माता पिता के साथ हमारी दुकान में पधारे।
2: गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं। अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने।
3: वैराग्य का ये आइटम कि जिसमें

0: बहुत ही अच्छा युवक है, संस्कारिक है, और वो एक संत के पास जाता है। संत पहाड़ी पर रहते हैं और बब्बा बजरंग के पुजारी बिल्कुल गृहस्थ आश्रम से दूर। बड़ा उनका ज्ञान उसने लिया और अपने जीवन को धन्य किया। एक दिन वो लड़का गुरुजी से विनम्र भाव से प्रार्थना करता है और क्या कहता है, गुरुजी वो हम आते हैं तो, हाँ हाँ बोलो वत्स, क्या बात है? नहीं, हम आते हैं तो रास्ते में एक लड़की रहती है तो वो हमको बहुत देखती है और मतलब कई प्रकार की मतलब बातें करती है और हम कहाँ तक सुने गुरुजी। वत्स कदापि नहीं, ऐसा करना ही नहीं, ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, ये तो माया जाल है, इसमें फंस जाओगे फिर कुछ नहीं कर सकते। एक काम करो, तुम रास्ता बदल दो, दूसरे रास्ते से आया करो। अब साहब वो दूसरे रास्ते से आने लगा, दूसरे रास्ते से कुछ दिन आया, फिर वही शिकायत, गुरुजी उसको इस रास्ते का भी पता हो गया है। अच्छा, तुम तीसरे रास्ते से आओ। तीसरे रास्ते से आने लगा, पूरे रास्ते जब बंद हो गए, एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी अब वो नहीं मान रही और वो मतलब प्रपोज कर रही शादी के लिए, कदापि नहीं, एक बार यदि शादी के मोह जाल में फंस गए तो समझ लो जिंदगी खत्म। वैराग्य का आनंद अलग है, कोई कहां उसमें आनंद है। थोड़े दिन बाद देखा कि वो लड़का कोर्ट मैरिज करके लड़की के साथ गुरुजी के पास पहुंचा, प्रणाम किया, बहू ने भी चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने पूछा कि ये गुरुजी आपकी शिष्या कह लो, बहू कह लो, अब वो माने नहीं और आखिर हमें अब विवाह करना पड़ा। और वैसे भी गुरुजी आजकल शासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर दो जातियों का मिलन हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें गुरुजी हमने एक कौड़ी नहीं ली है, मतलब समझ लीजिए आप उस बच्ची के घर में, ये भी एक बहुत खुशी की बात है। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन अब तुमने कर ली है तो चलो ठीक है, आनंद मनाओ, पर एक चीज अवश्य है। जी गुरुजी, अब तुम्हारा यहाँ पर आना स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, तुम गृहस्थ के माया जाल में फंस जाओगे। नहीं गुरुजी, हम तो जैसे रोज आते थे वैसे आएंगे। मानो मेरी बात, मानो, मुझे तो दुनिया का अनुभव है ना, मानो। अब साहब वो धीरे धीरे एक दो दिन टालने लगा, फिर 15 दिन में आने लगा, हफ्ते में आने लगा, करते करते वो महीने में आने लगा। करीब कुछ महीनों के बाद वो पहुंचा तो गुरुजी ने कहा, बहुत दिनों में आना हुआ, कहो सब ठीक तो है, कुशल तो है? गुरुजी आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, सब बढ़िया चल रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रकार से आनंद है। और तुम्हारी पत्नी कैसी है? गुरुजी वो भी आपकी कृपा से बहुत बढ़िया है, तुम्हें स्नेह करती है, प्रेम करती है? गुरुजी प्रेम? अरे प्रेम तो गुरुजी पल पल पे छलकती है, जान देती है हमारे ऊपर। अच्छा, इतना स्नेह करती? अरे गुरुजी इतना स्नेह कि हम कह नहीं सकते आपसे, कहो तो जान दे दे हमारे लिए। अच्छा, एक काम करो। जी गुरुजी, उसकी परीक्षा ले लो। हाँ गुरुजी, परीक्षा ले लो, क्या करना क्या होगा? तुम 3 दिन आओ, मैं तुम्हें योग सिखाऊंगा, योग भगाए रोग, योग से रोग भी दूर होते हैं, योग से परमात्मा की भी प्राप्ति होती है, योग से ज्ञान भी बढ़ता है, योग से परीक्षा भी होती है। अवश्य गुरुजी। 3 दिन वो आया साहब, गुरुजी ने योग सिखाया और योग में ये सिखाया गुरुजी ने कि आप मरणासन्न हो जाएंगे, यानी मरे जैसे हो जाएंगे, मरेंगे नहीं और लोग समझेंगे मर गए। योग का कमाल है साहब ये, क्योंकि ऋषि मुनि हमारे जो तपस्वी होते थे वो कई कई 6-6 महीने के लिए चले जाते तपस्या में, लोग सोचते थे समाधि ले ली लेकिन फिर भी जिंदा। ये बात तो गुरुजी ने उसको सिखाया। अब कहा, गुरुजी आदेश क्या है? गुरुजी ने कहा, एक काम करो, तुम घर जाओ, पत्नी से कहना क्या बनाया, जो खाना बनाया वो नहीं खाना, दूसरा कुछ बनवाना, और तब तक जब तक वो बनाए तुम लेट जाना, हम आएंगे और फिर रामलीला चालू। ठीक है गुरुजी। अब साहब घर गया और पूछा, हाँ क्या बना आज?
1: आज मतलब हमने सोचा कि दलिया बनाए।
0: अरे तुम यार दरिया बनाया तुमने। दरिया रिया नहीं था, मतलब एक काम करो, अच्छी चीज बनाओ,
1: सतुआ घोर।
0: अरे सतुआ नहीं घोर यार तुम, सतुआ दरिया तुम,
1: तो आप बताओ क्या परमल की सब्जी?
0: अरे वो तो मरीजों को खिलाते परमल की सब्जी।
1: वहां पर बताओ क्या बना।
0: अरे यार तुम एक काम करो, तुम और कुछ बढ़िया सा आइटम बनाओ ना तुम।
1: एक काम करो, आप साबुदाने खिचड़ी।
0: अरे यार तुम एक काम करो, सुनो मेरी बात।
1: हाँ आप कहो तो, आप तो कहो तो, क्या खाएंगे हम? वो ही बना दे, 56 भोग बना दे, कहो तो आप।
0: 56 भोग रहने दो, तुम पूड़ी और खीर बनाओ और आज हम खीर पूड़ी खाएं।
1: दूध तो है,
0: तुम बाजार से मंगवा लो दूध, मेवा वेवा मंगवा लो, बढ़िया खीर बनाओ शानदार, आज हमारा बहुत दिल खुश है। अगर आज तुमने खुश कर दिया तो समझ लो तुम जिंदगी भर खुश।
1: कैसी बात कर रहे हैं आप,
0: अब भी बनाते हैं खीर। फौरन दूध दूध उसने अरेंज किया और खीर बनाई, पूड़ी बनाई, खीर बन रही थी, पूड़ी बन रही थी। यहाँ पर ये गांव में मकान था इनका, पर्ची थी, पर्ची में खंबा लगा था और खंबे में पैर फंसा के ये समाधिस्ट हो गए, समाधि में लीन हो गए। वहाँ खीर बनाने में इनकी पत्नी लगी और जैसे ही खीर बनी उसने आवाज लगाई, अरे क्यों भाई चलो आओ खीर बन गई। कोई आवाज नहीं, अरे हमने कहा खीर बन गई, आइए प्लीज जल्दी आइए खीर बन गई। कोई आवाज नहीं, तीन चार आवाजें दी, जब कोई आवाज नहीं, उसने कहा कहीं निकल तो नहीं गए टहलने, आए देखें, देखा उसने तो ये अपने मरणासन्न पड़े। उसको उठाया, अरे उठिए उठिए, काय को उठे, वो तो समाधिस्थ थे। तब उनकी नब्ज देखी और देखा कि ये तो नहीं रहे, अब क्या करें। उसने विचार किया, महिलाएं बड़ी चतुर होती, उसने विचार किया कि देखो ऐसा है, अगर अभी हम रोते तो सारे गांव मोहल्ले के लोग आ जाएंगे और जो बनी बनाई खीर है पंडित उसका दुरुपयोग करेंगे तो इसके पहले कि पंडित इस खीर का दुरुपयोग करें, अपन इसका सदुपयोग कर क्यों ना कर लें। फौरन वो गई, पंखे में खीर ठंडी करी और बिल्कुल सपाटे से उसने पूरी खीर पोंछ के खाई और गंजिया मांझ के धर दी उसने बिल्कुल, और फिर वहां पर आई और आने के बाद उसने पूरी रामलीला शुरू। मेरे को छोड़ के कहाँ चले गए, मैं इनको कितना प्यार करती थी, कहाँ चले गए मेरे स्वामी, कहाँ चले गए। अब ये आवाज साहब सुनी तो सासू माँ ने सुनी और वो चली आई, कहा होगा बेटा काय के लाने रो रही, कहा होगा वो ये नहीं रहे, भगवान के पास चले गए। माँ ने देखा बेटा जो है उसकी नब्ज नहीं चल रही, अरे बेटा कहाँ चले गए, अरे राम कहाँ चले गए, पचपन की हम हो गए, भगवान हमें उठा ले तो इन्हें कहा उठाओ, अरे राम। इतने में दद्दा ने सुना, दद्दा भी आए, अरे कहा हो गो, अरे लड़का नहीं रहो। दद्दा भी बोले, अरे 68 के हम हो गए, रिटायरमेंट हो गए, पेंशन ही तो खा रहे, अरे राम परमात्मा हमें उठा ले तो एक लड़का काय को उठा लो, अरे भगवान। गली मोहल्ले के लोग, आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठे हो गए और तभी गुरुजी पीछे से आए। जैसे गुरुजी आए रोना पिटना मचा हुआ, गुरुजी को देखकर लोगों की ढढ़ास बंधी, शांत हुए। गुरुजी से, गुरुजी ने आकर वहां पूछा कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। सभी ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। गुरुजी ने कहा कि अवश्य कुछ अच्छा होगा, मैं आ गया हूँ। तो सबने कहा गुरुजी ऐसा कुछ करो कि जी हमारा जिंदा हो जाए। अब तीनों लोग ने कहा, बहू ने क्या कहा, सास जी ने क्या कहा और बब्बा जी ने क्या कहा, अलग अलग लोगों के अलग अलग बातें। सुनिए साहब, बहू ने पहले क्या कहा, गुरु जी कैसे करो, हाँ कुछ भी करो गुरु जी, हमारे प्राण ले लो, लेकिन इनको जिंदा कर दो गुरु जी, मेरे को बहुत चाहती थी मेरे प्राण ले लो गुरु जी, लेकिन इनको जिंदा कर दो। अवश्य अवश्य मैं यत्न करूंगा। दादी अम्मा ने कहा, मतलब बहू की सास ने, अरे गुरु जी, अरे राम हमारे तो दिन कहे भय, लड़का जलोगो जीवे को का फायदा गुरु जी, अरे राम अरे अरे गुरु जी हमारे ले लो, अरे राम परमात्मा लगे तो हमारे प्राण ले लो, लेकिन लड़का को अरे लड़का को जिंदा कर दो गुरु जी, अरे अम्मा की आत्मा तुम्हें का मालूम, अरे राम अरे गुरु जी हमें लगे तो ले लो लड़का जिंदा कर दो गुरु जी। बब्बा ने बोला, अरे गुरु जी दुकरिया को रहन दो, बहू को भी रहन दो, तुम तो हमारे प्राण ले लो, 68 के हो गए, अब तो चला चली की बेला है, वैसे भी हमारे दो तीन दोस्त चले गए, हमारा नाम बेटिंग में, हमें ले लो गुरु जी, अरे राम अरे। ये चर्चा चल रही थी। गुरु जी ने कहा, आप लोग ना रोएं, अवश्य बच्चे की जान आ जाएगी, जीवित हो जाएगा। एक काम करें, पवित्र गंगा जल आप बुलवाए, मैं भी कुछ प्रयोग करता हूं। गंगा जल साहब बुलवाया गया, मंगवाया गया गंगा जल रखा, गुरुजी ने गंगा जल अपने कमंडल में लिया और कुछ मंत्रोच्चारण किया, और मंत्रोच्चारण करने के पश्चात में उन्होंने उस जल को पीने के लिए पीने योग्य बनाया।
2: ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्यात्या च गायंडकी पूर्ण पूर्ण जलई समुद्र सहिता कुरियात स

0: इस बच्चे का कल्याण करो, अवतरित हो मां, आश्रय दो मां, प्राण दो मां। अब साहब उन्होंने ये पढ़ा और पढ़ने के तत्पश्चात लोगों को बड़ी आशा जागी कि अब शायद बच्चा जीवित हो जाएगा। अब गुरु जी ने कहा, देखिए ऐसा है, ये पवित्र गंगा जल जो मंत्रोच्चारित हो चुका है, इसे जो पिएगा उसके प्राण निकल जाएंगे, ये बच्चा जीवित हो जाएगा। तो गुरु जी ने कहा सबसे पहले कि देखिए ऐसा है, सबसे ज्यादा जो प्रेम करता है वो इसको पहले पिए। तो बेटा बहू, तुम तो जान से ज्यादा चाहती थी, तुम पी लो। तो बहू ने कहा, नहीं वो कैसे पी ले, पहले तो सबसे पहले पप्पा जी का नाम मारे। हमारा नाम तो वेटिंग में है। बब्बा जी से कहा कि आप पी लो। बब्बा जी कहा, अरे बेटा हम तो जरूर पी लेते, हमें तो जाने हैं आज नहीं कल, लेकिन अगर हमने पी लो तो जेड कर गया को कान देखे। अरे वो तो बाहर कर दे, रोटी पानी कौन दे है। अरे राम हम नहीं पी रहे बेटा, गुरु जी हम नहीं पी रहे, हमें माफ करे परमेश्वरी, हम नहीं पी रहे गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि सेकंड अपॉर्चुनिटी दादी जी को दे दें। दादी से कहा कि आप पी लो, माता जी आप ग्रहण करें जल, अभी आप कह रहे थे कि हमारी जान ईश्वर ले ले लेकिन बच्चा जीवित हो जाए। अरे अरे राम, अरे अरे हम तो पी रहे थे गुरु जी, लेकिन का बताए, अगर जैसे हमने जल पी लो फिर डोकरा को का है। नहीं तो आपके इनके लिए, बब्बा जी के लिए तो बहू है। अरे बहुओं की तो का बात है गुरु जी, हम चल बसे तो बेन्यारी हो जाए, डुकरा को कौन देखे। हम नहीं पी रहे गुरु जी, हमें नहीं पीने। गुरु जी ने तीसरा ऑप्शन उसकी पत्नी से कहा कि अब दोनों जन नहीं पी रहे इसलिए आप पी लीजिए। तो उसने क्या कहा, गुरु जी मैं नहीं पी सकती। क्यों, अभी तो तुम कह रही थी कि मैं प्राण दे सकती हूँ, पी सकती हूँ, सब कर सकती हूँ उनके लिए। गुरु जी मैं जरूर पी लेती, लेकिन मेरी और मेरी सहेली की एक शर्त लगी थी कि देखो जो भी ये जो जाता है लड़का ना, जो कि ब्रह्मचारी है, उससे जो भी मतलब अपने तरफ मामला पूरा सेट हो जाएगा ना, मैं वो जीत जाऊंगी। तो हमने 10,000 की शर्त दी थी थी गुरु जी, लेकिन ना मेरी तो शादी हो गई, अगर मैंने गुरु जी पी लिया ना तो मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन गुरु जी इनको इनकी हमारे जैसी कई हीरोइन मिल जाएंगी। और वैसे भी गुरु जी मैं भी इतनी खराब नहीं दिखती हूँ, मेरी उम्र ही क्या हुई है, अगर मान लीजिए ये मर गए तो मरे रहने दीजिए, मुझे इनके जैसे कई हीरो मिल जाएंगे। इतनी बात गुरु जी ने सुनी तो फौरन पीछे से आवाज आई,
1: हाँ गुरु जी।
0: हाँ पुत्र बोलो।
1: तो भाई काले पियो।
0: गुरु जी ने कहा, हाँ पुत्र मैं अवश्य पी लूंगा, लेकिन यहां नहीं, मैं भी थोड़ी देर से पीऊंगा। गुरु जी ने गटगटा के पानी पिया।
1: कहा गुरु जी जिंदा नहीं हो रहा भैया, अब तुम तो जाओ। गुरु जी और कितनी देर जियो यार, जल्दी करो।
0: अब साहब गुरु जी ने कहा, नहीं इसका विधान है, इसको ले जाना पड़ेगा और स्मशान भूमि में एक और संस्कार करेंगे, तब मेरे प्राण निकलेंगे इसके आएंगे। ये जो खंबे में लात इसकी फंसी है, टांग फंसी है, इसको निकालिए ले चले। अब वो साहब टांग इतनी जकड़ गई थी कि खंबे से निकल नहीं रही थी। तो दो ऑप्शन थे, पहला कि खंबा काट दो और नहीं तो दूसरा। तो साहब जब उनने कहा कि दूसरा ऑप्शन, तो उसने पत्नी से कहा उसकी तो कि अब क्या करें, खंबा काट दें कि। तो उसने कहा, गुरु जी अभी 3,500 रुपये दे के छपवाया है, अगर आपने खंबा काटा तो ये छत घर घर आ जाएगी, पूरी गिर जाएगी मचान। आप एक काम करो, अब तो जी चले ही गए हैं, अब आप तो
2: फौरन साहब उठे और दो तीन अपने हाथ दिए और खूब लट्ठ और खूब पिटाई।
1: क्या लगा है, तुम तो बोल रहे थे बहुत चाहते जी जाती
2: नहीं, तो ऐसे क्या था तुम, तुम्हारी तो बहुत उनने धुनाई की।
0: और गुरुजी ने एक ही बात कही।

0: हंसना मना है,
1: हंसना मना है,
0: अरे हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
1: हंसना मना है।
0: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेरकर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चलें सुने इनको।
2: एक बार क्या हुआ, एक चौराहे में एक आदमी खड़ा हो गया, दूसरे आदमी को पीट रहा था। बहुत देर हो गई, घंटा भर हो गया पीटते पीटते, कुछ लोगों से रहा नहीं गया, तो उन्होंने बोला, भाई क्या बात है यार, क्यों मार रहे हो इसे, जब से देख रहा हूँ पीटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो। अरे समझ में नहीं आता यार, क्या आदमी है यार, इसने मेरे को 2 साल पहले गेंडा कहा था, 2 साल पहले गेंडा कहा था, और आज आप इसे पीट रहे हो। क्या बताऊं यार, आज ही चिड़ियाघर में जाके गेंडा देख के आया हूं। ऐसी एक बड़ी प्यारी सी बात, एक पहलवान विज्ञापन के दफ्तर में पहुंचा और जाके सीधे मुख्य संवाददाता को उसने मारना चालू किया। लोग परेशान हो गए, बोले क्या बात हो गई, क्यों भाई क्या बात है पहलवान जी, क्यों मार रहे हो। अरे इस आदमी ने मेरा सारा कचरा कर दिया, मेरी अच्छी खासी अगरबत्ती की फैक्ट्री थी, मैं यहाँ विज्ञापन देने आया, पेपर में इसने पूरा विज्ञापन उलट दिया। बोले क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया, आप क्या पूछ रहे हैं। देखिए मैंने विज्ञापन दिया था पहलवान छाप अगरबत्ती, और उसने पेपर में छाप दिया अगरबत्ती छाप पहलवान। एक छोटा सा बच्चा अपने घर के सामने साइकिल चला रहा था, शायद पहली बार साइकिल चला रहा था। चलाते चलाते अचानक क्या किया, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसने एक हाथ छोड़ दिया, और हाथ छोड़ के अपने दोस्त को बोलता है, अरे चिंटू चिंटू देख देख मेरा हाथ गायब, देख देख मेरा हाथ गायब। थोड़े देर बाद उसने क्या किया, दूसरा हाथ भी छोड़ा और बोलता है, अरे चिंटू देख देख मेरे दोनों हाथ गायब, मेरे दोनों हाथ गायब। उसने फिर क्या किया, पैर भी छोड़ दिए, फिर बोलता है, अरे चिंटू देख देख मेरे दोनों पैर भी गायब, मेरे दोनों पैर भी गायब। धड़ाम से जाके आगे गिरा, खिसिया के बोला, मेरे ना दोनों दांत भी गायब, मेरे दांत भी गायब।
0: हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है बैजनाथ, उनके घर एक दिन में पहुंचा। बैजनाथ ने बोला, आओ रजनीकांत जी आओ बैठो बैठो। तो साहब हम बैठे, चाय आई कॉफी आई, बड़ा आनंद आ रहा था, यहाँ वहां की चर्चाएं हुई। अचानक हमारे मित्र बैजनाथ का लड़का, बड़ा प्यारा सा बच्चा, अपने पिता के पास यानी हमारे मित्र बैजनाथ के पास जाके बोलता है, पप्पा पप्पा हम बाहर जाएं पप्पा। तो उनके पिताजी ने बोला, क्यों भाई क्यों बाहर जाएं। पप्पा पप्पा वहां बाहर बंदर आया, हमको उसको देखना है। तो बैजनाथ बोलते हैं, बेटा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अभी अंकल जी घर में आए हैं, वो बैठे हैं, और तू बंदर देखने बाहर जा रहा है। मैं चला जा रहा था, अचानक रास्ते में क्या देखता हूँ, 4-5 बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से एक जगह पर इकट्ठा हैं। मैं पहुंचा, मैंने देखा, हमने क्यों बेटा क्या हो रहा है। 10 का नोट पड़ा हुआ था जमीन में, चारों पांचों बच्चे बोल रहे थे आपस में कि जो सबसे अच्छा वाला बढ़िया वाला झूठ बोलेगा ना, ये 10 का नोट अंकल जी उसको मिल जाएगा, इसलिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं। तो मेरे को लगा, हमने कहा देखो जरा जरा से छोटे छोटे बच्चे ये आपस में ये विचार कर रहे हैं कि जो सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसको 10 रुपए का नोट दिया जाएगा, उसको मिल जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बच्चों को समझाया, देखो बेटा झूठ बोलना बहुत खराब बात है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो कभी झूठ नहीं बोलता था। तो एक लड़का बोलता, अंकल जी जीत गए, अंकल जी जीत गए, 10 रुपए अंकल जी को मिल गए। एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर थे, दिमाग के डॉक्टर, उनके पास सुबह सुबह एक मरीज पहुंचा था, उसको कुछ परेशानी थी, क्या परेशानी वो हम सुनते हैं। ये मरीज आया,
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, आजकल वो मतलब कहने का डॉक्टर साहब,
0: क्या मतलब कहने का, अच्छे से बताइए क्या मतलब क्या है, क्या हो गया आपको
3: डॉक्टर साहब। मेरा मतलब कि मतलब ऐसा कि मतलब डॉक्टर साहब,
0: ओहो हमारे समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या मतलब, तरीके से बताइए आपको क्या तकलीफ है, क्या

0: रहे थे, पुराने डॉक्टर साहब, उनको सब समझा रहे थे कि कौन पागल कैसा है, किसकी तबीयत कैसी है, कौन क्या है वगैरह वगैरह। ये नए डॉक्टर हैं और ये पुराने डॉक्टर, सुनते हैं आगे क्या है।
1: डॉक्टर शर्मा, ये पागल गंगाराम है, ये एक लड़की से प्यार करता था।
0: ओहो,
1: बेचारा।
0: ओहो,
1: शादी करना चाहता था।
0: कौन कौन कौन शादी करना चाहता था?
1: ये गंगाराम नाम का पागल,
0: ये जो पागल है, इसका नाम क्या बताया आपने?
1: गंगाराम।
0: अच्छा, ये क्या करना चाहता था?
1: ये डॉक्टर साहब एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: मगर लड़की ने धोखा दे दिया और पागल हो गया।
0: ओहो, यानी गंगाराम जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसने उसको धोखा दे दिया और इसको कुछ ऐसा चोट पहुंची दिमाग में तो ये पागल हो गया।
1: ये पागल।
0: अच्छा, चलो आगे चलते हैं।
1: बेचारा,
0: ये सामने जो ये जो खड़ा हुआ ये कौन है?
1: वो वाला?
0: हाँ,
1: डॉक्टर साहब वो तो पागल लटोरे लाल है।
0: अच्छा, इसका नाम क्या रखा आपने? नहीं, इसका नाम क्या है? लटोरे लाल।
1: ये लटोरे लाल।
0: अच्छा अच्छा, इनको क्या तकलीफ है, कैसे पागल हो गई है?
1: इसने उसी लड़की से शादी की है जिस लड़की से गंगाराम प्यार करता था। एक फिल्म की शूटिंग की तरफ लिए चल रहा हूँ। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जो हीरो के डायलॉग रहते हैं तो हीरो समय पर स्टूडियो नहीं आता है, जिसके कारण डायरेक्टर साहब को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अचानक एक ऐसे आदमी को पकड़ लिया जाता है जो जल्दबाजी में, जिसको पकड़ कर लाया जाता है, वो आदमी अपना ताबीज बेचकर पेट पालने वाला, एक मदारी और जमुरी का खेल दिखाने वाला शख्स होता है। उससे वो डायलॉग बता दिया जाता है। वो डायलॉग कुछ इस तरह था कि लैला लैला, तेरी लंबी लंबी जुल्फों में खो जाने को जी चाहता है। लैला, तेरे मोती जैसे दांत, इनके सामने सूरज भी मान पड़ जाता है। लैला, तेरी लंबी लंबी जुल्फों में खो जाने को जी चाहता है, डूब जाने को जी चाहता है। लेकिन जैसे ही मदारी को उस डायलॉग को बोलने के लिए शॉट पर लाया जाता है, मदारी पहले जैसा डायरेक्टर साहब ने बताया वैसा डायलॉग बोलने का प्रयास करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से में हंसना मना इस धारावाहिक की 6वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। भारत कल से केरल के कोच्चि में शुरू होने वाली 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री अपने अपने ब्रिक्स अध्यक्षों के नेतृत्व में महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे ओणम उत्सव के दौरान भी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 8,815 श्रद्धालुओं का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी एवं अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in/results.aspx पर परिणाम देख सकेंगे। शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात 10 बजे नॉटिंघम में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

नमस्कार सखियों, कार्यक्रम महिला सभा में स्वागत है आपका। आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी। कैसी हैं आप? बारिश की बूंदों ने कर दिया ना मन तरोताजा। जरूरी भी है सखियों, मन अच्छा होगा तो तन भी स्वस्थ होगा। और इन दोनों के साथ ही सखियों, खुद पर भरोसा और अपने दम पर आगे बढ़ने की चाह का

होना भी जरूरी है। ये वो गुण है सखियों जिन पर सफलता की नींव रखी जाती है। गौर फरमाइएगा, खुद पर हो भरोसा तो हर राह आसान हो जाती है। खुद पर हो भरोसा तो हर राह आसान हो जाती है। आत्मनिर्भरता की धूप में हर मुश्किल पिघल जाती है। सखियों, आत्मनिर्भरता का भाव जीवन में सबसे बड़ा संबल है। जी हाँ, आत्मनिर्भर नारी सशक्त समाज का अभिप्राय है महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र होना। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, तो वे केवल अपने परिवार को ही नहीं सखियों, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के समग्र विकास की मुख्य धुरी बनती हैं। क्या सोच रही है? यही ना कि जीवन में आत्मनिर्भर होना यानी सशक्त होना बहुत जरूरी है। सही सोच रही है। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योजना की। जी हाँ, हमारी मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का यदि आप लाभ लेना चाहती हैं, तो ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। जी हाँ सखियों, असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों की गर्भवती महिलाओं और श्रमिक पत्नियों के लिए संचालित एक कल्याणकारी योजना है। इसके तहत सुरक्षित मातृत्व, बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के लिए कुल 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सखियों, इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण और उचित पोषण को बढ़ावा देना है। वित्तीय सहायता की बात करें तो सखियों, पहली और दूसरी संतान के समय 16,000 रुपए की राशि 2 किश्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। सामान्य प्रसूति के समय 4,000 रुपए और संस्थागत प्रसव के बाद 12,000 रुपए। पात्रता मानदंड की बात करें तो सखियों, महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होना चाहिए। महिला या उसके पति का असंगठित कर्मकार मंडल या भवन और अन्य स्वनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिक होना अनिवार्य है। सखियों, महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज में श्रमिक पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जो आधार से लिंक हो, गर्भावस्था का मेडिकल प्रमाण पत्र, डॉक्टर की पर्ची और जन्म के बाद शिशु का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसके साथ ही सखियों, आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आप अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर या ईउपार्जन एमपी लेबर डिपार्टमेंट के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से कर सकती हैं। और अब सुन लेते हैं प्यारा प्यारा भीगा भीगा सा एक

0: गीत हमने सुन लिया सखियों, अब भरते हैं हौसलों की उड़ान।
1: उड़ान खुशियों की, उड़ान सपनों की, उड़ान हौसलों की, मेरी उड़ान।
2: सखियों, आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, परिवार नियोजन और सरकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुँचाती है, विशेष रूप से स्वयंसेवी के रूप में कार्य करती है। जी हाँ, एक ऐसे ही जिम्मेदार कर्तव्यनिष्ठ आशा कार्यकर्ता इंदु बाला चौहान हमारे साथ हैं श्रृंखला मेरी उड़ान में। आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार इंदु जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी धन्यवाद, नमस्कार।
2: इंदु जी, सर्वप्रथम तो आप अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताएं, कितने घरों को आप कवर करती हैं?
3: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य कड़ी है। आशा कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारियां हैं समुदाय को स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीकाकरण और परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करना, गर्भवती महिलाओं का पंजीयन व संस्थागत प्रसव कराना, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना और टीकाकरण में भाग लेना, और समुदाय में ORS के पैकेट वगैरह बांटना, आयरन की गोलियां देना, कंडोम बांटना, ये सब जो है आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य जिम्मेदारियां हैं।
2: बहुत ही अच्छी आपने हमें जानकारी दी इंदु जी, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण में आप कैसे मदद करती हैं?
3: हम आशा कार्यकर्ताएं गर्भवती और बच्चों के टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। हम लोग घर घर जाकर सर्वेक्षण करती हैं और गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनका पंजीयन करवाती हैं, और जो बच्चे हैं जिनको रूटीन टीकाकरण लगना है, जैसे जन्म से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को जो टीकाकरण होते हैं, तो इन लोगों का जो है टीकाकरण केंद्र तक लेके जाते हैं हम लोग अपने समुदाय में से, ताकि बच्चों को जो है जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। और गर्भवती महिलाओं को भी टिटनेस का टीका लगना, उनका पंजीयन ऑनलाइन आजकल एंट्री हो गई है मैडम, तो वो सब कुछ हम लोग का जो है जिम्मेदारियां है सब।
2: इंदु जी, हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, और अब बात करते हैं समस्याओं की। फील्ड में काम करते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप बताएं प्लीज।
3: जी हाँ, वैसे तो जो भी काम करते हैं तो शुरुआत में बहुत सारी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। वैसे ही हम आशा कार्यकर्ताओं को भी बहुत सारी समस्याएं बनी रहती है। जैसे सरकार अगर कोई स्वास्थ्य योजना चलाती है तो लोगों को इसके बारे में समझाना, तो ज्यादा लोग शिक्षित नहीं रहते हैं तो वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, तो वो हमको मतलब लोगों को समझाना पड़ता है क्या लाभ है इन सब चीजों के और ये योजना क्यों चला रही है सरकार, तो आपको क्या लाभ मिलेगा। इसके अलावा हम आशा कार्यकर्ता बहुत सारी ऐसी है जिनको पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जैसे मैं हूँ तो मुझे तो परिवार की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिला है, मेरे हस्बैंड जो है मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी ड्यूटी के लिए, लेकिन बहुत सारी आशा बहनें हमारी जिनको परिवार में जो है आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये सब समस्याएं जो है बनी रहती हम लोगों के। लेकिन फिर भी हम लोग को मेन उद्देश्य हमारा क्या है, समाज सेवा है आशा कार्यकर्ता के रूप में, तो हमें बस खुशी मिलती है।
2: क्या बात है इंदु जी, आपने बहुत ही सहज तरीके से अपने मन की बात रखी, और वास्तव में ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप समाज सेवा कर रही हैं। यदि हमारी कोई सखी जो आशा कार्यकर्ता बनना चाहती हैं, तो उसके लिए उनको किन औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा?
3: वैसे आशा कार्यकर्ता

0: जब मैं बनी थी तो 12th पास से ही मैंने जो है फॉर्म भरा था अपने जोन है, स्वास्थ्य विभाग का जोन। जैसे अपने इंदौर जिला में 4 मुख्य जोन है, तो जो वार्ड वाइज जो जोन है अपना नंदा नगर जोन लगता है हम लोग का, तो वहां जाके मैंने फॉर्म भरा था और फिर मेरा लगभग 6 महीने बाद में ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ गया था। आपने जैसे अभी पूछा कि अगर कोई बहन अगर हमारी आशा कार्यकर्ता बनना चाहती है, तो उसके लिए जो है मैंने तो 12th पास से ही मैंने फॉर्म भरा था और मेरी ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन अब जो है उसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है हमारी कोई सी भी बहन अगर आशा कार्यकर्ता बनना चाहे तो, और उसका मृदुभाषी होना बहुत जरूरी है। अगर फील्ड में जाएंगे अपनी बात रखना आना चाहिए, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर कोई बात नहीं समझ पाता है, तो उसके लिए अपना व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए कि सरकारी योजनाओं को हम जो है सही तरीके से लोगों को बता सकें और लोग उसका लाभ उठा सकें, अपनी बात को उनके मन तक पहुंचा सकें, लोगों को जो है जागरूक कर सकें, ये जज्बा होना चाहिए, तो वो जो है आशा कार्यकर्ता की ड्यूटी कर सकती है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता जरूरी नहीं है कि पेमेंट आया तो ही या पेमेंट के लिए ही नौकरी करना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है हम लोग के इसमें, तो बस एक सेवा भाव होना बहुत जरूरी है, सबसे मेन पॉइंट है। और अगर अगर किसी की मदद हो रही है हम आशा कार्यकर्ताओं की वजह से, तो दिल में बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैंने ही अनुभव किया हकीकत में, बहुत बार बहुत खुशी मिलती है हकीकत में।
1: क्या बात है, तो आपके चेहरे से हम देख रहे हैं खुशी
0: हाँ
1: झलक
0: जी धन्यवाद।
1: इंदु जी ये बताइए कि सही समय पर सहयोग प्रोत्साहन राशि आपको मिलती है, आप संतुष्ट हैं?
0: हाँ जी मैडम, प्रोत्साहन राशि तो मिलती है समय पर, थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है लेकिन आ जाता है पेमेंट, हम लोग खुश हैं।
1: क्या बात है। अब ये बताइए इंदु जी कि HPV टीका प्रदेश की हमारी 14 वर्षीय बेटियों को लगाने का आग्रह किया जा रहा है, तो इस विषय में भी आप हमारी सखियों को जानकारी दें।
0: हाँ जी ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। अभी जो है सरकार ने HPV का टीका निकाला है जो कि 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को लगना है। यह टीका सर्वाइकल कैंसर जैसी, जिसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहते हैं, तो उससे जो है बचाव के लिए ये टीका है। तो मैं एक आशा कार्यकर्ता के रूप में सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि वे अपने घरों में जो भी 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाएं हैं उनको ये टीका अवश्य लगवाएं। अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल निःशुल्क है टीका, और बालिका का जो है आधार कार्ड साथ में लेके जाएं और इस सरकारी सुविधा का लाभ उठाएं।
1: क्या बात है इंदु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक और सवाल हम आपसे करते हैं कि एक स्वस्थ भारत के निर्माण में आशा कार्यकर्ता की क्या भूमिका है?
0: एक आशा कार्यकर्ता समुदाय में स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, जो समर्पण, निस्वार्थ सेवा और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देती है। और आशा कार्यकर्ता पहले ये लोग जो है दूर दराज क्षेत्रों में जाकर घर घर जाकर स्वास्थ्य जागरूकता फैलाते हैं, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव, मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करती है, जो सामाजिक सेवा और जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने का बहुत बड़ा उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग जो है आशा कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है, और इस तरह से हम लोग एक स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देती हैं।
1: इंदु जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, हमारी सखियों को निश्चित रूप से हमारी बातचीत से लाभ पहुंचा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु जी आप अपनी फरमाइश का अगर गीत बताएंगी तो हमें अच्छा लगेगा, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: हाँ जी बालिकाओं की बात हो रही है तो मैं चाहूंगी रोजा फिल्म से गाना है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा सुना दे दीजिए।

तक ये रूप लावण्य में बातें हो रही हैं खुशबू की, जी हाँ इत्र की, परफ्यूम की, जो आपके रूप लावण्य को अनुपम बनाता है। सखियों, इत्र या परफ्यूम का सही इस्तेमाल हमारे व्यक्तित्व और सुंदरता में चार चांद लगा देता है, साथ ही ये हमारे अंदर आत्मविश्वास भी भर देता है और दूसरों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। सखियों, सुंदरता और आकर्षण को बढ़ाने के लिए इत्र का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इत्र हमेशा शरीर के उन हिस्सों पर लगाना चाहिए जहाँ रक्त का प्रवाह त्वचा के करीब होता है और थोड़ी गर्माहट रहती है। गर्माहट से सखियों खुशबू प्राकृतिक तरीके से फैलती है। कलाई, गर्दन और कॉलर बोन के साथ कानों के पीछे इत्र जरूर लगाएं। इत्र या परफ्यूम लगाने के बाद उसे कभी भी हाथों से रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सखियों खुशबू के प्राकृतिक तत्व टूट जाते हैं और उसकी महक बदल जाती है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें सखियों कि इत्र त्वचा पर धीरे धीरे स्प्रे करें या थपथपाकर छोड़ दें। अपनी सुंदरता और खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इत्र लगाने से पहले त्वचा पर कोई अनसेंटेड बिना खुशबू वाला मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन जरूर लगाएं, क्योंकि इससे इत्र या जो परफ्यूम है उसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहेगी। सखियों, इत्र और परफ्यूम का चयन हमेशा मौसम के अनुसार करें। यदि आप ऐसा करेंगी तो महफिल में आपकी तारीफ में वाह वाह होगी। और चलिए अब गीत सुनकर भी आप वाह वाह कह उठेंगी।

क्या हो, बारिश के मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन हो तो झटपट चीज कॉर्न चाट तैयार कर सकती हैं। ये स्वाद में लाजवाब, पौष्टिक और बनाने में आसान होती है। तो बस झटपट सामग्री नोट कर लें। स्वीट कॉर्न 1 कप उबले हुए, 1 छोटा बारीक कटा प्याज, 1 टमाटर कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और मक्खन सखियो 1 बड़ा चम्मच, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, मसाले स्वादानुसार, नमक 1/2 छोटा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, चीज कद्दूकस किया हुआ स्वादानुसार और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। और बनाने की विधि तो बहुत आसान है सखियो। जी हाँ, एक पैन में मक्खन गर्म करें, इसमें उबले हुए कॉर्न डालें और 2-3 मिनट तक भुने। अब इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और जो भी हमने काट कर रखा था मिला दें और इसमें अब लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। 1-2 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें। अब ऊपर से नींबू का रस निचोड़ दें और इसे एक सुंदर बाउल में निकालें और ऊपर से कद्दूकस की हुई चीज और हरे धनिया से गार्निश करके गर्मा गर्म परोसे और सबका दिल जीत लें। और चलिए अब हम आपका दिल जीतते हैं और सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: गीत हमने सुन लिया सखियों, और अब कर लेते हैं काम की कुछ बातें। बारिश के मौसम में बिजली के उपकरणों और तारों से सुरक्षित रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी हां सखियों, बिजली चमकने पर या भारी बारिश के दौरान टीवी, कंप्यूटर और फ्रिज जैसे कीमती उपकरणों को मेन प्लग से निकाल दें। सीधे मेन लाइन से जुड़े कंप्यूटर का इस्तेमाल कभी न करें। गीले हाथों या नमी वाले हाथों से कभी भी स्विच, सॉकेट या किसी भी उपकरण को न छुएं। जमीन पर या पानी की संभावना वाली जगहों पर एक्सटेंशन कॉर्ड का उपयोग बिल्कुल न करें। अपने घर की अर्थिंग और MCB की जांच किसी प्रमाणित इलेक्ट्रीशियन से जरूर करवाएं, ताकि करंट का खतरा न रहे। साथ ही सखियों, भारी बिजली के झटकों और वोल्टेज स्पाइक से उपकरणों को बचाने के लिए घर में सर्ज प्रोटेक्टर जरूर लगवाएं। तो सखियों, इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो बारिश के मौसम में आप सुरक्षित रहेंगे। अरे, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हमें बातों बातों में पता ही नहीं चला। चलिए आपको बता दें, कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। अब दुर्गेश नंदनी को दे अनुमति, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब
1: इस समय आप है हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान
6: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
7: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
2: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं।
0: और झूलते झूलते सुनते हैं
2: दीजिए, आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इसमें आज आप सुनेंगे मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री और साथियों के स्वर में ये निमाणी लोक रचना।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इसमें पहले सुनिए रत्ना चक्रवर्ती के स्वर में भजन।

0: इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान
6: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
7: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
8: क्या?
7: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
8: वो कैसे?
7: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
8: और सुनेंगे कैसे?
7: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: ये गीत था फिल्म चांदनी से, जिसके लिए आवाज़ थी सुरेश वाडकर, अनुपमा देशपांडे की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था शिव हरि का। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पीपल

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग अदिपुर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी को अब तक 25 से अधिक देश अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाज चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को नई गति देने पर चर्चा हुई। बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई के इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने पर खुशी व्यक्त की।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ

0: मुकाबले दोनों को ही बल मिलेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 टूरेंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह किया। इस अवसर पर रक्षा प्रमुख जनरल NS राजा सुब्रमण्य सहित सेना और नौसेना प्रमुख भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन बत्रा कारगिल युद्ध में शत्रुओं पर काल की भांति टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि उनका शौर्य सदैव राष्ट्र सेवा की ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जब तक खेतों में करीब 4 इंच यानी 1 बालिश्त की गहराई तक पर्याप्त नमी न हो जाए तब तक बुआई करना जोखिम भरा हो सकता है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वे मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए ढेंचा या सनई की बुआई हरित खाद के रूप में कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सोयाबीन बीज का अंकुरण परीक्षण करने और 70% से अधिक अंकुरण क्षमता वाले बीजों का ही उपयोग करने की सलाह दी है। प्रदेश पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मऊगंज जिले के बिझोली गांव में एक किराए के मकान में चल रही अवैध सिंथेटिक ड्रग निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। विंध क्षेत्र में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1,28,00,000 रुपए मूल्य का मादक पदार्थ, रसायन उपकरण और वाहन जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क के तार मुंबई, नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य शहरों तक जुड़े होने का खुलासा हुआ है। अशोकनगर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली सराय रोहिल्ला और अशोकनगर के बीच एक ट्रिप विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 26 जुलाई को दिल्ली से रवाना होकर 27 जुलाई को अशोकनगर पहुंचेगी जबकि वापसी में 30 जुलाई को अशोकनगर से चलकर 31 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, कैंट, ग्वालियर और झांसी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में अब तक करीब 7 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है जो सामान्य से केवल 1% कम है। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि प्रदेश के 26 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के निदान वाटरफॉल में अचानक पानी बढ़ने से फंसे 2 पर्यटकों को प्रशासन ने रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाला। शिवपुरी में स्टेट बैंक RCT द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए CCTV और सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉलेशन का 13 दिवसीय निःशुल्क आवासीय ट्रेनिंग कैंप 9 जुलाई से शुरू होगा। नर्मदापुरम के इटारसी स्थित तवा नदी पुल की मरम्मत के चलते 16 जुलाई तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मैहर नेशनल हाईवे 30 पर डिगरा गांव के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का 3रा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता

0: और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, ताहिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है हमारे इन साथियों की, भाटापारा छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र वर्मा, बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित, औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, इन सभी साथियों ने सुना चाहा है फिल्म पेइंग गेस्ट का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार, आशा भोसले की, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है SD बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है, फिल्म है तेरे घर के सामने, और इस प्यारे से गीत को आवाजें दी हैं मोहम्मद रफ़ी ने, और गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है एसडी बर्मन का, और सुनना चाहते हैं हमारे ये साथी नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोनले, आरती जोनले, अमलेश्वर महादेव घाट छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, और कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख मंसूरी, ये सभी साथी हैं, और ये साथी सुनना चाहते हैं तेरे घर के सामने, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

ये अगली पसंद जो भेजी है हमारी ये साथी हैं सिंहपुर बड़ा से, राजेश नेमा, संगीता, भावना, प्राची नेमा, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन, प्रयागराज भट्ट, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, स्वाति माखीजा। आप सभी श्रोता साथी सुनना चाहते हैं अनारी फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर मुकेश की, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जयकिशन का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल केतन, और ये साथी हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया, उज्जैन से विनोद मूणथ, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणथ, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूणथ, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है असली नकली इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जयकिशन का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरख, जैतेंग बिरक, मीका बिरक। इन साथियों ने सुनना चाहा है तीन देवियाँ, इस फिल्म का ये गीत जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर किशोर कुमार की, गीतकार है मजरू, संगीत है SD बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत है जीने की राह इस फिल्म से, जिसके लिए आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और सुनना चाहते हैं बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली, मीनू राज श्रीमाली, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा।

अगला गीत है, लिया है हमने फिल्म अराधना से, जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार, लता मंगेशकर की। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान सारिका, सुरेखा सोनम बोड़खे और रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप, बेबी आरजू जाजोरिया। तो सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर ये गीत।

0: ये था कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन बत्रा करगिल युद्ध में शत्रुओं पर काल की भांति टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जब तक खेतों में करीब 4 इंच यानी 1 बालिश्त की गहराई तक पर्याप्त नमी न हो जाए तब तक बुआई करना जोखिम भरा हो सकता है। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के 26 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंगहम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर रांची के सिमलिया स्थित उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसक जुटे और केक काटकर जन्मदिन मनाते हुए उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आपको बता दें आज शाम की सभा में कौन कौन से जो कार्यक्रम हैं वो प्रसारित होंगे। शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। शाम 5:33, 6:55, रात 8:15 और रात 10:00 सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6:00 सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर सुनिए उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग रजनी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित जगन्नाथ और साथियों द्वारा राग मधु कौंस में शहनाई वादन।

ये थी जानकारी हमारे शाम के सभा के कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। 3:02 हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युव वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रा
1: और मैं आपका साथी राज।
0: स्वागत करते हैं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज हम आपसे करने वाले हैं ढेरों बातचीत, आपको देंगे कई नई जानकारियां और साथ ही पूछेंगे दो प्रश्न।
1: बिल्कुल साथियों, तो आज का पहला प्रश्न भी जान लेते हैं।
0: आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि मॉनसून किस भाषा से लिया गया शब्द है।
1: साथियों, आज का दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। हाल ही में बंगला पान को GI टैग मिला है और ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है।
0: तो आप सोचिए कि इन दोनों सवालों का जवाब क्या है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि इन सवालों का जवाब क्या था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मौसम की जिसका इंतजार पूरे साल डर साल रहता है। मैं बात कर रहा हूँ मानसून की। लेकिन साथियों, इस बार मानसून का सफर कुछ अलग सा रहा है। कहीं बारिश ने राहत दी है तो कहीं कुछ लोगों को अभी बारिश का पूरा भरपूर इंतजार है। और आइए जानते हैं मध्य भारत यानी विशेषकर मध्य प्रदेश में मानसून की वर्तमान स्थिति क्या है, मौसम विभाग के पूर्वानुमान, खेती पर पड़ने वाली प्रभाव और इस मौसम में बरते जाने वाली सावधानियों के बारे में।
2: बिल्कुल राज, ये विषय हमारे दोस्तों, हमारे साथियों और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए बेहद जानकारी भरा होने वाला है। तो दोस्तों, हर साल जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई का महीना शुरू होते होते मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। इस वर्ष भी मानसून ने समय पर दस्तक दी और शुरुआती कुछ दिनों में जिलों में अच्छी बारिश हुई, नदियां और तालाब भरने लगे, किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर दी और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली।
1: लेकिन साथियों, जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश की रफ्तार कुछ धीमी सी पड़ गई है। कुछ जिलों में बादल तो छाए हैं लेकिन अपेक्षित वर्षा कतई नहीं हुई है। विशेष रूप से प्रदेश के पूर्वी और कुछ मध्य क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ने लगी है क्योंकि धान, सोयाबीन, मक्का और अन्य खरीफ फसलों के लिए इस समय पर्याप्त बारिश बहुत ज्यादा आवश्यक है।
2: हाँ, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार मानसून के कमजोर पड़ने के पीछे प्रमुख कारण अल नीनो और मानसून सिस्टम की अस्थायी कमजोरियां मानी जा रही है। अल नीनो के प्रभाव से कई बार बारिश का वितरण असमान हो जाता है और परिणाम स्वरूप कहीं अत्यधिक बारिश होती है तो कहीं सामान्य से काफी कम वर्षा होती है।
1: हालांकि अच्छी खबर ये कि अब बंगाल की खाड़ी से एक नया मौसम तंत्र सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में फिर से अच्छी बारिश होने की ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं।
2: बिल्कुल सही, मानसून विभाग के अनुसार विदिशा, गुना, अशोकनगर, सागर और छतरपुर जैसे जिलों में अति भारी बारिश की संभावना है।
1: इसके अलावा साथियों, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और कई अन्य जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी भी किया गया है। यानी आने वाले कुछ दिन मध्य प्रदेश के लिए भारी बारिश के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।
2: साथियों, अगर हम पूरे मध्य भारत की बात करें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी हिस्से हैं और साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी बारिश का अलग अलग असर देखने को मिल रहा है। कहीं अच्छी वर्षा से जलाशय भर रहे हैं तो कहीं किसान अब भी आसमान की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं।
1: उसी के साथ छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। कुछ जगहों पर पुलों के ऊपर से पानी बहने लगा है और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क भी अस्थायी रूप से टूटने से लगा है। ऐसे समय में प्रशासन के लोगों से सावधानी बरतने की अपील तो कर ही रहा है प्रशासन, उसी के साथ साथ हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपना, अपनों का ख्याल खूब रखें।
2: हाँ, और साथियों, देखा जाए तो मध्य प्रदेश को देश का सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द, मूंग, कपास और अन्य कई फसलें हैं जो कि खरीफ फसलें हैं और ये सारी फसलें बड़े पैमाने पर यहाँ उगाई जाती है।
1: यदि साथियों समय पर और सुरक्षित बारिश, संयमता बारिश अगर ना हो तो फसल अच्छी बिल्कुल नहीं होती है और अच्छी बारिश हो तो फसल भी अच्छी हो जाती है। लेकिन यदि लंबे समय तक बारिश नहीं होती है या एक साथ बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है।
2: हाँ राज, और इसीलिए किसान लगातार मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर नजर बनाए रखते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में अच्छी वर्षा से खेतों में नमी बढ़ेगी और फसलों की बढ़वार बेहतर होगी।
1: श्रोताओं, बारिश केवल खेती के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए जीवनदायिनी है। तालाब, झील और बांध भरते हैं, भूजल स्तर में सुधार होता है और पेड़ पौधों को नया जीवन मिल जाता है।
2: इसीलिए तो बारिश किसे नहीं पसंद। इससे गर्मी से राहत मिलती है, हवा स्वच्छ होती है और वातावरण में ताजगी आ जाती है। वन्य जीवों और पक्षियों के लिए भी ये मौसम बेहद अनुकूल होता है।
1: लेकिन दोस्तों, सावधानी भी रखना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जब भी हम इसी जगह पर जाएं, जब यहाँ पर गड्ढे भर जाते हैं या फिर नालियां उफान पर होती हैं, तो हम वाहन चलाते समय भी, अगर पैदल भी हैं, तो अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें क्योंकि जहाँ बारिश खुशी लेकर तो आती ही आती है, वहीं लापरवाही भी

0: परेशानी का एक सबब से बन जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे तेज बारिश के दौरान नदी नालों को पार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बिजली कड़कने पर खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े ना हों।
0: तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि जल भराव वाले रास्तों से थोड़ा सा बचें, क्योंकि प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करें, क्योंकि वाहन चलाते समय गति अनियंत्रित रखें और पीने के लिए साफ पानी का उपयोग तो जरूर करें, क्योंकि मौसम में कई सारी बीमारियां भी फैल जाती हैं, चाहे वो चिकनगुनिया हो या फिर डेंगू हो। तो स्वच्छ और साफ पानी जरूर पिएं।
1: बिल्कुल। और अपने आसपास जहां भी ऐसी जगह है जहां जल भराव हो सकता है, जैसे नारियल का खोल या कोई पुराना ड्रम या बाल्टी, तो उन्हें तुरंत स्क्रैप में डालें, उन्हें हटाएं अपने आसपास से और अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, ताकि कहीं भी जल भराव की समस्या ना हो, जिससे कीड़े ना पनपें और आप सभी बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो साथियों, मौसम और पर्यावरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। और साथ ही एक और बात यह है कि हम वर्षा जल का संरक्षण भी करें, ताकि अधिक से अधिक पौधे लग सके, नदियों और तालाबों को हम साफ रख सके। और भी कुछ है जो हम अपने साथियों को बता सकते हैं राज?
0: मुझे लगता है कि इस सीजन में क्या कहें, मतलब साल दर साल हमको प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए।
1: हाँ, ये एक
0: क्योंकि
1: बहुत सही
0: आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संकट का काफी हद तक एक संकट सा मंडरा रहा है। और सबसे जरूरी ये भी है कि अभी हमने गर्मियों में ये भी देखा हुआ है, पूरे देश में ही ऐसा एक माहौल था कि पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा था हम सभी के लिए,
1: और जो पानी उपलब्ध था उसे हम प्लास्टिक के कारण और प्रदूषित कर देते थे।
0: तो हमको लगता है कि अभी पेड़ भी खूब लगाएं, क्योंकि पेड़ लगाने का एक सीजन सा है। मुझे लगता है पेड़ सबसे ज्यादा लगाएं और सुरक्षित रहें इस सीजन में, क्योंकि पानी पीना हम सभी के लिए बहुत जरूरी तो है ही है, उसके साथ पर्यावरण की देखभाल भी हमारा एक कर्तव्य सा बन जाता है।
1: तो अब हमने आपको दे दी है ढेरों काम, तो आप सोचिए कि इस मौसम में आप ये सारे काम कैसे कैसे और कब कब समय निकाल कर करने वाले हैं। और तब तक सुनिए ये गीत।

0: साथियों, भारत का हर शहर अपनी अलग पहचान, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को संजोए हुए है। और आप सभी को पता है कि प्रत्येक मंगलवार के दिन हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं हमारा खास सेगमेंट हमारे शहर से। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे शहर की ओर जहाँ इतिहास की भव्यता, प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिक शांति और विकास की नई उड़ान एक साथ दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मध्य स्थित शहर रायसेन की।
1: दोस्तों, भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर रायसेन मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय है। इस शहर का नाम होते ही सबसे पहले मन में उभरता है रायसेन का ऐतिहासिक किला।
0: ऊंची पहाड़ी पर बना यह विशाल किला कई शताब्दियों से इतिहास का मौन साक्षी बना हुआ है। इसकी मजबूत दीवारें, विशाल प्रवेश द्वार, पुराने मंदिर मस्जिद और जलाशय उस दौर की वास्तुकला और समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार इस किले पर कई राजवंशों का शासन रहा। यहाँ से जुड़ी वीरता, संघर्ष और बलिदान की अनेक कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती है।
0: और जब कोई पर्यटक इस किले की ऊंचाई से आसमान की प्रकृति का दृश्य देखता है तो उसे इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम महसूस होता है।
1: हाँ राज, रायसेन जिले की पहचान केवल किले तक सीमित नहीं है, पर इसी जिले में स्थित है विश्व प्रसिद्ध सांची, जो भगवान बुद्ध के पवित्र स्तूपों के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है।
0: और दोस्तों, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित सांची हमें शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देती है। हर साल देश विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं और भारतीय संस्कृति की इस अनमोल धरोहर को निहारते हैं।
1: साथियों, अगर वहाँ की प्रकृति की बात करें तो रायसेन का रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। घने जंगल, विविध वन्य जीव, पक्षियों की चहचहाट और हरियाली से भरपूर वातावरण मन को बहुत सुकून देता है। ये क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के महत्व का भी संदेश अपने आप में लिए हुए है।
0: रायसेन एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ के खेतों में गेहूं, सोयाबीन, चना और धान के लहलाती फसलें किसानों के मेहनत की कहानी कहती हैं।
1: साथ ही आधुनिक तकनीकों के साथ यहाँ के किसान खेती को और अधिक विकसित बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं।
0: और दोस्तों, रायसेन की सांस्कृतिक पहचान भी बेहद ज्यादा समृद्ध है। यहाँ होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन और अन्य पर्व पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं।
1: लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक मेलों में यहाँ की संस्कृति की जीवन झलक हमें और अच्छे से दिखाई देती है राज।
0: बिल्कुल साथियों, तो दोस्तों, ये शहर शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। युवा नई नई संभावनाओं की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं।
1: दोस्तों, किसी भी शहर की असली पहचान दरअसल इमारतों से नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों से होती है।

0: है। रायसेन के लोग अपनी सादगी, अपनापन, अतिथि सत्कार के लिए जाने जाते हैं। यही आत्मीयता इस शहर को और विशेष बनाती है।
1: बिल्कुल साथियों, यदि आप कभी मध्य प्रदेश आएँ तो रायसेन के ऐतिहासिक किले की भव्यता, सांची की आध्यात्मिक शांति और रतापानी के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करना बिल्कुल ना भूलें। यकीन मानिए, ये यात्रा आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी।
0: हम जानते ही हैं राज, कि हमारा शहर तभी आगे बढ़ेगा जब हम उसके विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे।
1: बिल्कुल ठीक।
0: जैसा कि हमने पहले सेगमेंट में भी बात की थी कि हमारी क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं, तो ठीक उसी तरह अगर हम हमारे शहर को स्वच्छ रखें, पेड़ लगाएं, जल बचाएं और साथ ही अपनी ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करें, अपने शहर को हम एक सकारात्मक पहचान पूरे देश में तभी दिलवा सकते
1: ये
0: हैं।
1: तो तुमने बिल्कुल सही बात कही चित्रा, और मुझे लगता है कि शहर की पहचान केवल उसकी इमारतों से नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों से होती है। ये तुमने अभी कहा था, और मेहनत और सपनों से बनती है। इस उम्मीद और विश्वास के साथ हम सब मिलकर अपने शहर की ओर भी ध्यान देंगे, उसे सुंदर बनाएंगे, स्वच्छता की ओर अग्रसर करेंगे।
0: तो दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल सेगमेंट हमारे शहर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: चित्रा, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कहीं से गुजरते हुए अचानक कोई खुशबू आए और बिना किसी कोशिश के तुम कई साल पीछे तक चली जाओ?
1: बिल्कुल, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आते ही हम गर्मियों की छुट्टियों को याद करने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। कभी मोगरे की महक दादी के आंगन तक ले जाती है, तो कभी किसी इत्र की हल्की सी खुशबू किसी पुराने दोस्त से हुई मुलाकात याद दिला देती है। देखो नाराज, कितनी दिलचस्प बात है कि खुशबू दिखाई नहीं देती, लेकिन यादें सबसे साफ उसी से जुड़ जाती हैं।
0: बिल्कुल सही, और इसका जवाब विज्ञान के पास तो है ही है, क्योंकि हमारी सूंघने की क्षमता सीधे दिमाग के उस हिस्से से जुड़ी हुई होती है जहाँ यादें और भावनाएं संजोई जाती हैं। यही वजह है कि कोई धुन या फिर तस्वीर याद आने में थोड़ा समय हम सबको लग सकता है, लेकिन एक जानी पहचानी खुशबू पल भर में हमें अतीत के किसी गली में पहुंचा देती है।
1: हाँ, शायद इसीलिए हर जगह की अपनी एक अलग पहचान खुशबू से भी होती है। पहाड़ों की ठंडी हवा में देवदार की महक, समुद्र किनारे नमकीन हवाओं की खुशबू, खेतों में सरसों, धान, सोयाबीन की महक, मंदिरों में चंदन, धूप और फूलों की मिली जुली सुगंध।
0: हाँ, और खुशबू से मुझे यहाँ पर एक बात और याद आ गई है कि हम जब छोटे थे तो जुलाई का महीना आता था और हम किताबें खोलते थे,
1: हाँ
0: तो हम उन
1: बिल्कुल।
0: किताबों को कैसे भूल सकते हैं।
1: और उस पर लगाने वाले कवर की, स्टिकर
0: हाँ,
1: की, सबकी अपनी अलग
0: गोंद
1: महक
0: की
1: होती थी।
0: खुशबू,
1: हाँ
0: मुझे सबसे ज्यादा किताबों की खुशबू ज्यादा आकर्षित करती थी कि कोई किताब है, छठी क्लास की है, पांचवी क्लास की है,
1: और
0: विज्ञान
1: देखो,
0: की
1: उसमें
0: है।
1: भी अंतर आ जाता था।
0: हाँ
1: कोई नई किताब की खुशबू अलग और जो
0: हाँ
1: किताबें बहुत पुरानी हैं उनकी
0: हाँ
1: खुशबू
0: उनकी
1: अलग।
0: खुशबू अलग। तो खुशबू की तो खैर यही बात है, और भारत की खुशबू की बात करें तो कन्नौज का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है साथियों? उत्तर प्रदेश का ये शहर सदियों से इत्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है। आज भी वहाँ पारंपरिक देख भाप का तकनीक से गुलाब, चमेली, केवड़ा, खस और कई प्राकृतिक फूलों से अतर तैयार किया जाता है। खास बात यह है कि इस परंपरा ने आधुनिक दौर में भी अपनी पहचान बनाए रखी है।
1: बिल्कुल साथियों, कन्नौज अपने आप में इतनी ढेरों खुशबुए लिए बड़ी विनम्रता से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो आप भी कभी जाइए, मौका मिले तो, और देखिए वहाँ किस किस प्रकार का इत्र मिलता है। और राज, सिर्फ फूल ही नहीं, बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली खुशबू का भी अपना एक अलग नाम है, वैज्ञानिक। जानते हो क्या नाम है?
0: तुम जरा बता दो मुझे।
1: बिल्कुल, तो साथियों वो नाम है पैट्रिकोर। हाँ, तो जब बारिश की पहली बूंदें सूखी धरती पर गिरती है, तो मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव और पौधों से निकलने वाले प्राकृतिक तत्व मिलकर जो अनोखी खुशबू पैदा करते हैं, जिसे हम बड़े चाव से महसूस करते हैं, उसे विज्ञान ने एक नाम दिया है, जो है पैट्रिकोर।
0: मुझे लगता है चित्रा कि आजकल जितने हमारे मार्केट में अल्कोहल वाली या फिर अलग अलग टाइप्स वाली जो सुगंधे वाली इत्र आ गई है, फिर परफ्यूम हो गई आ गई है, मुझे लगता है कि उनके बजाय जो नेचुरल होती है प्राकृतिक खुशबू वाली इत्र तैयार होती है, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि

0: लाभदायक भी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी सही होती है। तुम्हारा क्या कहना है उसके
1: हाँ
0: लिए?
1: बिल्कुल, हमारे यहाँ कई सारी तकनीक है जिनसे फूलों से इत्र
0: हाँ,
1: बनाते हैं, जैसे
0: खास
1: हमने
0: तौर पर।
1: बताया देग भाप तकनीक, जिससे
0: हाँ
1: अलग अलग तरह के, जैसे मधुमालती हुई, रजनीगंधा हुआ, इन्हें भाप में पकाकर उनका अर्क निकालकर उससे इत्र बनाया जाता
0: और
1: है।
0: वहीं अगर हम सिंथेटिक या फिर अलग अलग जो एलिमेंट से तैयार होता है इत्र, उनकी बात करें तो वो हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा घातक सा भी बन जाता
1: हाँ,
0: है,
1: अब जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज में रसायनों का
0: अननेचुरल।
1: उपयोग करेंगे,
0: हाँ
1: आर्टिफिशियल जिसे तुम कह रहे
0: वही।
1: हो, तो उससे नाक को और सूंघने वाले को और
0: हाँ
1: लगाने वाले की त्वचा को, दोनों को
0: बिल्कुल।
1: थोड़ा नुकसान तो हो सकता है।
0: हाँ और आजकल खुशबू सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं है, मुझे लगता है कि बड़े बड़े होटल्स, पुस्तकालय, एयरपोर्ट और यहाँ तक कि बड़े ब्रांड्स भी अपनी एक खास सुगंध तैयार रखते हैं ताकि लोग उस अनुभव को लंबे समय तक याद रखें। यानी खुशबू अब पहचान का भी एक अहम हिस्सा बन गई है।
1: हाँ, इसी तरह की एक और दिलचस्प बात ये है साथियों कि इंसानों की तरह मधुमक्खियाँ और तितलियाँ भी खुशबू के सहारे ही फूलों तक पहुँचती है। फूलों की महक उनके लिए किसी निमंत्रण से कम नहीं होती, यानी यह सुगंध सिर्फ हमें नहीं पूरी प्रकृति को जोड़ने का काम करती है।
0: सच कहा तुमने, खुशबू का रिश्ता सिर्फ इत्र या फिर फूलों से नहीं होता, यादों, विज्ञान, संस्कृति और प्रकृति सबसे है। शायद इसी वजह से कहा भी जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें हमेशा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस तो की जाती हैं।
1: हाँ, जैसे गीत भी हमें दिखाई नहीं देते लेकिन
0: हाँ
1: महसूस किए जा सकते हैं। तो
0: सही।
1: साथियों, आइए महसूस करते हैं एक प्यारा सा सुगंधित गीत।

0: चित्रा, आजकल हम सबके फोन में मैप है, लेकिन कभी सोचा है तुमने कि नक्शे आखिर बनते कैसे हैं? और सबसे पहला नक्शा किसने तैयार किया होगा?
1: देखो राज, हंसना मत, लेकिन सच कहूँ तो बचपन में मुझे लगता था कि किसी ने ऊपर से पूरी धरती की तस्वीर खींची होगी और वही नक्शा बन गया होगा। लेकिन फिर बाद में समझ आया कि एक मानचित्र सिर्फ रास्ते नहीं दिखाता, बल्कि इतिहास, विज्ञान और भूगोल तीनों को अपने अंदर समेटे होता है।
0: बिल्कुल ठीक। और आज हम मोबाइल पर एक क्लिक में किसी भी जगह का रास्ता पल भर में ढूंढ लेते हैं, लेकिन एक समय था साथियों जब नाविक सितारों को देखकर समुद्र में दिशा तय करते थे, व्यापारी अपने अनुभव से रास्ते याद रखते थे, और यात्रियों के लिए नक्शे हाथ से बनाए जाते थे।
1: और जरा सोचिए, अगर मानचित्र न होते तो शायद नई जगहों की खोज इतनी आसान न होती, न यात्राएं होती, न व्यापार होता, न शहरों की सही योजना बन पाती। एक छोटा सा नक्शा कई बार हजारों किलोमीटर का सफर आसान बना देता है।
0: साथियों, भारत का मानचित्र भी अपने आप में एक लंबी कहानी समेटे हुए है। आज हमारे पास बेहद सटीक डिजिटल मैप्स हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जमीनी सर्वेक्षण से हुई थी। पहाड़, नदियाँ, जंगल या फिर कह ले गांव शहर, सबकी माप लेकर धीरे धीरे पूरे देश का मानचित्र तैयार किया गया। आज भी सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं इस काम को लगातार आगे बढ़ा रही हैं।
1: और अब तो तकनीक ने इस काम को बिल्कुल बदल दिया है। उपग्रह, ड्रोन और GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से सिर्फ सड़कें ही नहीं, बल्कि जंगलों की स्थिति, नदियों का प्रवाह, खेती का क्षेत्र और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी भी की जा सकती है।
0: और साथियों यही नहीं, आज जब कहीं बाढ़ आती है, जंगल में आग लगती है, फिर किसी राहत अभियान की शुरुआत होती है, तब यही मानचित्र सबसे पहले मदद के लिए कारगर साबित होते हैं। यानी नक्शे सिर्फ यात्रा के साथी नहीं है साथियों, बल्कि संकट के समय भी हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। और यो फिर मैं ये कह लूँ कि हमको आने वाले समय के बारे में बता देते हैं। तुमको एक बात पता है चित्रा, कि अभी जब मैं एक रोड पे जा रहा था बाईपास पर, तो मुझे मैप ने बता दिया कि आने वाले 1 किलोमीटर में जाम भी है।
1: अरे वाह,
0: तो हमने फिर गाड़ी यू-टर्न ले ली।
1: ये तो
0: तो
1: बहुत अच्छी तकनीक है और तुम समय पर पहुंच पाए और
0: हाँ,
1: कार्यक्रम कर रहे
0: तो
1: हो।
0: मतलब मैप से ये भी पता चल जाता है कि आने वाले रूट पर ट्रैफिक जाम है या फिर रास्ता क्लियर है।
1: ऐसी ही एक और बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। हम अक्सर कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन एक मानचित्र देखो पूरी दुनिया को कागज के एक पन्ने पर या मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर समेट देता है। ये सोचकर कितनी हैरानी होती है कि विज्ञान ने दूरी को समझना आज की तारीख में कितना आसान बना दिया है।
0: सही कहा तुमने। और शायद इसी वजह से कहा भी जाता है साथियों कि हर मानचित्र सिर्फ जगह का नहीं होता, बल्कि कहानियों का भी होता है। हर रेखा के पीछे एक नदी है, हर बिंदु के पीछे एक शहर है, और हर सीमा के पीछे सदियों का इतिहास है।
1: तो अगली बार जब भी आप अपने फोन में मैप खोलें तो सिर्फ रास्ता मत देखिएगा, जरा ये भी सोचिएगा कि उस छोटे से नक्शे के पीछे कितने लोगों की मेहनत, कितने वर्षों का सर्वेक्षण और कितनी तकनीकें काम कर रही हैं।
0: और अब चलते हैं एक छोटे से संगीत के विराम की ओर। गीत के बाद लौटेंगे एक ऐसे विषय के साथ जो हमारी जिंदगी का हिस्सा तो हर दिन है ही है, लेकिन शायद हम उसे सही मायने में समझ नहीं पाते।
1: बिल्कुल, मिलते हैं गीत के उस पार।

0: देखो राज, हमने हमारे साथियों से वादा तो कर दिया कि हम गीत के उस पार उनसे बात करेंगे, पर घड़ी ने कुछ और इशारा कर दिया है।
1: बिल्कुल
0: तो दोस्तों अब समय हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जैसा हमने वादा किया था कि कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे शुरुआत में पूछे गए दो सवालों के जवाब। तो जिसमें पहला सवाल ये था कि मानसून ये किस भाषा का शब्द है, तो इसका जवाब है अरबी भाषा का। दरअसल मानसून ये अरबी भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसकी अपनी अब एक अलग वैश्विक पहचान बन गई है।
1: तो साथियों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में बंगला पान को जीआई टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो उसका सही उत्तर है छतरपुर।
0: तो
1: अब
0: अब फिर
1: दीजिए।
0: मिलने के वादे के साथ दीजिए
1: हाँ,
0: हमें इजाजत। मैं चित्रा,
1: और मैं आपका साथी राज।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं अनारी फिल्म का गीत। स्वर हैं उदित नारायण और साधना सरगम के, बोल हैं समीर के।

मैंने प्यार किया, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और SB बाला सुब्रमण्यम के स्वर में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और रचना है देव कोहली की।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.9 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
1: जी
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
2: जी
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक

0: रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
1: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
0: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
1: जी।
0: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
1: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
0: जी, हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
1: बिल्कुल।
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
1: जी।
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
1: जी, ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी।
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओ, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी।
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ

0: अड़ जाती चींटी।
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
0: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please, Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please, Air India announces...
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है।
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा कादिर, मेरी बेटी श्वेता से मिलो।

0: और श्वेता ये हैं अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अरे वहाँ श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
0: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो। आओ
3: आओ चलो आओ।

0: और सुनो कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर, वही एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिमैया भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है।

0: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
1: इतने जल्दी?
0: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
1: हाँ, जाना है।
0: फिर
2: ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
0: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं। आओ।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे, जिन्हें मम्मी कहते हैं। मम्मी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, मम्मी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की मम्मी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
1: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ, चलो आओ, खादे रहो आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?

0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछकर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं। कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ,

0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
1: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं हाजी असलम साबरी। तो आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये कव्वाली।

अभी आप सुन रहे थे कव्वाली हाजी असलम साबरी के स्वर में। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं निमाड़ी लोकगीत। आज हमारी कलाकार हैं शारदा पगारे, तो आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है लोक संगीत, और आज हम सुन रहे हैं शारदा पगारे के निमाड़ी लोकगीत। तो आइए सुनते हैं इसी कड़ी में ये लोकगीत।

0: राग होगा बागेश्री। ये थे कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम भोपाल से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुर्खियों में
1: RTLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति परियोजना का किया शुभारंभ। 20 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात। और कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के पीथमपुर में चीनी कंपनी के नए विनिर्माण संयंत्र का करेंगे भूमि पूजन। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान करोड़ों भारतवासियों का है और भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक व आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य की साझा दृष्टि का उल्लेख किया।
1: आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली सरकार के 70 लाख पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। श्री शाह ने बताया कि 1994 में अधिसूचित 7,784 हेक्टेयर रिज क्षेत्र में अब तक 5,000 हेक्टेयर को वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और जल्द ही पूरे क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में पीपल, बरगद, नीम, गुलर, अर्जुन और जामुन जैसे दीर्घजीवी पेड़ लगाकर रिज को दिल्ली के ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया जाएगा।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादकता मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्ययोजना की सराहना की। उन्होंने प्रति एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट एवं मापने योग्य लक्ष्य तय करने की भी बात कही। वहीं दूसरी तरफ श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रगति कार्यक्रम के तहत 26,000 लघु कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो एक गांव में 100 से 200 किसानों के साथ मिलकर कृषि कार्य में बदलाव लाने का काम करेंगे।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि

0: समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल से भी नई दिल्ली में मुलाकात की। इस भेंट में जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित प्रदेश की परियोजनाओं और योजनाओं पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। ये चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी का 20 एकड़ में विकसित होने वाला नया संयंत्र है। इस प्रोजेक्ट में करीब 27 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। संयंत्र में प्रारंभिक चरण में प्रतिवर्ष 6,500 एक्सकवेटर के निर्माण की क्षमता विकसित की जाएगी। कंपनी 2008 से पीथमपुर में अपनी विनिर्माण इकाई संचालित कर रही है, जहां 3,000 व्हील लोडर और मोटर ग्रेडर का उत्पादन होता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में लंबित प्रमोशन में आरक्षण मामले में आज प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान सपाक्स संस्था के अधिवक्ताओं ने मांग की कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक राज्य में सभी पदोन्नति प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जाए। संस्था ने विधानसभा सचिवालय द्वारा हाल ही में जारी 15 पदोन्नति आदेशों पर भी आपत्ति जताते हुए इन्हें न्यायसंगत नहीं बताया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि इसे अधिक लंबा नहीं खींचा जा सकता। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में प्रदेश की मेडिकल सप्लाई चेन व्यवस्था की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त दवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त स्वास्थ्य धनराजू एस ने बताया कि प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर 10 वेयर हाउस स्थापित किए जाएंगे, जहां हाई एंड तकनीक से दवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही दवाओं का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने 190 तहसीलदार एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियमित पदोन्नति दे दी है। ये पदोन्नति मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियमों तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है। प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इनमें कक्षा 5वीं में 80.42% और कक्षा 8वीं में 74.16% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्य वार्षिक परीक्षा और पुनः परीक्षा को मिलाकर कक्षा 5वीं का कुल परिणाम 98.89 और कक्षा 8वीं का 98.19% रहा है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से आज मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का चयन पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। एशियन गेम्स के लिए प्रदेश के 22 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, शूटिंग और घुड़सवारी सहित विभिन्न खेल विधाओं में क्वालिफाई किया है। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ी और टीम सदस्य जूट से तैयार विशेष परिधान पहनेंगे। इसे वस्त्र मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने जूट विस्कोस मिश्रित कपड़े से विकसित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के तहत इस पहल का उद्देश्य जूट उद्योग को नई पहचान देना और पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों को बढ़ावा देना है। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में अपने प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को फिलहाल लॉन्च नहीं करने का फैसला किया है। कंपनी ने सरकार को भरोसा दिया है कि अधिकारियों के साथ चल रही बातचीत पूरी होने तक यह फीचर देश में शुरू नहीं किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महापौर मालती राय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजधानी भोपाल के 3EME सेंटर में पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खंडवा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम और विधिक सहायता की जानकारी दी गई। नीमच में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत ने सपरिवार संकट मोचन हरकियाखाल मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। सीहोर में आरटीई के तहत निजी स्कूलों की खाली 1651 सीटों पर तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अशोकनगर कलेक्टर ने साप्ताहिक जनसुनवाई में 408 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रभावित पुल और रपटों पर ड्रॉप गेट लगाने के निर्देश दिए हैं। बैतूल कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक कर लंबित पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। झाबुआ में डायरिया से बचे हर बार अभियान के तहत ग्राम कालापीपल में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज में श्वानों के लिए कृत्रिम आंख लगाने की तकनीक का सफल प्रयोग किया गया है और भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने वाले बैरसिया नरसिंहगढ़ मार्ग पर पार्वती नदी के अस्थायी वैकल्पिक मार्ग से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। एसडीएम आशुतोष शर्मा ने नदी में बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए ये आपातकालीन आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बहनों के स्मिता की राम राम। भाई बहन, पानी की बखत है नहीं, मौसम ऐसा चली रही है पर पानी नहीं पड़ी रही है। कहीं तो ऐसी बाढ़ आई रही है जी को कहो नहीं, और कहीं तो है कि कहीं बोनी का पीछे कभी तो अचानक से इतरो पानी ही जाए कि बीज ना बेवी जाए, कभी ऐसा ही जाए कि हम बोनी नहीं करी पी रहा कि कहीं पे आई नहीं रही है पानी। तो यो सब कहीं हुई रही है, कभी हमने जानने की कोशिश करी कि यो सब हुई क्यों रही है। हाँ भाई बहन, और कहीं है कि जो पानी है देखो देखियो जाए तो यो एक हमारा जीवन को सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है नहीं, और इके मतलब संजोई के रखनो कभी हमने सोचियो नहीं। तो हम कहीं सोचा हाँ कि प्राकृतिक कोई भी चीज़ ना जो हमारे मिली है बस उको हम चाहवा वैसो उपयोग कर सका हाँ, है नहीं। उके कहीं करनो कभी पहला का बखत के देखा कभी तो कभी कोई बोलतो तो कोई दांत काटता था कि भाई कहीं है यो कोई पानी भी कहीं इके संजोई के रखे कहीं, यो तो भाई भगवान को दियो गयो है उपहार है नहीं। इके कैसे उपयोग करना है, आराम से करो, कैसे भी ढोलनो है ना कहीं भी करनो है जो करो। लेकिन अभी जो बखत है, अभी इन्हीं बखत पे जो हमारो मौसम चली रही है, प्रकृति हमारे से पूरा पूरा जो का उपहार है उनको पूरो एक हिसाब किताब लेवे है, और उना हिसाब किताब के तहत अभी ये स्थिति है कि हमारा यहाँ पे पूरो पानी को संतुलन बिगड़े हुए है। कहीं तो हमारा देश में घणो पानी पड़ी रही है तो कहीं कहीं भी नहीं है नहीं, सूखो पड़ी रही है। तो यह सब क्यों हुई रही है, इका कारण भाई देखो

ये अब जब कहे अपन कहवा कि ये प्रकृति प्राकृतिक संसाधन है और बहुत महत्वपूर्ण है, और हम जाना है कि इका बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं करी सका, है नहीं? लेकिन जो हमारी आज बढ़ती हुई जनसंख्या है, भूजल को अत्यधिक दोहन है, जो हम भूमि का अंदर, जो धरती का अंदर जल रहे पानी है, उसको हम कितरो भी भाई नरा ट्यूबवेल लगी रहा है, जगह जगह बोरिंग हुई रहा है, तो कितरो भूजल रहे गो, कितरो पृथ्वी में पानी रहे गो, जंगल ना की कटाई करता जा रहा, तो पानी पड़ने मंडी पड़ने पड़े नहीं है, रोड ना बनी जाए, जनसंख्या बढ़ी रही है, मकान ना बनी रहा है, बहनी पेड़ ना के काटी रहा है, जंगल है ही नहीं तो रोड ना बनी रही है, और सब पक्को ही रही है, तो फिर जल अंदर जाएगो कैसे पृथ्वी का अंदर, है नहीं? जल को दुरुपयोग भी करी रहा, तो ये सब कारण है जीका से कि हमारा सामने गंभीर जल संकट पैदा ये सब कारण है करी रहा है। कभी हमने बखत रहता, कभी जल संचय नहीं करियो, तो यूँ मानी लो कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उके भारी पानी की घनी कमी को सामनो करना पड़ेगा। और जब हम सोची सका कि अभी तो यो बखत है कि भाई ये जद घाम पड़े, गर्मी को मौसम आए, जदेज हमारे यह परेशानी आई रही है, और कदी सतम सोची लो कि साल भर कदी बरस में पूरा हमेशा यो परेशानी आने मंडी जाए, तो सोचो उन पे हमारी आने वाली पीढ़ी पे कहीं असर पड़ेगा। भाई बड़ो वर्षा जल संचयन इका से बचना को सबसे सस्तो अण आसान उपाय है। उके अलग जो हम ये मानी लो कि भाई इको मतलब ये है कि जो पानी वर्षा में पड़े है उके हम अलग तरीका से संचित करीने रखो रखनो है। जैसे कि भाई अब कोई अपन बर्तन ना में भांडा ना में तो भरी के नहीं रखी सका, तो हमारे कहीं करनो है कि घर ना में, स्कूल ना में, सरकारी दफ्तर ना में घड़ी बड़ी बड़ी छत ना रहे, है नहीं? और हम चाहवा तो उको जो पानी है छत पे जो पड़े है वो यूज बे भी जाए, तो उके भी हम सोच चाहवा तो पाइप का माध्यम से, पाइप से लगाई के और उके जमीन में उतारी सका हाँ, जहाँ पे हमारा ये बोरिंग है वहाँ पे उतारी दामा, तो उको भूजल बढ़ेगो, है नहीं? हमारे साल भर उका से पानी मिलतो रहेगो, भाई हमारा यहाँ की छतना को और इनको पानी, ये जो सब कदी भूजल बनी जाए तो कितरो अच्छो रहेगो, है कि नहीं? अब स्कूल ना का पा स्कूल ना में बोरिंग सूखी जाए तो उका में भी यू काम करी सका हम, जहाँ पे हमारा यहाँ खेतना है खेतना में हम तालाब बनी सका हाँ, वर्षा का जल के सिंचाई के रूप में उपयोग भी करी सका और उसमें मछली पालन भी करी ला, कदी जब तक कि हमारे उन्हें तालाब को पानी की जरूरत नहीं है तो उसमें हम सिंगाड़ा की खेती करी सका हाँ, नरा सारा मतलब और काम ज़्यादा करी सका। खेत तालाब जी के बोले है उका सारू तो सरकार भी हमारे सब्सिडी देवे, सरकार भी मदद करे, ऋण देवे, तो हम चाहवा तो ये नरा सारा ऐसा कामना है जिका से हम हमारा भूजल स्तर के बढ़ सका हाँ, पानी जो पड़े है उकी मात्रा के भी बढ़ाना वो हमारे हाथ में है। भई हमारे कहीं ना कहीं कोशिश करनी है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ना लगाना है, तो वो भी हमारे एक मदद करेगा। साथ ही हम हमारा घर का आसपास जहाँ भी कच्ची जमीन है वहाँ खाड़ो खोदी ने अच्छो उंडो काड़ खाड़ो खोदी लो, और उका में दगड़ न पत्थर न फिर बालू रेती गिट्टी इन सब के भरी दो एक का बाद एक है, तो कहीं जो पानी बेव तो आए नहीं, वो पानी जो है वो पूरो की पूरो नीचे समातो जाए और उना गड्ढा का माध्यम से पूरो की पूरो जमीन में उतरी जाए, तो उका से भी हमारा भूजल स्तर बढ़े, नहीं तो कहीं होएगो भाई बह भी जाएगो, वो तो रोड ना पे आएगो, सड़क ना पे से बह भी जाएगो नाली ना में, है नहीं? हमारे यो करनो है। फिर हमारा यहाँ जो तालाब ना है उनकी गाद निकालनी, उनकी सफाई करनी, जदेश तो हुई पानी उकमें और ज़्यादा इकट्ठो होएगो, तो यो काम भी हमारे करनो है। बावड़ी जो पुरानी पुरानी बावड़ी ना बंद पड़ी है उनके हम साफ सफाई करी के और इन्हीं बखत पे उको काम करी सका है नहीं? हमारा कुआ ना है उनको पानी को भी उपयोग हम करी सका, ये सब कदी होएगो तो उका से जो हमारी जमीन में जो है पानी की कमी नहीं होएगी, और पानी की कमी जब जमीन में नहीं होएगी तो जदेज हम उन्हीं पानी को उपयोग हम भी करी सकेंगा और हमारी आने वाली पीढ़ी भी करी सकेगी। तो भाई बहनों जो हमने आज बातचीत करी है इकेज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग
इका नाम से आज जानी रहा है मनकना, और ऐसे ज हम भूमि वर्षा के जल के संचित करी ने और इके हम हमारा यहाँ पे बचाई के और हम अपना पानी की पूर्ति करी रहा करी सका। हाँ, तो आज से

संकल्प ली लो कि हमारे यो काम बिल्कुल अभी बारिश शुरू हुई है तो यो करनो है जेका से हमारे साल भर तकलीफ नहीं उठानी पड़े। तुमसे बात तो और भी नरी करनी है पर बीच बीच में अब यो मौसम है लहरिया पेड़ने को तो क्यों नहीं सीमा मिश्रा को गायो यो गीत सुना।

0: हमने सीमा मिश्रा को गायो यो लोकगीत सुनियो। अब अपन जब वर्षा की बात कर ही रहा हाँ, मौसम से प्रकृति से जुड़ के चली रहा हाँ, तो आज का कार्यक्रम में अपन वर्षा जल संचयन, भविष्य में जल संकट को समाधान योजे ई का बारे में हमारे बताएगी डॉक्टर नीलम बुनकर, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय इंदौर से, जिससे बातचीत कर रही है तुलसा। तो चलो सुनाया भेंट वार्ता।
1: किसान भाई नोनी राम राम। वरसात को जो पानी छे ओको कदी हम संचय करी लेवांगा तो उनो पानी हमका भविष्य में काम आवेगा, चाहे वो खेती बाड़ी को काम हो या अपना घर गृहस्थी का काम हो। तो वर्षा को जल संचयन कसो करा न भविष्य का जल संकट को समाधान कसो करा, इना सब बारा में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित छे डॉक्टर नीलम बुनकर, सहायक प्राध्यापक कृषि अभियांत्रिकी विभाग कृषि महाविद्यालय इंदौर सी। तो डॉक्टर नीलम बुनकर जी, आपको कार्यक्रम में स्वागत छे। राम राम।
2: राम राम मैडम, राम राम किसान भाइयों और बहनों।
1: जसो कि अभी हमने बात करी कि वरसात लगने वाली छे न वरसात को पानी को हम संचयन कसो करी सकान, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि वर्षा जल संचयन सी मतलब काई हो न ये जरूरी क्यों छे?
2: मैम, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि वर्षा जल संचयन का मतलब क्या है। वर्षा जल संचयन का मतलब है कि वर्षा के जल को एकत्रित करना और संग्रहित करना। संग्रहित करके उसको खेत में भी हम उपयोग कर सकते हैं और अपने मानव जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं। हम सब ने बहुत पहले से सुना हुआ है कि जल जीवन का आधार है, पर आधार अभी थोड़ा संकट में है। ये मैं सिर्फ अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़ों के हिसाब से कहा जा रहा है। जैसा कि सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है जिसके अनुसार बताया गया है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा एवं हिमपात से लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर जल प्राप्त होता है। इसमें से कुल प्राकृतिक अपवाह 1986 बिलियन क्यूबिक मीटर है और 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर उपयोग होने लायक ही सिर्फ जल बचा हुआ है। अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो 2011 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1545 मीटर क्यूब पर ईयर थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम 2025 में बात करेंगे तो 2025 में यह घटकर 1320 मीटर क्यूब पर ईयर हो चुकी है। तो हम इन आंकड़ों से अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितने तनावग्रस्त हैं, क्योंकि सेंट्रल वाटर कमीशन ये कहती है कि अगर पर व्यक्ति जल उपलब्धता 1700 मीटर क्यूब पर ईयर है तो फिर हम जल संकट की स्थिति में आ चुके हैं। तो इसका महत्व इसलिए है और इसकी जो उपयोगिता है वो इसलिए है क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये बोल रहे हैं कि हम जल संकट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं।
1: अच्छा, तो ये तो आपने बताया आंकड़ा कि किस प्रकार से हम जल संचयन करी सकान, तो एक अरु कई कई तरीका छे किस प्रकार से अरु एक हम जल को संचयन करी सकान।
2: जल संचयन के लिए मैडम तीन तरीके होते हैं।
1: अच्छा।
2: पहला तरीका होता है कि हम रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें।
1: अच्छा।
2: दूसरा तरीका है कि हम सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग करें और तीसरा तरीका होता है हम ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग करें। रूफ वाटर रेन का मतलब होता है कि हम घरों में ही छतों में वर्षा के जल को नियंत्रित करें और उसके बाद पाइपों के माध्यम से टंकियों में वर्षा के जल को संचलित कर सके।
1: हाँ हाँ, जो बरसात को पानी वो छत पाई जाए तो छत का पानी का सीधा अपन जमीन में उतार
2: सकते हैं।
1: हाँ हाँ।
2: उसमें अब ये सबसे मैं महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में ये एकदम अनिवार्य रूप से एक नियम लागू कर दिया गया।
1: अच्छा।
2: है कि अगर वहां पे घरों का निर्माण किया जाएगा तो वहां पे ये महत्वपूर्ण है और ये अनिवार्य है, ये एक नियम लागू कर दिया गया है कि उन्हें घरों में अपने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं कि ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम रिचार्ज पिट या पुनर्भरण गड्ढे बना सकते हैं और परकोलेशन टैंक भी बनाया जा सकता है। रिचार्ज पिट और परकोलेशन टैंक में सिर्फ अंतर इतना है कि इनके ढांचे का जो साइज होता है बनावट में अंतर होता
1: है। अच्छा।
2: रिचार्ज पिट हम छोटे स्ट्रक्चर के लिए बना सकते हैं, छोटी जगह पे बना सकते हैं, छोटे गड्ढे जो होते हैं, और जो हमारे परकोलेशन पॉन्ड होते हैं परकोलेशन टैंक होते हैं इनको हम बड़े खेतों के पास में बना सकते हैं, इनसे हमारा भूजल स्तर बढ़ जाता है।
1: अच्छा।
2: तीसरी बात करते हैं हम सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग की, जिसमें फार्म पॉन्ड, चेक डैम और स्टॉप डैम आता है। ये स्थानीय उपलब्ध सामग्री से बनते हैं और ये छोटे आकार के,
1: मतलब जो सामग्री अपना पास उपलब्ध है ओका से अपन बना ही सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं और ये बहुत ही सस्ते दामों में हमें मिल जाते हैं। ये बहुत ही छोटे आकार में होते इसलिए हम इन्हें छोटे बांध भी कहते हैं, लोकल उसमें छोटे बांध भी कह सकते हैं। ये जल को रोकते भी हैं जिससे हम सिंचाई भी कर सकते हैं और ये भूजल स्तर को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है खेत तालाब। अच्छा। जिसको हम फार्म पॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें किसान अपने ही खेत में तालाब बनाकर जल को संग्रहित करता है और जरूरत पड़ने पर उपयोग भी कर सकता है।
1: तो ये तो आपने बताया काका की विधि नसी, काका का तरीका नसी अपन जल को संचयन करी सका। तो एका लेन वर्षा जल संचयन का लेना सरकार का द्वारा भी कोई पहल की जा रही कि किस प्रकार से अपन ये वर्षात को पानी से होकर संचय करी न रखी सका जिकासी भविष्य में वो पानी अपन का काम आवा।
2: मैम, सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए, जल को संग्रहित करने के लिए बहुत सारी मुहिम चला रही है, बहुत पहले से ही चलाती आ रही है, कई सालों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इनमें बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इत्यादि। पर जो मेरा आज का विषय है उसमें सबसे ज़्यादा जो रूबरू रखती है योजना, मैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगी। कैच द रेन अभियान, यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जब भी बारिश हो, जहां भी बारिश हो, वर्षा के जल को संचित करें।
1: अच्छा,
2: मतलब कैच द रेन, वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इस अभियान का जो शुभारंभ हुआ था 22 मार्च 2021 में विश्व जल दिवस के दिन अवसर पर किया गया था। इसके जो प्रमुख घटक हैं, वो सबसे पहला घटक है कि हमको वर्षा के जल को संचलित करना है। दूसरा है कि जल स्रोतों का पुनर्जीवन हो सके। तीसरा है भूजल का पुनर्भरण हो सके। और चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है जनभागीदारी।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमें मिलकर ही साथ में ये जो योजना है उसका लाभ उठाना पड़ेगा और उसको अच्छी तरीके से कंडीशन में लाना पड़ेगा। तो ये जो मुख्य घटक है इन्हें हमें अपने ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं का हम लाभ उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। पर एकालिए सरकार का द्वारा कोई अनुदान भी दियो जाए कि किस प्रकार से हम जल संचयन करा उका द्वारा।
2: मैम, मैं किसान भाइयों और बहनों को बताना चाहूंगी कि अनुदान तो है।
1: हाँ हाँ।
2: पर कोई बड़ी राशि नहीं है।
1: अच्छा।
2: और ये स्वतंत्र कोई वित्तीय योजना नहीं है।
1: अच्छा।
2: इसके लिए, इस अभियान के लिए विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य सरकार की योजनाओं के कन्वर्जेंस या अभिसरण से संचालित किया जाता है।
1: अच्छा।
2: जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा कहते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। तीसरा है वाटरशेड विकास योजना। चौथा अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और पांचवा है जलाशयों के मरम्मत एवं पुनरुद्धार कार्यक्रम किया जाता है। इन सब योजनाओं से मिलके जो अनुदान होता है उसकी मदद से हम जो इसमें मदद मिलती है उसके हिसाब से हम इसमें कैच द रेन अभियान का नियंत्रण कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो जैसो अभी आपने बताया कि काका को अभियान छे, काका का अनुदान भी सरकार द्वारा हमको मिल जाए तो कमज मिलज। पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई ऐसी प्रचलित योजना छे जगह में पानी को संचय करी सका हम?
2: जी बिल्कुल है मैम, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है बलराम तालाब योजना।
1: अच्छा।
2: ये काफी चर्चित में है और इससे बहुत लाभ मिला है किसानों को। इसमें क्या किया जाता है कि किसान अपने ही खेत में एक तालाब बनाता है जिसको खेत तालाब हम कहते हैं।
1: हाँ।
2: और सरकार उसे अनुदान देती है, 40,000 से लेके 1,00,000 तक का अनुदान प्रदान करती है कि वो।
1: अच्छा।
2: अपने ही खेत में तालाब बनाए, उसको वो चाहे तो भूजल स्तर बढ़ाने के में भी मदद कर सकता है और अपनी सिंचाई के लिए भी वो मदद ले सकता है।
1: अच्छा।
2: अब इसका जो बलराम तालाब योजना है ये मध्य प्रदेश में इसलिए भी बहुत प्रचलित है क्योंकि इसका जो ढांचा है वो लगभग डिफर करता है 30 फीट से लेके 30 फीट लंबाई, 30 फीट चौड़ाई और 15 फीट की गहराई इसमें बनाई जाती है। इससे लेके 100 फीट की लंबाई, 100 फीट की चौड़ाई और 10 फीट की गहराई तक का खेत तालाब इसमें बनाया जा सकता है। इसके लिए कुछ पात्रता शर्तें होती हैं, जैसे कि किसान के पास उसका खुद का अपना खेत होना चाहिए, लगभग 1 हेक्टेयर का कम से कम खेत होना चाहिए और वो किसी लीज में ना हो। फिर दूसरी उसके लिए शर्तें ये हैं कि वहां पे जो उसका खेत है थोड़ा ढलान में हो ताकि पानी अपने आप बह के आ जाए, उसको और भी कोई खर्चा ना लगे।
1: अच्छा।
2: है ना। और तीसरा ये होता है कि उसके पास उस जमीन के पूरे जो दस्तावेज हैं वो होने चाहिए, और इन दस्तावेजों में अगर वो चाहते हैं कि सरकार से कोई अनुदान दे तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया में वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और फिर जो उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग होता है वो आके उनकी जान करते हैं और उसके हिसाब से वो अनुदान प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आप हमारा किसान भाई ने कहा चलते चलते कई कहना चाहोगा, तो मुख्य काका की बात न चाहिए जो हमारा किसान भाई याद रखा न बारिश का पानी को संचय करी सका।
2: हम जब बारिश होती है तो हम उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि बारिश ही है, हम उसे ऐसे ही बहने देते हैं, हम उसका महत्व नहीं समझते। लेकिन जब बारिश के बाद जब हम उसकी महत्वता आती है तब हमारे पास पानी बचता नहीं है। तो अगर हम उसी टाइम पे ही उसी मतलब उसी
1: जब बरसात हो जब
2: जाए तभी हम उसको संचलित कर लें, तो जब हमें जरूरत है उसके लिए हमें यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़े। अभी आप इंदौर की अगर देखेंगे स्थिति तो बहुत सारी जगह में टैंकर्स का सप्लाई पानी दिया गया है पीने के लिए, से तो छोड़ ही दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि महत्वता इतनी है कि आप उसी टाइम पे ही उस पानी को संचित कर लीजिए, ताकि संचित करेंगे तो आपको जब भी आपके भविष्य में उसकी जरूरत है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, डॉक्टर नीलम बुनकर आप हमारा कार्यक्रम में आई न हमारा किसान भाई न वर्षा जल संचय न भविष्य में किस प्रकार से हम जल संकट को समाधान करी सका, इन विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी ना जो हमारा किसान भाई अपनो कार्यक्रम सुनेगा इन्हीं चर्चा को लाभ जरूर उठाएगा। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद मैडम।
0: हमने यह भेंट वार्ता सुनी जिका में वर्षा जल संरक्षण भविष्य में जल संकट को समाधान इका पे बातचीत भी सुनी, और घनी अच्छी बातचीत में यह जानकारी हमने ली कि भई हम कैसे हम हमारा वर्षा का जल के संचित करी ने रखी सका, कैसे हम घर में संचित करी सका, और यो संचयन हम कैसे अपना खेतना में भी करी सका है, जिका में हमारे जानकारी दी थी डॉक्टर नीलम बुनकर सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय इंदौर से, और उनसे बातचीत करी दी थी तुलसा। अब इका साथ ही अपन जब वर्षा पे बात करी रहा हाँ, आज वर्षा के लिखे चली रहा हाँ, तो आज अपन यो वर्षा गीत सुनांगा जी के गायो है बद्रीलाल मालवी और साथी नाने।

हमने बद्रीलाल मालविया अन साथीना कुगायो यो लोग गीत सुनियो। अब भाई बहनों और आज अपन एक और बात करीला जिका में हम आज अपन बात करांगा एक पेड़ माँ का नाम। इना विषय पे बात करनी तो कई है। देखो भाई माँ का नाम पे पेड़ लगानो है तो उका पे बातचीत कई करनी। पर देखो माँ हमारे जन्म देवे, पालन पोषण करे और बिना कोई स्वार्थ के हमारे जीवन भर प्यार करे है और साथ ही सुरक्षा भी देवे। वैसे ज एक पेड़ भी हमारे बिना कोई स्वार्थ के छाया, फल, फूल, लकड़ी, दवाई और सबसे काम की हमारा जीवन का चलाना का सारू ऑक्सीजन देवे है। इका सारू केवे नी कि माँ अण पेड़ दोनों जीवन का सच्चा आधार है। आज बढ़ता प्रदूषण, जंगल ना की कटाई, अण जलवायु परिवर्तन का कारण हमारी धरती को संतुलन बिगड़तो जा रियो है। तापमान बढ़ी रियो है, पानी भी कदी ज़्यादा तो कदी कम पड़ी रियो है, स्वच्छ जल शुद्ध हवा नहीं मिली रही है। इन्हीं वक्त पे पेड़ लगानो बस पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी ना के सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी भी है। भाई बहनों हम कदी एक पेड़ माँ का नाम अभियान जो अभी चली रही है वो कदी हम हमारे यह सोचिला कि ये याद दिला ही रही है कि हम अपनी माँ का सम्मान में कम से कम एक पौधो जरूर लगावा। और पौधों लगानो ज बस नहीं है, उकी देखभाल भी करनी है, उके बढ़ते हुए देखनो भी है। इससे ज हमारा देश और अधिक हमारा जो देश में हरियो भरियो है, वैसे तो हमारा देश हरियो भरियो है पर उके और अधिक हमारो भरियो और साथ ही स्वच्छ सुंदर इके सब बन ही सकांगा। और जब तक कि हम भाई कोई सोचांगा नहीं, एक संकल्प नहीं लेवांगा जब तक हम पेड़ बड़ी आसानी से नहीं लगा वहाँ तो, और यो हमारी माँ का प्रति सच्चो सम्मान भी होवेगो। तो क्यों नहीं आज हम ये प्रकृति का प्रति अपना कर्तव्य के निभावा, अपनी माँ का प्रति उके सम्मान के निभावा और साथ ही हमारा देश का सारू, हमारा देश में रहने वाला सगला मनक ना का देशवासी ना का सारू एक पेड़ अपनी माँ का नाम पे लगावा और उकी देख रेख जीवन भर करने को संकल्प लेवा। यो हमारे जरूर से करनो है। साथ ही अब हमारा पास मंडी का भाव भी आई है। कृषि उपज मंडी समिति संयोगिता गंज प्रांगण इंदौर से जो भाव आया है उके जानीला आज कही रिया। आज गेहूं की आवक री 2207 क्विंटल और भाव रियो 2000 रुपये से 3211 रुपये प्रति क्विंटल। तिल्ली की आवक री 1 क्विंटल और भाव रियो 9990 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन की आवक री 1272 क्विंटल और भाव रियो 2150 रुपये से 7030 रुपये प्रति क्विंटल। सौंफ की आवक री 1 क्विंटल और भाव रियो 11930 रुपये क्विंटल। चना की आवक री 97 क्विंटल और भाव रियो 4700 रुपये से 7300 रुपये प्रति क्विंटल। मटर की आवक रही 56 क्विंटल और भाव रियो 3345 रुपये से 3950 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का की आवक रही 39 क्विंटल और भाव रियो 2020 रुपये से 2191 रुपये प्रति क्विंटल। डॉलर चना की आवक रही 2206 क्विंटल और भाव रियो 5700 रुपये से 8930 रुपये प्रति क्विंटल। ये तो था भाई बहनों आज कृषि उपज मंडी समिति संयोगितागंज प्रांगण इंदौर से आया हुआ भाव। अब इका साथ ही हमारे आज है मंगलवार को दंड तो राम के भजनों कैसे भूली सका। हाँ चलो राम अवतार अखंड मंडली का साथ है राम के भी भजीला।

हमने राम अवतार अखंड अन्न मंडली को गायो यो लोकगीत सुनियो और इका साथेज अब मारे अनुमति दो और राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुर्खियों में अब भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 देशों के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल इंडोनेशिया पहुंचे और जकार्ता में उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए कई फैसले भी लिए। इस विषय में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर स्कंद रंजन तायल। अम्बेसडर तायल, आपका आकाशवाणी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: अम्बेसडर तायल, हमने इंडियन ओशन रीजन की तरफ भारत सरकार का एक झुकाव देखा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो ये विजिट है, ये इंडियन ओशन रीजन के ईस्टर्न मैरिटाइम जोन और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस विषय में, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, आप भारत इंडोनेशिया की साझेदारी को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं?
4: देखिए, अब हिंद महासागर, प्रशांत महासागर किसी तरह से जुड़ चुके हैं और पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का कूटनीति का एक बहुत ही बड़ा पुश हमें देखने को मिल रहा है। पिछले अप्रैल में हम कोरिया के, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राष्ट्रपति भारत आए थे। अभी एक हफ्ता पहले हमने देखा कि जापान की प्रधानमंत्री भारत आई थी और बहुत ही एक सक्सेसफुल वो विजिट रही। और अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और हिंद प्रशांत क्षेत्र की ये 5 देश मुख्य लोकतांत्रिक देश हैं और भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छा पहला पड़ाव भारत की प्रधानमंत्री की यात्रा का इंडोनेशिया में आज रहा।
3: अम्बेसडर तायल, जैसे कि आपने बताया, जितने अग्रीमेंट साइन हुए, जितने नतीजे आए हैं, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए भी सहयोग समझौते शामिल हैं। क्या आप हमारे श्रोताओं की बेहतर समझ के लिए समझा सकते हैं इसको और विस्तार में?
4: देखिए, करीब 12 से अधिक समझौते पर आज हस्ताक्षर हुए और जो सुरक्षा के क्षेत्र में है, विकास के क्षेत्र में है, तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में, संस्कृति, कल्चर और शिक्षा, और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे मुख्य सुरक्षा के क्षेत्र में है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा कार्य किया, दुनिया ने उसको देखा, और भारत डायनेमिक्स का जो अस्त्र मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, उसने भी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा काम किया। और इन दोनों का इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट हुए हैं उनको सप्लाई करने के। उसके अलावा जो सबांग पोर्ट है, एक जो हमारे अंडमान निकोबार से केवल 100 मील दूर है, उनके बीच में भी सहयोग की बात की जा रही है। क्योंकि ये श्रोताओं को समझना चाहिए कि जो मलक्का स्ट्रेट्स है, बहुत ही मुख्य पानी का रास्ता है जिससे पूरे ईस्ट एशिया व्यापार वहां से होता है, भारत का 40% व्यापार वहां से होता है। और अभी पीछे जो हमने देखा कि किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि कोई वहां पे गतिरोध कभी भी आएगा व्यापार में और शिप्स को पार करने में, तो इस तरह मलक्का स्ट्रेट्स है, उसका ठीक वहां चले और उसमें कोई गतिरोध अवरोध ना आए, इसमें भारत और इंडोनेशिया का बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं समझता हूं कि इस पर भी कुछ एग्रीमेंट और कुछ बातचीत हमारे प्रधानमंत्री और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के बीच में हुई है।
3: एक और जो अहम फैसला आज लिया गया जिस पर मेरे समझ से चर्चा होनी चाहिए वो ये है कि महत्वपूर्ण खनिजों और स्टील के क्षेत्रों में सप्लाई चेन को मजबूत करने का भी समझौता हुआ है। साथ ही स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट में साझेदारी का एक नया दौर वो भी सामने आएगा। अम्बेसडर तायल, खास तौर पर आपसे महत्वपूर्ण उपयोगी खनिजों और रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में बात करना चाहूंगे।
4: पिछले एक दो वर्ष में विश्व के सामने एक ये नया मुद्दा उठा है कि क्रिटिकल मिनरल्स और इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स, इसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीन ने अपना एक वर्चस्व जमाया है। 80% से ज्यादा ये कंट्रोल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और हमारे श्रोता ये देखेंगे कि भारत के जो भी एग्रीमेंट्स आजकल दूसरे देशों के साथ हो रहे हैं उसमें हमेशा क्रिटिकल मिनरल्स का जिक्र रहता है, क्योंकि ये जो खनिज है ये बहुत रेयर है। ये नाम क्रिटिकल मिनरल्स और ये रेयर अर्थ इनको कहा जाता है। ये खनिज इंडोनेशिया में काफी मिलते हैं और एक देश इसको नहीं पूरी तरह से संभाल पाता, तो कई जगह ये देखा गया है कि कई देश मिलकर खनिज एक जगह होता है, उसको प्रोसेस दूसरा देश करता है और पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। तो इसमें जो भी समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच में आज हुआ है उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव भविष्य में सप्लाई चेन पर पड़ेगा क्रिटिकल मिनरल्स का। 21% दुनिया की निकल इंडोनेशिया में है और स्टेनलेस स्टील की प्रोसेसिंग में निकल की आवश्यकता पड़ती है, और भारत स्टील का बहुत बड़ा एक उपभोक्ता भी है और प्रोड्यूस भी करता है। तो इसमें भी बहुत ही अच्छा समझौता हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडोनेशिया की एजेंसीज के बीच में हुआ है।
3: अम्बेसडर तायल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के UPI की, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दुनिया भर में UPI काफी विश्वसनीय और काफी उपयोगी साबित हो रहा है। आज ये घोषणा की गई है कि UPI को जल्द ही इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ भी जोड़ा जाएगा। जब UPI सरहदें पार कर रहा है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव लाने और लीडर के तौर पर ये सब भारत की छवि को और कैसे बेहतर बना रहे हैं?
4: जिस तरह से भारत में डिजिटल सर्विसेज पूरे 140 करोड़ लोगों तक पहुंची हैं, गांव-गांव में पहुंची हैं, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है, चाहे वो हमारा आधार कार्ड हो, हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो, और जो पेमेंट्स कार्ड्स के थ्रू बैंक के द्वारा हो रहे हैं, फोन के द्वारा हो रहे हैं, तो इसमें जो UPI 10 देशों से पहले ही भारत का समझौता हो चुका है जहां भारत आप UPI से पेमेंट रुपीस में कर सकते हैं। अब इंडोनेशिया का जो इंडोनेशियन पेमेंट सिस्टम है उसके साथ भी UPI का इंटीग्रेशन होगा, उसका मेल होगा। हमारे जो पर्यटक हैं और बिजनेस के लोग हैं वो अगर इंडोनेशिया जाएंगे तो रुपीस में UPI के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इससे देखिए दोनों देशों के नागरिकों को ये लाभ भी होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज कमीशन होता है वो भी बच जाता है, क्योंकि पहले अगर आप इंडोनेशिया जाएं कुछ खरीदें तो पहले वो रुपया डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर डॉलर भारत के रुपए में कन्वर्ट होगा, और दोनों तरफ वो कमीशन डॉलर वाला लेता है। तो अगर डायरेक्ट रुपी और रुपया डायरेक्टली लिंक होगा तो वो कमीशन बच जाता है, दोनों देशों के नागरिकों को उससे फायदा होगा।
3: अम्बेसडर तायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आजकल दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डंका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए भी आज समझौते हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा, आज कल पूरी दुनिया में AI का डंका है, तो AI के क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया आगे अपनी साझेदारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि AI सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा सके?
4: आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये शताब्दी है 21वीं शताब्दी, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी है, और उसका एक रूप जो सामने आया है पिछले एक दो साल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बिल्कुल नया टूल विश्व में समाज के साथ आपके पास आई है, जिस पर मास्टरी करना बहुत आवश्यक है हर देश को जो भी आगे बढ़ना चाहता है। और इसमें भारत पहले ही बहुत काम भारत में हो रहा है, मिशन्स हैं, और स्टार्टअप्स में तो भारत ने कई पिछले सालों से गवर्नमेंट

0: इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया। तो आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए मुख्य अंश।
1: पिछले दो दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव भी यही कहता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हमारे यहाँ भी पिछले एक दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है और लोकतंत्र भविष्य बनाता है।
0: अम्बेसडर तायल, इंडोनेशिया द्वारा इन दोनों जेस्चर्स को भारत की तरफ कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं है बल्कि भारत के हर एक नागरिक के लिए है, तो इन दोनों कदमों को आपकी नजरिए में आप कैसे देखते हैं?
2: ये एक बहुत ही प्रमुख सम्मान है प्रधानमंत्री का भी और भारत का भी। प्रधानमंत्री अब 12 वर्ष से दुनिया के पटल पर हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। उनको एक बहुत ही बैलेंस्ड नेता के रूप में दुनिया देखती है। जो वो कहते हैं कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, आज भी जैसे उन्होंने कहा कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली वे, और दुनिया देख रही है कि अब चाहे वो अमेरिका और ईरान हो, वो अब जाके डायलॉग और डिप्लोमेसी पे ही इतना मारामारी के बाद वहां आ गए हैं। तो उसका भी सम्मान है बिंटांग आदिपूर्ण के द्वारा, और भारत का भी सम्मान है कि वो भारत की जो नीतियां रही हैं, भारत और इंडोनेशिया का पुराना सिविलाइजेशनल एक जोड़ है, एक कनेक्शन है, और दोनों देशों का ध्येय भी एक ही है कि पूरा इंडो पैसिफिक, प्रशांत हिंद महासागर पीसफुल रहे और दोनों देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। और जैसे प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियन पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया, ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। हर जो भी नेता दूसरे देश के जाते हैं उनको हर एक को ये ऑनर प्राप्त नहीं होता कि वो वहां के पार्लियामेंट को भी एड्रेस करें, क्योंकि ये एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है उस देश के नेताओं से जो भारत और इंडोनेशिया की मैत्री का संदेश जहां जहां से भी वो आए हैं, जो पूरा इंडोनेशिया वो संदेश वहां लेके जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंस के बीच में। और प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस में एक बहुत ही बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा कि भारत विकास का रास्ता फॉलो करता है, एक्सपेंशनिज्म का नहीं, और ये एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने भारत के बारे में कही।
0: आखिर में अम्बेसडर तायल, भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, क्या आप उन कदमों के बारे में बता सकते हैं जो प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान इन संबंधों को और प्रगाढ़ और बेहतर करने के लिए उठाए गए हैं?
2: भारतीय उपमहाद्वीप और इंडोनेशियन आर्किपेलागो के तो सांस्कृतिक संबंध हजारों साल से हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुबियांतो जाएंगे, एक परम्बरण मंदिर है, 1000 साल से ज्यादा पुराना है योग यकार्ता में, उसके जीर्णोद्धार के लिए भारत ने का जिम्मा उठाया है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इंडोनेशिया के लोग और समाज और गवर्नमेंट हमेशा इस कनेक्शन को जो भारत के साथ है, संस्कृति का, सिविलाइजेशन का, उसको रेस्पेक्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। रामायण अभी भी बहुत ही एक पॉपुलर डांस ड्रामा के रूप में पूरे इंडोनेशिया में देखा जाता है। और अगर आप जकार्ता जाएं तो एक जगह वो श्री कृष्ण जी जो रथ और अर्जुन का रथ भी एक बहुत ही अच्छे जगह बहुत बड़ा बना हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति एक बहुत जगह बहुत बड़ी बनी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा पुराना नाता है और उसको प्रधानमंत्री की यात्रा में और सुदृढ़ किया जाएगा और उसको और ज्यादा लोगों के पास ले जाने का प्रयत्न है। और दूसरा, 1927 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इंडोनेशिया गए थे, उसकी शताब्दी 2027 में बहुत धूमधाम से इंडोनेशिया और भारत दोनों जगह बनाई जाएगी। उसमें गुरुदेव टैगोर और इंडोनेशिया के जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनका भी बहुत अच्छा योगदान था, उन दोनों के नाम से ये शताब्दी दोनों देशों में मनाई जाएगी।
0: अम्बेसडर तायल, आपने प्रधानमंत्री की यात्रा पर एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण दिया है हमें और आपने हमारे साथ अपने विचार बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से साझा किए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाद।

0: मतदाता दीक्षा सक्सेना।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

मोहब्बत का पहला एहसास शब्दों में कहाँ समा पाता है। पहली धड़कन, पहली मुस्कान, पहली बेचैनी, सब कुछ जैसे दिल की दुनिया बदल देता है। किसी की एक झलक, किसी की एक आवाज़, और हर मौसम, हर नज़ारा उसी का हो जाता है। दोस्तों, प्रेम की ये पहली मीठी सी अनुभूति जीवन की सबसे अनमोल स्मृतियों में शामिल हो जाती है। आइए इसी मासूम एहसास, इसी मधुर अनुराग और दिल की धड़कनों को सुरों में पिरोता एक बेहद खूबसूरत गीत सुनें।

जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल होते हैं जवानी में। जवानी में सपनों की उड़ान, उम्मीदों का आसमान और दिल में अनगिनत अरमान। लेकिन समय की रफ्तार किसी के लिए नहीं रुकती। आज जो साथ हैं कल शायद दूर हों, आज जो हंसी है वही कल मीठी यादें बन जाएं। यही एहसास दिल की बेहद खूबसूरती में शामिल हो जाता है। दिल सिर्फ प्रेम की बातें करता है, बल्कि समय की नश्वरता और रिश्तों की अनमोल अहमियत को बड़े ही सहज अंदाज में बयान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि वर्तमान के हर पल को दिल खोल कर जी लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल किस मोड़ पर ले जाए कोई नहीं जानता। आज की मुस्कुराहटों को सहेजते हैं, यादों के कुछ नए मोती पिरोते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं, जिसमें रोगी खुद ही हंसता है, खुद ही रोता है, ना सुख का एहसास होता है ना दुख का, बस अपनी धुन में खोया रहता है। ऐसा रोग जो लग तो जाता है पर दिखता नहीं, बस महसूस होता है, महसूस होता है कि हम खो गए हैं किसी के ख्यालों में, गुम रहते हैं किसी की यादों में। इस रोग का नाम है जो सब जानते हैं, वो है प्रेम रोग। और प्रेम जब होता है तो कुछ नहीं अच्छा लगता, दिल सिर्फ चाहता है उसका प्रेमी हमेशा उसके पास हो, वो ही इस रोग का इलाज है।

प्यार में कभी जुदाई मिलती है तो याद बहुत आती है। यादों की कीमत वो क्या जाने जो किसी को यूं ही भुला देते हैं। यादों का मतलब तो उनसे पूछो जो यादों के सहारे जिया करते हैं। ना वो आ सके ना हम कभी जा सके, ना वो आ सके ना हम कभी जा सके, ना दर्द दिल का किसी को सुना सके। बस बैठे हैं यादों में उनकी, ना उन्हें याद किया और ना हम उनको भुला सके।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
2: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
3: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
4: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांकी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
5: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
6: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
7: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
8: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
9: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी, आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: कश्मीर की कली, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में। बोल हैं SH बिहारी के और संगीत है OP नैयर का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म एक दूजे के लिए। स्वर हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के, बोल हैं आनंद बख्शी के।

इस गीत के साथ ही चित्रगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। उर्दू कार्यक्रम कहकशा भोपाल से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां में रुजदा अपने तमाम सुनने वालों का खैर मकदम करती है। सामईन, आज का कहकशां प्रोग्राम महफिल समा पर मबनी है और आज के प्रोग्राम का मौजू है करम व इनायत का तसव्वुर। सामईन, करम व इनायत तो ऐसे खूबसूरत अल्फाज हैं जिनमें मोहब्बत, रहमत, शफ़क़त, बख्शिश और बेलौस नवाजिश के कई रंग सिमटे हुए हैं। करम के मायने हैं फ़ज़ल और एहसान, जबकि इनायत से मुराद खुसूसी तवज्जे, मेहरबानी और नवाजिश है। जब ये दोनों अल्फाज एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो उनसे अल्लाह ताला की वो बेपनाह रहमत मुराद ली जाती है जो हर लम्हा अपने बंदों को अपने हिसार में लिए रहती है। इस्लामी तालीमात में अल्लाह ताला को अरहमुर राहिमीन और गफूरुर रहीम कहा गया है। उसकी रहमत हर शय पर मुहीत है। इंसान ख्वाह कितनी ही खताएं कर बैठे, अगर वो सच्चे दिल से अपने रब की तरफ रुजू करे तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसे माफ़ फरमा देता है। यही यकीन इंसान को मायूसी से बचाता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला अता करता है। सूफिया इकराम ने करम व इनायत के इसी तसव्वुर को अपनी तालीमात का मरकज़ बनाया। उनके नज़दीक अल्लाह ताला से मोहब्बत इंसानों से मोहब्बत के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती। अगर इंसान अपने रब के करम का तलबगार है तो उसे चाहिए कि दूसरों पर रहम करे, ज़रूरतमंदों की मदद करे, माफ़ करना सीखे और मोहब्बत को फ़रोग़ दे। यही हकीकी बंदगी और करम व इनायत का अमली इजहार है। सामईन, इसी जज्बाए मोहब्बत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत के इजहार के साथ आइए महफिल समा की पहली पेशकश सुनते हैं। पेश है खूबसूरत नातिया कव्वाली, जिसे अपनी दिलनशीन आवाज़ में पेश कर रहे हैं मुनव्वर मासूम और साथी।

0: सामईन, अभी आप मुनव्वर मासूम और साथियों से उनकी कव्वाली समाअत फरमा रहे थे। सामईन, उर्दू शायरी में भी करम व इनायत का तसव्वुर नहायत खूबसूरती से जलवागर होता है। सूफी शौरा ने अल्लाह ताला की रहमत को अपने कलाम का महवर बनाया, जबकि गजल के शौरा ने महबूब की एक निगाह इनायत को जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत करार दिया। महफिल समा में जब हमद, नात, मनकबत या सूफियाना कलाम पेश किया जाता है तो मौसीकी की लय, शायरी की लताफत और रूहानी फिक्र मिलकर एक ऐसी कैफियत पैदा करती हैं जो दिल को सुकून और अपने रब से कुर्ब का एहसास अता करती है। सामईन, आइए इसी रूहानी कैफियत को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं उमर शाद कव्वाल और साथियों की आवाज में कव्वाली।
1: बीच में अहमद और अहद के

सामईन, अभी आप उमरशाद कव्वाल और साथियों की आवाज़ में कव्वाली समात फरमा रहे थे। सामईन, आज के तेज़ रफ्तार दौर में जब इंसान जहनी दबाव और बेयकीनी का शिकार है, करम व इनायत का तसव्वुर उसे सब्र, दुआ और मेहनत के साथ आगे बढ़ने का हौसला देता है। इसी जज्बे को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाते हुए अगर हम दूसरों के साथ नरमी, एहतराम, हमदर्दी और दरगुजर कर

0: ये था पंडित कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: You just heard राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा concludes his flute recital with राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद्र शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड in the studios of Akashvani Delhi. This program came to you from Delhi station of Akashvani.
2: अभी आप सुन रहे थे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।